सुप्रभात एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड्स हुए हैं। आप सबों का आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातः

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी में

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6 चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमरीका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमरीका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है मेरा खेती की बातें। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ संजय सिन्हा। बातें करेंगे कचरा अपघटक की, यानी वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित बातें। भारत में प्रति वर्ष लगभग 6,20,00,000 टन जैव कचरे का उत्पादन होता है। न केवल कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई है, बल्कि एक अवधि में कचरे की प्रकृति में भी काफ़ी बदलाव आया है। भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति कचरे का प्रतिदिन उत्पादन 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक होता है। प्रत्येक गांव औसतन प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा पैदा करते हैं, जो बड़े पैमाने पर गाय के गोबर, गाय बांधने के स्थान का कचरा और फसल अवशेष जैसे भूसा, कचरा, बायोमास, डंबल आदि से उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह भी पाया जाता है कि प्रति वर्ष गौशालाओं में 1,00,000 टन गोबर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त लगभग 11 टन प्रति वर्ष उच्च कोटि का कचरा चीनी उद्योग से उत्पन्न होता है। विकासशील देशों में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि और शहरी ठोस कचरे का प्रबंधन चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है। वर्तमान में ऐसे कचरे को आमतौर पर जला दिया जाता है या उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने कचरा अपघटन यानी वेस्ट डिम्पोजर नामक एक उत्पाद विकसित किया है, जो कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों से निर्मित किया गया है। इसे डॉक्टर कृष्ण चंद्र द्वारा 2004 में देसी गाय के गोबर से अलग किया गया और खेत में इसके प्रयोग के लिए विकास की तकनीक को मानकीकृत करने में 11 वर्ष का समय लग गया। कचरा अपघटक जैव उर्वरकों, बायो कंट्रोल और साथ ही मिट्टी स्वास्थ्य को पुनः ठीक करने के रूप में काम करता है। यह अन्य प्रकार से भी, जैसे कि सभी प्रकार के कृषि और बागवानी फसलों में रोगों से लड़ने के लिए जैव कचरों की शीघ्र

और एल्गेंस संद मेंद शामिल है। यह रोगाणुरोधी चयापचयों जो कि खेत में बीमारियों को नियंत्रित करता है उसमें सहायक होते हैं। इसके अलावा यह ग्लूकोनेस और B1-3 ग्लूकोनेस एंजाइम भी पैदा करता है जो पौधों के रक्षा तत्वों में सहायता प्रदान करता है। कचरा अपघटक जैसे कि क्या है कि सरल और विश्वसनीय है, उपयोग करने में पूर्णतया इसे तैयार करना आसान होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, सभी फसलों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए जैव कचरों को जैविक खाद में परिवर्तन करके एक अत्यधिक प्रभावकारी अपघटक के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। ये लागत भी कम है, कम लागत केवल 20 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। किसानों द्वारा एक बोतल के प्रयोग से प्रति वर्ष 1,00,000 मीट्रिक टन से अधिक जैविक खाद का उत्पादन भी किया जा सकता है। एक बोतल वेस्ट डिकम्पोजर से और अधिक वेस्ट डिकम्पोजर का निर्माण, वेस्ट डिकम्पोजर किसानों को छोटी सी बोतलों में दिया जाता है और वे खुद किसी भी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किए बिना इससे और अधिक वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये तो हो गई कचरा अपघटक से यानी वेस्ट डिकम्पोजर, कचरे से जो अपघटक तैयार करने की जो बातें हो गई और इसे आप लाभ ले सकते हैं। विशेष जानकारी आप कृषि विभाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको और अन्य किसानों को लाभ हो सकता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

विभीषण के श्रीराम के शरण जाने के साथ ही शत्रु की सेना का भेद जानने को रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे उनकी वास्तविकता वानरों से अधिक देर तक छिपी न रह सकी। वे पकड़ लिए गए। सुग्रीव ने आदेश दिया कि उनका अंग भंग करके उन्हें लंका भेज दिया जाए। नाक कान काटे जाने की बात सुनकर गुप्तचर त्राही त्राही कर उठे और वानरों को ऐसा न करने के लिए श्रीराम की सौगंध दे दी। हाथ पांव बांधकर जब उन्हें लक्ष्मण जी के सम्मुख लाया गया तो दयालु लक्ष्मण ने उन्हें बंधन मुक्त कराया। रावण के नाम एक पत्र देकर गुप्तचरों को ये मौखिक संदेश पहुंचाने को कहा कि सीता जी को सादर वापस लाकर वो श्रीराम की शरण आए, अन्यथा अपना काल आया ही समझे। लंका पहुंचकर रावण से अपनी दुर्गति और लक्ष्मण का संदेश सुनाते हुए गुप्तचर शुक ने निवेदन किया, हे नाथ, वानर सेना का विवरण तो 100 करोड़ मुखों से भी करना संभव नहीं है। जिसने लंका जलाई और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया उसका बल तो अन्य वानरों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा आज का चिंतन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रकाश डालते हैं नवरात्रि के महत्व के बारे में। ये 9 दिनों की रातें होती हैं। रात्रि शब्द का अर्थ है वह जो हमें तीनों प्रकार की ताप से राहत या गहरा विश्राम देती है। ताप का अर्थ तीन प्रकार की ज्वाला, अग्नि या तीन परेशानियां, स्थूल, सूक्ष्म और करणीय, तीन प्रकार की परेशानियां हैं आदि भौतिक सांसारिक परेशानियां, आदिक दैविक लौकिक देव दूतों अथवा देवताओं के स्तर की परेशानियां और तीसरी आत्मा के स्तर की परेशानियां। नवरात्रि का समय गहन विश्राम का समय होता है जो हमें तीनों परेशानियों से मुक्त कर सकता है। इसलिए यह समय प्रार्थना और पुनः ऊर्जावान बनने का समय होता है। नवरात्रि में आपका मन दैवीय चेतना में डूबा होना चाहिए। एक शिशु को जन्म लेने में 9 महीने का समय लग जाता है, उसी प्रकार यह 9 दिन भी वैसे ही हैं जैसे हम माँ के गर्भ से पुनः बाहर आ रहे हों। एक नए जन्म का समय इन 9 दिन और 9 रातें हमें अपने भीतर जाकर अपने मूल का स्मरण करना चाहिए। स्वयं से यह प्रश्न करो, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा मूल स्रोत क्या है। आपको अपनी चेतना पर चिंतन करना चाहिए और इन 9 दिनों को 9 महीने की भांति देखना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन तमोगुण या जड़ता को, अगले 3 दिन रजोगुण या बेचैनी और कार्यशीलता को, और अंतिम 3 दिन सतोगुण या पवित्रता और उच्च स्तरीय प्राण शक्ति को समर्पित होता है। हमारे भीतर तीनों गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और इन तीनों गुणों पर विजय पाने अर्थात केंद्रित रहकर जीवन का उत्सव मनाने के प्रतीक अंतिम दिन को विजयादशमी कहते हैं। इन 9 दिनों के उत्सव का उद्देश्य है व्यक्ति को उसके अंतःकरण में ले जाना और उसकी चेतना को ऊपर उठाना है। यह आंतरिक और अपरगामी यात्रा है। इन 9 पवित्र दिनों में ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें आपको अपने लक्ष्य से विमुख कर सकता है। हमारा मन इतना कपटी है कि यह हमें हमारे लक्ष्य से हटाकर छोटी छोटी बातों में उलझा देता है। हमारे

आसपास किसी के छींकने या खर्राटे लेने पर भी हमें यह मार्ग से भटका सकता है। और जब हम सजग रहकर यह जान लेते हैं कि हमारा मन नकारात्मकता के दुष्चक्र में जा रहा है तो हम सजग हो जाते हैं। तब हम इधर उधर भटकते अपने मन को बस में कर सकते हैं। इसलिए नौ रातें हमारे लिए विश्राम का समय है। यदि कोई द्वंद्व उत्पन्न होता है तब भी उन सब को एक ओर रखकर अपने भोले भाले मूल स्वभाव में हमें वापस आ जाना चाहिए। इन 10 दिनों में हम ध्यान करते हैं और स्वयं के संग रहते हैं। नवरात्रि का उत्सव मनाने का सर्वोत्तम तरीका है उपवास रखना, प्रार्थना करना और अंत में उत्सव तथा भोज। परंतु यह परामर्श नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भोजन के बिना रहकर उपवास भी नहीं कर सकता है। आप सीमित मात्रा में भोजन ले सकते हैं, फल खा सकते हैं और कम खा सकते हैं। मान लीजिए यदि आप एक संपूर्ण आहार ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आधी या एक चौथाई कर सकते हैं। प्रायः दिन कुछ न कुछ अल्पाहार या स्नैक खाते रहते हैं, इससे बचना होगा। और भी इंद्रिय गतिविधियां अति न करें, अपने पांचों इंद्रियों को गहरा विश्राम भी दे सकते हैं। प्रायः सुबह उठते ही हम अपना रेडियो सेट या आई पॉड चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम दौड़ भी रहे हैं तो कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। इससे मन पर नियंत्रण ध्वनियों का आक्रमण होता रहता है। नवरात्रि के समय हमें अपने मन और शरीर को इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला बाध्य उत्प्रेरक और बौछारों से बचना चाहिए। इन 9 दिनों में हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का हम जो है आह्वान करते हैं। और 9 दिनों में हम माता की आराधना करके अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं। तो ये 9 दिन है अपने आप को ऊर्जा प्रदान करने का, अपने शरीर में अपने मन को ऊर्जावान बनाने का। तो इसी के साथ ही हमारा आज का चिंतन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

0: श्रोताओं आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में माता जी की स्तुति। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर विष्णुपति सिंह से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। विषय है कृत्रिम दांत और देखभाल। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार लाल।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दांतों की समस्या से हर लोगों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या हमारे वृद्धजन हों। किसी कारण से दांत सड़ जाती है और हमें दांतों को निकालना पड़ता है और इसके एवज में हमें नकली दांत, जिसे हम कृत्रिम दांत कहते हैं या आर्टिफिशियल टीथ कहते हैं, वो हमें लगानी पड़ती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जो नकली दांत है या कृत्रिम दांत है किस तरह का होता है, उसकी देखरेख कैसे करें ताकि जो कृत्रिम दांत है उसकी उम्र लंबी हो और आपको किसी तरह की भविष्य में समस्या नहीं हो। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं रिम्स के सह प्राध्यापक दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुपति सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, दांतों की समस्या हर लोगों को होती है, तो हम बात करें कृत्रिम दांतों की। तो कृत्रिम दांत कितने तरह की होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कृत्रिम दांत लगवाने के समय में?
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम दांत होते हैं या आर्टिफिशियल टीथ जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो मुख्यतः दो तरीके का बनाया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड दांत, जो कि आपके मुंह में बचे हुए दांतों से सपोर्ट ले करके जो प्रोस्थेसिस बनती है और जिसे हम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हैं, वो एक फिक्स्ड तरीके की विधि हो गई और फिक्स्ड प्रोस्थेसिस उसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके का जो दांत का रिप्लेसमेंट होता है, कृत्रिम दांत जो बनते हैं, वो होता है एक रिमूवेबल मींस, मतलब उसको बनने के बाद पहनाया तो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है लेकिन मरीज अपनी सुविधा के अनुसार उसे बाहर निकाल सकता है अपने मुख से और एक प्लास्टिक के बंद डब्बे में पानी में उसे रख सकता है। फिक्स्ड में ही दो तीन ऑप्शंस और होते हैं जो आजकल एक नया तरीका है दांतों को मुंह में फिक्स तरीके से लगाने का, उसको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। एक डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है जो हड्डी के अंदर हम उसे ड्रिल करके डालते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं, तो ये भी एक फिक्स्ड उपाय है दांतों को रिप्लेस करने का।
1: किसी साथी की एक दांत खराब हो या उसकी पूरी दांत खराब हो गई हो तो वो कैसे देख रेख करे, क्या उपाय करें कि उसकी 32 दांत पूरी तरह से कृत्रिम रूप से लग जाए और उसकी देखरेख सही से करते रहे और उसका खान पान सही से होता रहे?
2: मुख्यतः हमें ध्यान ये देना है कि दांतों की परेशानी की जब शुरुआत हो तभी हमें सचेत हो जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये दर्द नहीं कर होता, दांत की दर्द से पाप परेशान नहीं होते हैं, मामूली सी कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अन्य रोगों के साथ भी करते हैं कि हम उसे बहुत सीरियसली तब लेते हैं जब हम उससे परेशान होने लगते हैं। तो जैसे पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं कि अगर आपके मुंह से ब्रश करते टाइम खून आने लगे या जब आप बात करते हो किसी से और आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगे, तो ऐसी शुरुआती लक्षण हमें बताते हैं कि हम प्रायरिया की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो हमें एक अच्छी डेंटिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए और प्रायरिया का पूर्णतः इलाज आज संभव है। दांतों की साफ़ सफाई करने के बाद अब उसकी एडवांस सर्जरी भी होती है और ये सब करके हम दांतों को बहुत अच्छा रख सकते हैं और उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांतों की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट, कभी भी जो नेचुरल टीथ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकता, वो
1: उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
2: वो उसके बहुत नज़दीक जाता है और उसके फंक्शंस, उसके एस्थेटिक और उसके बाकी सारे चीज़ों का वो रूप ले लेता है, बट हूबहू नेचुरल टीथ जैसा कुछ हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें देख रेख तो बहुत अच्छे से करना चाहिए अपने नेचुरल दांतों का, और शुरुआती लक्षण दिखते ही दांतों में सड़न का, खाने का फंसना या बदबू आना, ब्रश करते टाइम खून आना, तो हमें एक उपयुक्त डेंटिस्ट के पास जा कर के इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए इससे संबंधित, और इसकी देख रेख करके हमें इसकी लाइफ को बढ़ा लेना चाहिए
1: जी।
2: ब्रशिंग हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ये बार बार बोला जाता है और लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो रात का ब्रशिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह का ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो क्या है, आप सो जाते हैं और लगभग 10-12 घंटे का समय आप मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको देते हैं, खाने के ऊपर वो बैठते हैं, जो भी खाना दांतों में लगा हुआ है, फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को ब्रश करें, दिन को तो करना आवश्यक है ही, बट रात को ब्रश करना उतना ही आवश्यक है। तो खाने के बाद जैसे थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, क्योंकि एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करने से निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके मुकाबले जो आप अगर अच्छी ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हो और उस तरीके से ब्रश करते हो।
1: डॉक्टर साहब, हम थोड़ी खर्च की बात करें, कृत्रिम दांत हम लगवाते हैं, चाहे एक हो चाहे पूरी दांत हम लगवाते हैं, तो खर्च कितना आता है और आपके यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी?
2: मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्टोरॉन्टिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं वो मुफ्त में बनते हैं और रिमूवेबल दांत की सुविधा अभी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है जो 32 बनती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं किसी कारणवश जिनके मुंह में अब एक भी दांत नहीं है या 4-5 दांत बच गए हैं, वो हिलते डुलते अवस्था में हैं, उनसे वो अपने खान पान को सही ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे 4-5 दांतों को निकाल करके पूरी की पूरी 32 रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में बनती है और वो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो कोई भी लोग जिनको ज़रूरत हो 32 बनाने की तो वो रिम्स में आए। 5 अपॉइंटमेंट विजिट होता है, नकली दांत बनाने का जो 32 बनती है वो 5 अपॉइंटमेंट में बनती है और एक एक दो दो दिन के अंतराल पे हम अपॉइंटमेंट देते हैं और लगभग 15-20 दिनों में आपको कृत्रिम दांत जो 32 है वो बन के तैयार हो जाती है। तो प्राइवेट में तो बहुत इसका कॉस्ट है, तो उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, या तो 32 हो या 5-7 दांत नहीं हो, 8 दांत नहीं हो, 10 दांत नहीं हो, बिल्कुल मुफ्त में बनता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है, सक्षम डॉक्टरों के द्वारा बनाया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड के, उसको हम प्रोस्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो ये सुविधा तो रिम्स में अब उपलब्ध है।
1: तो दोस्तों, यदि दांतों की कोई भी समस्या हो, तो चाहे आपको दांत नकली लगवानी हो, रिम्स में आप चले जाएं, बिल्कुल निशुल्क सेवा आपको दी जाएगी, एक पैसे भी नहीं लगेंगे। और यही सेवा आप यदि बाहर किसी निजी चिकित्सक के पास जाते हैं, निजी डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए और डॉक्टर साहब मसूड़े चमकते रहे, मोती जैसे चमचम करते रहे आपकी दांतें। क्या कहेंगे अपने सुनने वाले साथियों को?
2: दांत अगर आपके किसी कारण गिर गए हो तो तुरंत ही उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि हमें

0: पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा डाइट का रिप्लेसमेंट हो जाता है। बहुत कड़े चीज़ जो आप अपने नेचुरल टीथ से खा सकते थे, अब धीरे धीरे अगर आपके मुंह के अंदर दांत कम होने लगते हैं तो आप वो अपने पसंदीदा भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं, और इससे फिर आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है। और चूंकि ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा होता है कि जब तक वो आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से परेशान करता है तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, आपका वज़न घट जाता है और आप बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ द होल बॉडी, कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैं, आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा वहाँ पे आपको उपलब्ध है।
1: तो मित्रों, यदि आपके दांत मोती जैसे चमकते हैं, स्वस्थ हैं, तो यदि दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खूबसूरत दिखेंगे, आपका चांद जैसा चेहरा दिखाएगा और आपका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो डॉक्टर विष्णुपति सिंह, सह प्राध्यापक रिम्स, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर विष्णुपति सिंह से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता। विषय था कृत्रिम दांत और दांतों की देखभाल। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। नई दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित अन्य देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान पर चर्चा में योगदान देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए $1,20,00,000 का जुर्माना लगाया है। ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बड़े बैंकों को भी कानून का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पूरे अमरीकी वित्तीय तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके प्रभाव से 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों तक फैल चुका है। ये प्रकोप बंडी बुग्यो वायरस के कारण फैला है और इसका अभी तक कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की येवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। डबल्स में, पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपने अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The Ministry of Culture will organize Brihattar Bharat International Conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi from today. The three-day conference will bring together delegates, ambassadors and scholars from 50 nations to deliberate on India's historical and contemporary cultural connections with the wider world. Prime Minister Narendra Modi will address the gathering through a special video message on the occasion. The first BIMSTEC Home Ministers meeting concluded in New Delhi with the adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their determination to prevent, combat and eliminate terrorism and violent extremism conducive to terrorism in a comprehensive and sustained manner. Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a two-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Skill and Development Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the government is open to hearing suggestions on the removal of long-term capital gains tax during consultations for the upcoming union budget. Ms. Sitharaman said this while speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar stressed that peace and stability along with the border are key to maintaining normal relations between India and China. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi yesterday, he said that the relationship will have consequences if peace and tranquility in the border areas is disturbed. In Bihar, 13 people died when a boat capsized in the Raghopur Diara area of Vaishali district last night. Vaishali district

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनाएंगे पलाश कार्यक्रम में नागपुरी लोकगीत। कलाकार होंगे बसीर अंसारी और उनके साथी

सात बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनेंगे सुगम संगीत, कलाकारों की चंदन दास। समाचार प्रभात सुबह के 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

लौटेंगे स्टूडियो और बजकर 45 मिनट पर और सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। सुबह के 9 बजे आप सुनिएगा हमारा नियमित प्रोग्राम जोहार पलामू। 9:30 मिनट पर हम आपको सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनिएगा 10:10 से। दोपहर में 1 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 1:05 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनिएगा दोपहर में 1:10 से। और समाचारों के बाद पुनः विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

5:30 पर आप सुनिएगा महिलाओं को सम्बोधित कार्यक्रम घर आंगन। इस प्रोग्राम में आप सुनिएगा तनुजा कुमारी से ली गई प्रथम प्रसारण वार्ता, विषय होगा सूर्य से बिजली घर में खुशी। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6:00 और 6:02 पर कार्यक्रम खेती बारी। ग्रामीण सभा कार्यक्रम का समय रहता है 6:30। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 पर।

स्वास्थ्य चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी का समय रहेगा 7:45। इस प्रोग्राम में आप सुनिएगा डॉक्टर ऋषि से ली गई बातचीत। विषय होगा फैटी लीवर उपचार एवं सावधानियां। बातचीत करेंगे संजय कुमार लाल। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आप सुनिएगा चित्रपट से रात्रि 8 बजे, और 8:30 पर कार्यक्रम होगा नई सोच नया कदम। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज 8:09 रात्रि 9 बजे, और उर्दू में खबरें 9:15 से 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में, और रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीकांत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 में। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:05। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, आए सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। कलाकार हैं वसीर अंसारी और उनके साथी।

0: पलाश कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बशीर अंसारी और साथियों से नागपुरी लोकगीत।
1: नवा नवा याले मैया नवा नवा याले हाय सोना नवा नवा याले मैया कहाती या न खाले रे बिलायत भाटा चटन।

झमका ले रे नवा नवा याले हाय रे नवा नवा याले माया मायरी झमका ले रे सिसाई थाना गदिल घर कुला के डो बाले हाय रे कुला।

श्रोताओं पलाश कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वसीर अंसारी और साथियों से नागपुरी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर सरिता। इस प्रोग्राम में हमारे आज के कलाकार हैं चंदन दास, तो सुनते हैं चंदन दास की गाई हुई चंद गजलें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से, और इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर सरिता। और इस प्रोग्राम में हमारे कलाकार हैं चंदन दास।

चंदन दास की गई हुई सी गजल के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: राकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी

0: योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है।

0: धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत

0: इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
1: धौलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धौलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
0: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धौलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यवोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से

बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Mr. Narendra Modi to address Brihattar Bharat International Conference in New Delhi today through video message. BIMSTEC Nation strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. External Affairs Minister S. Jayashankar says India-US trade talks are heading in the right direction and a deal is being ironed out. U.S. Secretary of State Marco Rubio to visit India next week to strengthen energy cooperation and strategic partnership. 13 people killed in boat tragedy in Raghopur Diara area of Vaishali district in Bihar. And in cricket, fourth T20 international between India and the West Indies to be played in Hyderabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
3: बहु पेट से है ना,
2: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
3: ये तो खुशी की बात है,
2: गर्भ में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
3: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
4: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
2: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य ले।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ बनना कोई बीमारी है क्या? जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूँ?
7: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
8: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
9: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
8: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
9: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या? वो भी तो 2 जान संभाल रही है।
7: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गुमला में 2018 से लापता बच्ची के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सरकार के शपथ पत्र पर जताई कड़ी नाराजगी और मांगा जवाब। झारखंड में टीबी से मुक्ति के लिए चलेगा विशेष स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान। लोगों को बीमारी के लक्षणों, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक करने पर जोर। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में छापेमारी में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 50 मोबाइल फोन और करीब 8 लाख रुपए नकद जब्त। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर रांची उपायुक्त ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के पंडालों को नहीं मिलेगी अनुमति। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव। और टाटा नगर से 11 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। कुछ ट्रेनों के 1-2 फेरे जबकि कुछ दिसंबर तक चलेंगी। और अब समाचार विस्तार से। गुमला में 2018 से लापता 6 वर्षीय बच्ची के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार के शपथ पत्र पर कड़ी नाराजगी जताई और जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि तत्कालीन एसपी और जांच अधिकारी को क्लीन चिट किस आधार पर दी गई, जब FIR दर्ज करने में विलंब और लचर जांच हुई। साथ ही पीरियोडिकल रिपोर्ट डालसा गुमला को भेजी गई थी या नहीं, और वर्तमान खोज की प्रगति रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने पर प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके पैतृक आवास नेमरा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायकों और पूर्व मंत्रियों सहित कई गणमान्य लोगों ने मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उनके माता स्वर्गीय रूपी सोरेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलाकात करने वालों में विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, नागेंद्र महतो, सुदीप गुड़िया, पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय सहित अन्य शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी माता के दशकर्म और संस्कार भोज की तैयारियों का निरीक्षण कर पंडाल, पार्किंग, बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सीनेट की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में धनबाद विधायक राज सिन्हा, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और चंदन कियारी विधायक उमाकांत रजक शामिल हुए। सीनेट सदस्य मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बैठक में पेंशन

0: कर्मचारियों की वेतन भुगतान, छात्रों की 75% उपस्थिति और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई जैसे अहम मुद्दे सामने आए। बैठक में पेंशन और कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अखिल भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने बोनस में बढ़ोत्तरी, न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने समेत 25 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद चौक पर मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश महासचिव सह अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने नगर निगम प्रबंधन से कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करने की अपील की।
1: 25 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे बोनस का है, बोनस बढ़ाए, वेतन वृद्धि का है, स्थायी कर्मियों का 7वां वेतनमान का एरियर बकाया है, यहाँ स्थानांतरण नहीं हो रहा है, कई सालों बाद 10-10 साल एक ही पद पे लोग बैठे हुए हैं। अगर निगम प्रशासन नहीं सुनते हैं तो हम लोग समय देंगे उनको और उसके बाद हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल निगम मुख्यालय में करेंगे। उसके बावजूद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो नगर निगम में अनिश्चितकालीन का हड़ताल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आरसीएच परिसर नामकुम में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ. मुकेश मिश्रा ने बताया कि बैठक में राज्य के शहरी वार्डों को टीबी मुक्त बनाने के लिए विशेष स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में पुलिस ने काठीकुंड थाना क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
2: एफएसएल की टीम का दिशा था और अन्य जो टीम के मेंबर हैं, एक व्यक्ति से पूछताछ किया गया, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और पूरे घटनाक्रम को बताया और उसके खिलाफ में पर्याप्त साक्ष्य भी हम लोग के पास। मृतिका के गांव के बगल गांव का ही रहने वाला है, तो इसको भय हुआ कि हम पकड़े जाएंगे, इसी में लताबाद से उसकी मृत्यु हो गई।
0: रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने लगभग 50 मोबाइल फोन और 7-8 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के दम पर रंगदारी वसूलने के कथित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा गोलियां बरामद की हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं।
3: छापेमारी की गई तो 5 लोग थे, जैसा कि सूचना थी, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या फिर कुछ उनके पास आर्म्स है उसका यूज कर सकते हैं और आगे किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूछताछ हुई आगे तो कुछ लोग हैं जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। बरामदगी भी हुई है सामान की, जिसमें एक लोडेड देसी कट्टा, बाकी 4 लोग हैं उनके पास से गोलियां मिली है।
0: रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा, बिजली, सफाई, सड़क और विसर्जन व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने 5 बड़े निर्देश दिए। बिना फायर और स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट के किसी भी पंडाल को अनुमति नहीं मिलेगी। बड़े पंडालों में 24 घंटे बिजली कर्मी तैनात रहेंगे और हर पंडाल में नशा मुक्ति के फ्लेक्स लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और विसर्जन घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती के साथ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने का आदेश दिया गया। रांची में आज से कई पंडालों के पट खुलेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने यातायात बदलाव की जानकारी दी।
4: दुर्गा पूजा पंडाल है वो 14 तारीख से खुल रहे हैं। सुजाता चौक से रेडियम चौक तक गाड़ियों के आवागमन के लिए बंद कर दिया जाएगा। पुरानी अरगोड़ा चौक के आगे उसको बंद कर दिया जाएगा, पुंदाक की तरफ जो जाता है। नागा बाबा खटाल एरिया है दुर्गा पूजा में, उसे पार्किंग स्पेस बनाया गया है। भारी मात्रा में श्रद्धालु सड़क पे रहेंगे और वहां पे जाम रहने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। हमारी पूरी पुलिस तत्पर रहेगी, पर फिर भी आप लोग सतर्कता।
0: दुर्गा पूजा में ट्रेनों की भीड़ और वेटिंग के बीच रेलवे टाटानगर से 11 पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनसे बक्सर, पटना, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, अजमेर, कोटा, रायपुर, नागपुर, हावड़ा और संबलपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। कुछ ट्रेनें एक दो फेरे जबकि कुछ दिसंबर तक चलेंगी। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी के अनुसार यात्रियों की जरूरत और वेटिंग की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया। अब अखबारों की सुर्खियां। 15 से नहीं लागू होगा यूपीआई भुगतान पर शुल्क, दीपावली तक के लिए टला। इस खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है यूपीआई पेमेंट पर 0.4% शुल्क का फैसला, दीपावली तक टला। दैनिक जागरण ने लिखा है ट्रिपल आईटी रांची में छात्र की मौत की जांच के लिए केंद्र ने गठित की कमेटी। बिहार के राघोपुर में पलटी नाव, 13 लोगों की गई जान। हिंदुस्तान और प्रभात खबर ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। गुमला में 2018 से लापता बच्ची के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सरकार के शपथ पत्र पर जताई कड़ी नाराजगी और मांगा जवाब। झारखंड में टीबी से मुक्ति के लिए चलेगा विशेष स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान। लोगों को बीमारी के लक्षणों, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक करने पर जोर। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में छापेमारी में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 50 मोबाइल फोन और करीब 8,00,000 रुपए नकद जब्त। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर रांची उपायुक्त ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के पंडालों को नहीं मिलेगी अनुमति, यातायात व्यवस्था में भी बदलाव। और टाटानगर से 11 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों को मिलेगी राहत। कुछ ट्रेनों के एक दो फेरे जबकि कुछ दिसंबर तक चलेंगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: कैसे रितु, तुम्हें तो दस्त हो रहा था।
6: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
7: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
6: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
7: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
6: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
7: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
6: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें,
7: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मुन्ना कैसे रितु, तुम्हें तो दस्त हो रहा था।
6: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
7: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
6: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
7: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
6: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
7: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
6: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें,
7: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।

आए दिन बाहर के। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं साहिर का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं रवि, गायिका आशा भोसले, फिल्म का नाम है वक्त।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में आशा भोसले की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, संगीतकार सलील चौधरी, फिल्म का नाम चांद और सूरज।

0: सौदागर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का गीत गुंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुनते हैं हमारा नियमित प्रोग्राम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। सभी सुनने वाले को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले आज का विचार, जीवन में परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। सुख की छाँव में सब कुछ अच्छा लगता है तो दुख की दस्तक के साथ सभी समीकरण उलझे हुए लगने लगते हैं। सुख और दुख का यह चक्र सतत रूप से चलता रहता है। परिस्थितियाँ का यह परिवर्तन कठिन प्रेक्षाओं के रूप में सामने आता है तो मानसिक दशा को गहराई से विचलित कर जाता है। प्रश्न यह है कि जब जीवन में परिस्थितियाँ मन के अनुकूल न हो तो संतुलन की क्या राह हो सकती है? आखिर दुख और दर्द से त्रस्त जीवन से राहत पाने का क्या उपाय है? प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि जहाँ यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है, चूँकि परिवर्तन अपरिहार्य है, इसलिए हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि परिवर्तन की दशा में घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन की स्थिति में पलायन नहीं अपितु अनुकूलन ही उपयुक्त है। लामा परंपरा के अनुसार जीवन में समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली समस्याएं वैसी होती हैं जिनका कोई न कोई समाधान अवश्य होता है, इसलिए इन समस्याओं से परेशान होने की कोई वजह नहीं है। दूसरे प्रकार की समस्याओं का भी कोई समाधान नहीं होता, फिर भी इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आशा यह है कि जीवन में समस्याओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और हम इन्हें टाल भी नहीं सकते, लेकिन उनके प्रति प्रतिक्रिया को तो निर्धारित कर ही सकते हैं। हम अपने जीवन में कितने सुखी रस पाते हैं इसका निर्धारण हमारी प्रतिक्रियाओं से भी होता है। मुसीबतों का सहारा और धैर्य के साथ सामना करने के बजाय यदि हम हार मान बैठते हैं, घबराकर जीवन निराश हो जाते हैं, तो फिर जीवन जीने की आवश्यकता परीक्षा में हम असफल हो जाते हैं। धैर्य और साहस के साथ जीवन में समस्याओं का सामना करते रहने से ही हम अपने जीवन की परीक्षा में सफल हो पाते हैं। इस रण में साहस जहां तलवार का काम करता है, वहीं धैर्य आवश्यक ढाल का। तो श्रोताओं, जीवन में जो है बहुत सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, कभी भी विकट परिस्थितियों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के विचार के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

में जश्न मनाया जा रहा है। पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक ब्रजमोहन राम को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद लातेहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस उपलब्धि पर भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने हर्ष जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। लातेहार के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भी जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। डालते हैं इनके जो है जीवन पर एक नज़र। 1 जनवरी 1958 को तत्कालीन बिहार के पलामू जिले के चंदवा में ब्रजमोहन राम का जन्म हुआ था। जीवन ग्रामीण परिवेश में बढ़ा। उनके पिता अर्जुन राम बैठा और माता चैती देवी। उन्होंने लोहरदगा के बीएस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। वर्ष 1991 से 1995 तक वह लातेहार विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा और 1999 में 13वीं लोकसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान हुआ। इस प्रकार उनकी राजनीतिक यात्रा बिहार विधानसभा से होते हुए राष्ट्रीय संसद तक पहुँची। अब उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में उनकी नई भूमिका संवैधानिक दायित्वों से जुड़ गई है। विधानसभा और संसद का अनुभव रखने वाले ब्रजमोहन राम के सार्वजनिक जीवन में यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। लक्ष्य पर फोकस कर ऋण वितरित करें, बैंक योजनाओं की गति आवश्यक है, ये बातें उपायुक्त ने कहा। बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण कर जन कल्याणकारी योजनाओं में उपलब्धि बढ़ानी होगी। यह निर्देश उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को समारोह सभागार में किया। वे जून तिमाही 2026 की जिला स्तरीय समीक्षा समिति सह परामर्शदात्री समिति की बैठक में कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस क्रम में पाया कि जिले का औसत साख जमा अनुपात 40.57% रहा। उपायुक्त ने इसे बढ़ाने का लक्ष्य के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया। इसी तरह MSME कृषि ऋण, KCC मुद्रा योजना, जनधन सुरक्षा बीमा योजना, ज्योति अटल पेंशन, PMEGP कृषि ऋण माफी एवं JLLPS की बिंदुसार समीक्षा की गई। वार्षिक साख योजना में समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की जून तिमाही तक 43,306 खातों के माध्यम से 1,13,692 रुपये का ऋण वितरण किया गया। खातों के हिसाब से 35.54% राशि के हिसाब से 34.72% उपलब्धि हुई है। कृषि में 29.597 खातों में जबकि 35,772 रुपये 3,716 खातों में वितरित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम नियंत्रण दिवस के अवसर पर मंगलवार को युवा भारत पलामू की ओर से यो सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरक्षित घर सुरक्षित समाज विषय पर निबंध लेखन और चित्रांगन प्रतियोगिताएं हुई। इसमें छात्राओं ने उत्साहवर्धक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहिनी गुप्ता सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य ने कहा कि सुरक्षित समाज की शुरुआत घर से होती है। सुरक्षा के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करना जरूरी है। डॉक्टर संगीता कुजरो ने कहा कि आपदा से नुकसान कम करने के लिए सतर्कता, सही जानकारी और समय पर उचित कदम उठाना आवश्यक है। ये तो हो गई स्थानीय खबरों की बातें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू और मैं हूं संजय सिन्हा। श्रोताओं अभी दशहरा पर्व की जो है शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और लोग जो है उस उत्साह से भरे हुए हैं, अपने अपने पंडालों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पंडालों के आसपास साफ सफाई कैसे रखना है और नगर निगम के द्वारा क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, इसी विषय पर आज हम बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं नगर आयुक्त, नगर निगम के आयुक्त श्री रंजीत कुमार लाल जी से। तो सुनते हैं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर एक संक्षिप्त जानकारी।
1: व्यवस्था कैसे करनी है, नालियों की सफाई कैसे करनी है, क्या क्या व्यवस्था करनी है, इस पर भी जो है बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस साफ सफाई और व्यवस्था में नगर निगम का अहम रोल रहता है, अहम भूमिका होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं मेदिनीनगर नगर निगम के आयुक्त श्री रंजीत कुमार लाल जी से। लाल साहब आपको मेरा नमस्कार।
2: थैंक यू, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
1: लाल साहब हम ये जानना चाहते हैं कि शहर में लगभग 40 से 42 जगह पूजा पंडाल शहर क्षेत्र में हो रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं होती हैं साफ सफाई की, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप जो है सुविधा मुहैया करा रहे हैं, किस तरह से ये नगर निगम कार्य कर रही है।
2: सबसे पहले तो मैं सारे शहरवासियों को दुर्गा पूजा के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। जहाँ तक दुर्गा पूजा के अवसर पर साफ सफाई की व्यवस्था की बात है, तो दुर्गा पूजा के साफ सफाई के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से जितने कर्मी साफ सफाई में लगे हुए हैं, उसके अलावे मैं अतिरिक्त 100 साफ सफाई कर्मियों को रखने का आदेश दिया है। जो रेगुलर हमारे कर्मी हैं उसके साथ साथ 100 अतिरिक्त और भी सफाई कर्मी को लगाया गया है, ताकि पूरे शहर में जितनी भी जगह दुर्गा पूजा का स्थल हो साफ सफाई सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में उपायुक्त पलामू के अध्यक्षता में पी समिति की बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत सारे डिमांड

0: एक जगह पर जैसे बैरिया चौक, रेरमा चौक, ठाकुरबाड़ी चौक, रांची रोड, जेल हाथा आदि स्थानों पर गड्ढा को भरने के लिए अनुरोध किया गया। उसके अलावा विसर्जन स्थल को सुसज्जित करने का भी अनुरोध किया गया। सारे कमेटी वासियों का मैंने बात सुना और सुनिश्चित किया और आश्वासन भी दिया कि जो भी प्रमुख डिमांड है उनको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। और उस बैठक के आलोक में मैंने बैरिया चौक, रेरमा चौक, ठाकुरबाड़ी चौक, जेल हाथा और अन्य भी जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण स्थल है, गड्ढे जैसे टूट फूट है, जहाँ कुछ मेटेरियल्स भरना है, स्टोन डस्ट भरना है, उसको मैंने आदेश दे दिया। लगभग 60 से 70% भरा भी जा चुका है। अभी दुर्गा पूजा अवसर पे हमने काफ़ी लाइट भी लगाने के लिए ऑर्डर दिया था। लगभग 2000 हमारे यहाँ लाइट आ गई थी, नई लाइट आ गई थी, जिसमें से लगभग अब तक 600 लाइट स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, नई जो लाइट लगनी थी। इसके अलावा जो पुराने लाइट थी उसको भी मरम्मत की जा रही है। आज की तिथि तक लगभग 400 पुराने लाइट को मरम्मत कर दी गई है, जो ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुका था, एक्टिव नहीं था। अभी भी हमारे पास 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। इसमें हम समझते हैं कि लगभग 1500 से 1600 लाइट हम लोग निश्चित रूप से नए लगा लेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ सिटी मैनेजर 6-7 है, प्रत्येक को मैंने जोन में बांट दिया है। पूरे 35 वार्ड को 7 जोन में विभक्त है। प्रत्येक 3500 वार्ड को 7 जोन के हिसाब से मैंने 7 सिटी मजिस्ट्रेट को लगाया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने स्थलों पर जाकर करके प्रत्येक दुर्गा पूजा पंडाल को देखें और वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं। अगर किसी तरह की आवश्यकता होती है तो हमें कम्युनिकेट करें ताकि वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक पंडाल पे 2 हमेशा हमारा रेगुलर रूप से निगम के कर्मी रहे, ताकि ऑफ आवर में तुरंत उसको जो भी वहाँ गंदगी या कूड़े जमे होते हैं उसको तुरंत उस पर उसको लिफ्ट किया जा सके। और वहाँ पे प्रत्येक पंडाल पे 2-2 डस्टबिन को भी रखवाने का मैं व्यवस्था किया हूँ। इसके साथ ही साथ 3 जगह मूर्ति विसर्जन स्थल को चिन्हित किया गया है। एक तो हमारा कोयल नदी के गिरवर स्कूल के सामने है, दूसरा अमानत नदी के पास है, तीसरा हमारा शाहपुर के पास है, कोयल नदी के किनारे। ये तीनों स्थानों को हम लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग कराया जा रहा है और मत्स्य विभाग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कुछ मछुआरा जो वेल स्विमर हो, तैराक हो, उसको सेवा उपलब्ध कराने के लिए। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन को भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि और भी नेहरू युवा केंद्र या और भी इस तरह का कोई अगर हमारा अगर कोई वर्कर है तो उपलब्ध कराएंगे, ताकि वहाँ उपलब्ध कर सकता रह सके। तो तीनों चिन्हित स्थल जो हमारा है वो तीनों चिन्हित स्थल पर हमारा व्यवस्था रहेगी, लाइट रहेगी, बैरिकेडिंग रहेगी, स्थल विसर्जन के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम पूरा मुस्तैद है और भी अगर कहीं किसी तरह से डिमांड आती है तो जो भी संभव है नगर निगम के स्तर से किया जाएगा, खासकर सफाई और लाइट की व्यवस्था तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे।
1: कोई भी पद होता है सर, कोई भी पद होता है तो साफ सुथरा का इसमें विशेष महत्व होता है। हम बात करना चाहेंगे जो अष्टमी पूजन होता है उस दिन जो है ज़्यादा दीपक जल जाते हैं और दीपक जो है यथायत अत्र तत्र फेंक दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आज जो है इस वर्ष जो है अष्टमी पूजन, संधि पूजन जिसे हम बोलते हैं, वो दिन में हो रहा है 7:54 पर। तो ऐसी स्थिति में क्या नगर निगम तत्काल जो है उन दीपकों को सम्मानपूर्वक इकट्ठा करके उन्हें अलग करने का व्यवस्था करेगी इस वर्ष?
0: क्योंकि प्रत्येक पंडाल में मैं 2 सफाई कर्मी को प्रतिनियुक्त किया हूँ और उनको ये डायरेक्शन होगा कि जो भी अत्यधिक गंदगी जमा हो जाती है या तो अगर हम लोग वो बांटते हैं, क्या उसको बोलते हैं, जो भोग हम लोग लगाते हैं, तो वो सारे पत्तल हो या दीपक हो, जिस भी टाइप का हो, तो जैसा अगर पूजन सामग्री है तो कमेटी से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि कमेटी उसको अलग तरीके से, चूंकि हमारा स्टाफ सम्मानपूर्वक, तो उसको हम लोग डिस्पोज कराने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो हमारा वो स्टाफ को दे देंगे और बता देंगे कि पूजन सामग्री उसको उसी अनुरूप हम लोग।
1: हम देख भी रहे हैं कि विभिन्न पंडालों में नगर निगम के द्वारा जो है डस्ट गिराए जा रहे हैं ताकि वो पंडाल के पास जो है गड्ढे वड्ढे भर सके। और एक जो और भी बात आ रही है कि जो पंडाल के पास कुछ नालियाँ हैं जो स्लेब विहीन है, तो ऐसी स्थिति में क्या स्लेब लगवाने की व्यवस्था निगम के द्वारा किया जा रहा है?
0: बिल्कुल, कुछ जगह से हमारे कुछ पूजा कमेटी हमारा रिक्वेस्ट किए नगर निगम को, हमने स्लैब ढालने का आदेश दे दिया, स्लैब ढला भी चुका है, लेकिन अभी सूखने में लगता है 1-2 दिन और लगेंगे। तो पूर्ण रूप से सूख जाएंगे, तो जहाँ जहाँ डिमांड आया है उस जगह पे नाली पे हम लोग स्लैब ढाल उपलब्ध करा देंगे, ढकवा देंगे, मतलब जहाँ जहाँ से इस तरह से शिकायत आई है।
1: 17 तारीख से पहले यह काम हो जाएगा,
0: विदिन 2 और 3 डेज ये हो जाएगा।
1: आपके नगर आयुक्त श्री रंजीत कुमार लाल जी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नगर निगम आयुक्त श्री रंजीत कुमार लाल जी से ले गई बातचीत। विषय था दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न पंडालों में साफ सफाई और विधि व्यवस्था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहर पनामू। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और क्या कहता है 14 अक्टूबर का इतिहास। 14 अक्टूबर 1882 को शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। 1933 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा की थी। 1943 की बात करें तो जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और आज के दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 385,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी थी। 1981 होन्सी मुबारक मित्र ने चौथे राष्ट्रपति बने थे। जर्मनी के बॉन में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ 100,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था आज के दिन 1979 में। 1997 की बात करें तो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया था।

0: श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ ही हमारा आज का जोहार पलाम कार्यक्रम समाप्त होता है। आगे दीजिए नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पनामो, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहें लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि ये काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या? आइए जानते हैं साथियों। वो था ग्रेफाइट, यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था। हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसने ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे, यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई, जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ा कर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओ, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।

0: जी।
1: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
0: जानता हूं मां।
1: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
0: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
1: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर। सर ये तो गया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।

0: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
1: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
0: ठीक है सर।
2: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस ना सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्ध भूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था। पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम
2: सीमा प्रहरी
3: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। दिन के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नेशनल अवार्ड थे सुनील जी।
1: एक था भारत गौरव अवार्ड, एक था एक्सलेंस इन मार्शल आर्ट अवार्ड, उसके बाद फिर झारखंड में भी मुझे झारखंड गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त अप लेवल पे मैं चल रहा था। उसके बाद फिर मैं स्टेट एसोसिएशन के नज़र पे आया, फिर नेशनल फेडरेशन के नज़र पे आया, तब जाके फिर मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने लगा। इंटरनेशनल जब हमने अचीवमेंट पाई, उसके बाद फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोच अपॉइंट किया गया
0: अच्छा
1: ताकि बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सके और बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके फिर ला सके खिला के। जी, और उसके बाद जब वो लेवल खत्म हुआ हमारा, तब हम एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गए। अब मुझे ईस्ट इंडिया कराटे एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया, नेशनल फेडरेशन में कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया ताकि देश भर में बच्चों को हम डेवलपमेंट कर सके खिलाड़ियों का और उनको ऊपर ला सके।
0: तो आप जब हमने शुरुआत ही की और मैंने बताया कि आपके जब डेजिग्नेशन को मैं देखता हूं तो उसमें लिखा हुआ है चेयरमैन ट्राइबल एंड माइनॉरिटीज
1: जी
0: डेवलपमेंट कमीशन। तो
1: जी
0: बेसिकली आपकी जिम्मेदारी वैसे ट्राइबल्स लोगों की जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें आगे बढ़ाने का है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे?
1: ये एक ऐसी जिम्मेवारी है। आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में हमारे 8 स्टेट्स हैं और ट्राइबल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वो जो प्लेयर हैं वो फाइनेंशियली ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो उन बच्चों को डेवलप करना है। वैसे हमारा झारखंड है जिसमें ट्राइबल्स माइनॉरिटीज भरे पड़े हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, हमारे देश में इतने सारे स्टेट में माइनॉरिटीज और ट्राइबल्स बच्चे हैं। वो बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेवारी मैंने ली है। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि 2027 के जनवरी में, 23 और 24 जनवरी को रांची में एक ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप हो रहा है जो सिर्फ ट्राइबल और माइनॉरिटीज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, और ये पहली बार ऐसा होगा कि झारखंड इतने बड़े लेवल को होस्ट करेगा।
0: क्या बात है।
1: जी
0: तो इसे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमारे साथ सुनील क्रिसफुट्टा हैं और वर्तमान में ये कराटे टीम इंडिया के कोच हैं, चेयरमैन है ट्राइबल एंड माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कमीशन कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के, और सबसे बड़ी बात हमारे रांची से हैं, अपनी एक पहचान बनाई और आज पूरे नेशनल लेवल पर ऐसे बच्चों की तलाश कर रहे हैं। सुनील कैसे ये जो, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है ना कि एक तो
1: जी
0: आप पहले खुद सीखे, सीखते
1: जी
0: हुए आपने बच्चों को सिखाया, फिर आप
1: जी
0: लोगों के नजर में आए, आपने फिर संघर्ष किया और ये मुकाम तक पहुंचे। तो ये जो तमगा आपके साथ जुड़ा कराटे
1: जी
0: टीम इंडिया कोच का, ये
1: जी
0: तमगा कब जुड़ा और ये जिम्मेदारी को निभाते हुए कैसा फील कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं?
1: ये जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करें। क्योंकि हम अगर डेवलप कंट्री की बात करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना है, कोरिया है, तो उनके प्लेयर और हमारे प्लेयर को हम कंपेयर नहीं कर सकते थे आज से 2010 में, 2011 में, क्योंकि उनका डाइट हमसे बेहतर है, उनके पास

0: आप भी गए थे उनके साथ?
1: हाँ नहीं, मैं नहीं जा पाया था, मेरी कुछ और व्यवस्थता थी इसलिए मैं नहीं
0: जी
1: जा पाया था, पर हमारे फेडरेशन के
0: लोग गए थे।
1: प्रेसिडेंट भरत शर्मा सर जी वहाँ पे प्रेजेंट थे।
0: एक आपने बताया कि चैलेंजेस, क्योंकि
1: जी
0: इक्वालिटी की बात आ जाती है, बाहर में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जो शायद अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है।
1: जी
0: तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जब माइनॉरिटीज की बात करते हैं, ट्राइबल्स की
1: जी
0: बात करते हैं,
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कहाँ पे बच्चे हैं, और वो इंटरेस्ट भी आपको नजर आ रहा है कि जब आप वैसे स्टेट पे गए, वहां के
1: जी
0: बच्चों से मिले, तो आपको पोटेंशियल नजर आया, आप उस पर काम किए?
1: नहीं डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप पहले भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जो हमारी कंपनी है टाटा, उसने अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से निकाल के, जो लोग खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उसके अंदर स्टैमिना ज़्यादा होता है कंपेयर करें अगर सिटी के बच्चों से।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और उन बच्चों को बाहर लाएं जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, जिनमें कुछ करने की क्षमता है।
0: ज्यादा इंटरेस्ट किस स्टेट पे नजर आया, किस जिले के बच्चों पे नजर आया?
1: अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हमारे पास खूंटी है, हजारीबाग है, जहाँ के ट्राइबल्स बच्चे बहुत एक्टिव है, माइनॉरिटीज बच्चे बहुत एक्टिव है। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊं तो असम है, इस तरफ के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं।
0: कैसे चीजें हैंडल करते हैं आज, ये बहुत जरूरी है, और बढ़ते कदम कार्यक्रम को सुन रहे श्रोताओं के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि हमें लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। आपके पास
1: जी
0: बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर
1: जी
0: आप मान लीजिए कि ठीक है, हो सकता है कि शायद आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाई या आप
1: जी
0: नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से खेल भी खेलते हैं तो भी आपकी पहचान बनेगी।
1: बिल्कुल बनेगी। नहीं इसके ये अवसर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रहा है। अभी अभी देखिए, स्पोर्ट्स में एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है कि अगर आप एक अच्छा मेडल लाते हैं, गवर्नमेंट आपको करोड़ों रुपए दे देती है। जैसे हमारे ओलंपिक्स जो गेम खेल के आ रहे हैं, उनको अच्छा कैश अवार्ड मिल रहा है, जॉब भी मिल जा रहा है। हमारे एशियन गेम्स से जो बच्चे जीत के आ रहे हैं, उनको भी कैश अवार्ड मिल रहा है, जॉब मिल जा रहा है। तो हमारा भी प्रयास है कि हम ऐसे बच्चों को निकालें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में हर एक स्पोर्ट्स महंगा है।
0: बिल्कुल।
1: आप उनको ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ट्रेनिंग फीस भी एक्सपेंसिव है, उसके बाद कंपटीशन जैसे लेवल हाई होता है फीसेस बढ़ते जाती हैं। तो हम वैसे बच्चों को भी आगे ला रहे हैं और हम उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर तक भी जाएंगे तो फेडरेशन आपको सपोर्ट करेगी, और फेडरेशन सपोर्ट कर रही है और बच्चों को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करा रही है। और वापस आने के बाद उन बच्चों को हम लोग कैश प्राइज भी दे रहे हैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए, ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा आगे आए।
0: थोड़ा आप हमें ये बताएं, क्योंकि
1: जी
0: अक्सर लोगों के दिमाग में दो तीन चीजें बहुत पहले आती हैं। जब
1: जी
0: आप बाहर जाने की बात करते हैं, कंपटीशन में पार्ट लेने की बात करते हैं, तो
1: जी
0: सभी के पेरेंट्स के मन में सबसे पहला आता है व्यवस्था पैसे का।
1: जी
0: तो इकोनॉमिकली या जो एक्सपेंसेस आते हैं उसमें सरकार का कितना रोल रहता है? आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे बच्चों को, कि क्या बिल्कुल सारी चीजें निशुल्क हैं, व्यवस्था रहने का, खाने का, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, थोड़ा इसे आप बताएं।
1: नहीं, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें एक चीज जो मैं नेगेटिव मानता हूँ कि वो बच्चों को तैयार करने में खर्च नहीं करते, उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में उतना खर्च नहीं करते। पर बच्चे जब जीत जाए मेडल तो मेरे स्टेट का खिलाड़ी है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो अभी जो एशियन गेम हुआ है उसमें 11 पदक हरियाणा को गया है,
0: जी
1: पर हरियाणा सरकार पहले से तैयारी में कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब बच्चे मेडल जीत गए हैं तो हमारे स्टेट के खिलाड़ियों ने 28% पदक लाया है।
0: और अब उन्हें फिर कोई फैसिलिटीज दी है। हाँ, ये एक आपने सवाल, सही चीज आपने रखा कि ये भी बहुत जरूरी है
1: जी
0: कि जो बच्चे मेहनती हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार को उस वक्त भी सपोर्ट करना है।
1: 100%।
0: लेकिन फिर भी इसके अलावा और किस तरह का सहयोग है? जैसे आपने बताया कि स्टेट भी अपनी एक भूमिका निभा रहा है और सेंट्रल भी
1: जी
0: अपनी एक भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका क्या है
1: बिल्कुल।
0: दोनों का?
1: एक जैसे मान लीजिए साई है हमारे पास, जो कि बच्चों को इंटरनेशनली भेजता है कंपटीशन के लिए, तो उसे भी चाहिए कि भाई वो जमीनी लेवल पे जाए और बच्चों को देखे कि किसमें क्या क्षमता है, और उन बच्चों को लाए और उनको पहले ट्रेनिंग कराए जिस स्पोर्ट से भी है वो, और उनको उस लायक बनाए, उसके बाद उन्हें भेज दे इंटरनेशनली खेलने के लिए। पदक 100% आएगा हमारे देश में भी। हमारे हमारा भी तो पदक का तालिका में संग ऊपर बढ़ना चाहिए ना, तब तक कोरिया ऊपर रहेगा, जापान ऊपर रहेगा।

0: चाइना ऊपर रहेगा भाई, हम भी तो उस लेवल पे आए 2-3 में।
1: बिल्कुल, कितना बदलाव आया सुनील जी, पहले से, पहले की बात करें और अब की हम बात करें, एक तो बच्चों में इंटरेस्ट में कितना बदलाव आप देखते हैं, और उनके परफॉर्मेंस में और बाकी कॉम्पिटिशन्स में कितना एक बदलाव आप देख रहे हैं।
0: नहीं, इसमें अब जो पॉजिटिव चीजें आई हैं, हमारे गार्जियन जागरूक हैं। अब वो क्या करते हैं ना, वो 1.5 घंटे लेके आके बैठे रहते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं और फिर लेके जाते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले गार्जियन बोलते थे सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, पर अब उनको भी स्पोर्ट्स की वैल्यू समझ में आई है, तो वो पूरा टाइम दे रहे हैं स्पोर्ट्स में भी। तो यही रीजन है कि आज फीमेल्स प्लेयर की भी संख्या मेल से ज्यादा हो गई है, और फीमेल्स हमारी बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। आप हॉकी गोल्ड मेडल, अब चीजें ना ऑनलाइन हो गई हैं, तो बच्चे भी यूट्यूब पे देख के पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा इवेंट्स कहाँ हो रहा है और हमें उसके लिए कितनी तैयारी करानी है या करनी है। तो इससे भी
1: थॉट
0: काफी
1: प्रोसेस
0: चेंजेस
1: में
0: आ
1: भी
0: रहा है,
1: बदलाव आया है।
0: 100% बदलाव आया है। अब बच्चे ना जागरूक हो गए हैं, उनको कोई भी कोच बेवकूफ नहीं बना सकता है, झूठा प्रलोभन नहीं दे सकता है कि बेटा तुमको हम यहाँ ले जाके खिला देंगे, क्योंकि उसको प्रोसेस मालूम है कि पहले हमको डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करना होगा, स्टेट क्वालिफाई करना होगा, नेशनल क्वालिफाई करना होगा, फिर हम इंटरनेशनल ले जा सकते हैं।
1: ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई सुनील जी, मैं चाहूंगा कि इसे थोड़ा डिटेल में आप बताएं। एक तो
0: जी
1: कि आज झारखंड के बच्चे खेल में कमाल कर रहे हैं, चाहे आप
0: जी
1: हॉकी की बात कर ले, चाहे आप क्रिकेट की बात कर ले, आप किसी भी विधा में चले जाए, आप खुद कराटे से आप हैं, तो ये
0: जी
1: नजर आ रहा है। तीरंदाजी की बात कर ले तो झारखंड
0: जी
1: अब अव्वल होता नजर आ रहा है, अब मेडल्स
0: 100%
1: लेता नजर आ रहा है। जो नए बच्चे हैं या जो बच्चे अब खेल पे अपने करियर को देखते हैं, थोड़ा आप ये बताएं, ये
0: जी
1: लेबल जो अभी आपने बताया कि
0: जी
1: कहाँ से शुरुआत होती है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, एशियन गेम्स क्या होता है, थोड़ा सा इसे बताएंगे आप।
0: बच्चे बच्चे जहां भी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं वो अपना ट्रेनिंग स्कूल है। जैसे स्कूल्स में हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वैसे ढेर सारे जो भी स्पोर्ट्स हैं उनके अपने ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग स्कूल है जिसका नाम है इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी, बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, फिर इन बच्चों को हम तैयार करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म कराते हैं, फिर
1: डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
0: फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको भेज दिया जाता है स्टेट के लिए,
1: ठीक है।
0: स्टेट से फिर बच्चे चले जाते हैं नेशनल में, फिर नेशनल खेलेंगे, फिर वो जाएंगे साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में।
1: साउथ एशियन यानी नेशनल
0: हाँ,
1: के बाद साउथ एशियन।
0: साउथ एशियन जाएंगे, साउथ एशियन से अगर वो मेडल लाते हैं फिर एशियन जाएंगे, फिर एशियन से वो वर्ल्ड कराटे में जाएंगे, और वर्ल्ड कराटे के रैंकिंग पे आएंगे तो फिर वो ओलंपिक में जाएंगे।
1: यानी एक लंबी लंबा संघर्ष है, आपको
0: 100%
1: आपको मेहनत करना होगा। क्या
0: जी
1: एक मैसेज देंगे आप इस चीज पे, क्योंकि जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, मुझे लगता है कि आप शायद बीच रास्ते में कहीं रुक जाएंगे।
0: नहीं, मेरा मानना है ना कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो पहले आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा कि हमको इस स्थान पे जाना है, तो आप ना डाइवर्ट नहीं होंगे, फोकस्ड होंगे, और उसी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और अपने ना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो या स्पोर्ट्स का फील्ड हो। जगह निर्धारित होनी चाहिए कि हमको वहां पहुंचना है।
1: आपको अपना लक्ष्य तय रखना होगा, मूवमेंट का प्रैक्टिस सेशन कैसा होता था, जब आप खुद के लिए प्रैक्टिस करते थे या जब आपको नेशनल खेलना था, कितना वक्त आप देते थे, तरीका क्या होता था, कैसे खुद को कंसंट्रेट करते थे, कैसे आप उन चुनौतियों से लड़े, कैसे आप मेंटली स्ट्रांग रहे।
0: हमारा प्रशिक्षण का जो पैटर्न था, हम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के 3 घंटे, 4 बजे से स्टार्ट करते हैं 7 बजे तक, क्योंकि स्कूल हमारा होता था 10 बजे से, बाकी चीजें उसके बाद होती थी। उसके बाद स्कूल से आने के बाद फिर बैग रखे, फिर ट्रेनिंग बैग लिए, फिर चले जाते थे ट्रेनिंग स्कूल्स में, फिर वहां से ट्रेनिंग करके आते थे, फिर पढ़ाई लिखाई करते थे, फिर सो जाते थे। तो सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे, 6 घंटे तो देने पड़ते थे, तब जाके आप उस लेवल पे आ सकते थे।
1: कंसंट्रेशन कितना मायने रखता है, एकाग्रता किसी
0: बहुत
1: भी चीज
0: जरूरी
1: में,
0: है।
1: किसी भी खेल में, किसी भी विधा में।
0: नहीं, एक तो कंसंट्रेशन चाहिए, दूसरा पेशेंस भी चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी इवेंट में गए और अगर हम जीत नहीं पाए, तो मेरी थॉट होनी चाहिए कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, हार गए वो नहीं होना चाहिए, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, नेक्स्ट टाइम हम इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल लेके आएंगे। थोड़ा मोटिवेशन भी होना जरूरी है, अदरवाइज जो बच्चे
1: मेडल नहीं होना चाहिए, लक्ष्य है कि हमें बेहतर
0: जी
1: खेलना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल तभी हम उस लेवल को प्राप्त कर सकेंगे। मान लीजिए आज आज बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेल गया, तो उसको कंफर्म हो गया कि कल मेरे को

0: स्टेट खेलना है तो तैयारी करेगा। ऐसे करते करते हमारे स्पोर्ट्स में कराटे में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप तक जाएगा और वो खेल के आ सकता है।
1: यानी आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, आप में पेशेंस चाहिए, आप
0: जी
1: एकाग्र हो, आपका लक्ष्य तय हो।
0: जी
1: क्या कुछ सजेशंस मैं चाहूंगा आप हमारे आज के यूथ को दें, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं आपको फिट रहना है,
0: जी
1: आप कोई
0: हंड्रेड
1: भी खेल
0: परसेंट
1: खेले आपको फिट रहना होगा,
0: बिल्कुल
1: तो आप थोड़ा बताएंगे डाइट्स कैसा होना चाहिए, किस तरह से उनका थोड़ा लाइफ स्टाइल वो फॉलो करे कि कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो,
0: करेक्ट
1: क्योंकि
0: करेक्ट
1: फिट तो
0: करेक्ट।
1: आपको रहना है। कैसे, क्या आप, क्या आपका मंत्रा क्या है फिटनेस का?
0: मेरा मंत्रा है कि एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, सोने का, उठने का, खाने का। और अगर आपको फिट रहना है तो आपको सिर्फ खाने पे कंट्रोल जरूरी है। आप प्रोटीन ले प्रॉपर तरीके से, जितना आप डाइट होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं तो वो कैलोरीज आपको वापस आएगा खाने से ही। और अगर सिर्फ आप दाल चावल खाएंगे तो उससे काम नहीं होना है। तो एक प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करना होगा कि हम सुबह ये खाएंगे, दोपहर में ये खाएंगे, शाम में ये खाएंगे, तो उससे आपका स्टैमिना भी बिल्डअप होगा और अपना अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। जिस स्पोर्ट्स में भी आप हैं, शरीर आपको अलाउ करेगा कि आप उतने देर तक एक्सरसाइज करें। मेरा मंत्र एक है कि एक डिसिप्लिन लाइफ जरूरी है इस किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए।
1: यानी ये पहला तो आप कुछ भी कर ले, आप जिम करते हैं, आप सुबह खुद
0: जी
1: से एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप योगा करते हैं, कुछ भी करते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: सबसे पहले आप डिसिप्लिन हो जाइए
0: जी
1: और फिर देखिए कि चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी।
0: 100%
1: तो सुनील जी, आपकी कुछ यादें जो आप साझा करना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के साथ, जब आप नेशनल लेवल पे गए वक्त, या कोई ऐसा मैच जो आप अक्सर याद करते हैं खाली समय जब भी मिलता है, या अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करते हैं?
0: जी। जब जब इंटरनेशनली मैं गया था फर्स्ट टाइम मलेशिया खेलने के लिए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं जब खेल रहा था तो हमारा जो फ्लैग है ना इंडिया का,
1: जी
0: वो ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब वो एक ऐसी फीलिंग है जो बयां नहीं कर सकता कोई भी खिलाड़ी। तो
1: बिल्कुल
0: ये मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके उसके बाद फिर इंडिया आने के बाद ढेर सारे मेरे को ना अवार्ड्स मिले कि भाई इसने हमारे देश का मान बढ़ाया है तो इसे सम्मानित करना जरूरी है। वो फीलिंग्स अलग थी। ये मेरे लिए सबसे अच्छी यादगार है।
1: गर्व महसूस होता है कि आपने अपने झारखंड का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया।
0: जी बिल्कुल। आज आज पूरा देश मेरे को जानता है मेरे स्पोर्ट्स में नाम से कि भाई इस नाम का एक इंसान है जो कोच भी रह चुका है और आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा हुआ है और स्पोर्ट्स को डेवलप करने में लगा हुआ है। तो ये एक अच्छा लगता है कि मैंने जो एक टाइम दिया है स्पोर्ट्स को, आज एक वैल्यू है इसमें, लोग पहचानते हैं।
1: बहुत सारे लोग आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपको सुन रहे हैं, क्या
0: जी
1: उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे आप सुनील जी?
0: मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि लाइफ में पढ़ाई के साथ किसी न किसी खेल में जुड़ना जरूरी है। एक जैसे हमारे सिर्फ हमारे कंट्री में है एजुकेशन प्राइमरी है, स्पोर्ट्स सेकेंडरी है, पर अगर हम इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में देखेंगे तो उनके लिए स्पोर्ट्स प्राइमरी है, एजुकेशन सेकेंडरी है, क्योंकि उनका मानना है कि खेलेंगे कूदेंगे तो हमारी लाइफ ज्यादा होगी और हम फिट रह पाएंगे। तो स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स से सबको जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
1: खेलना जरूरी है,
0: खेलना जरूरी है।
1: पढ़िए भी और खेलिए भी।
0: जी
1: सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए, आपने अपने लाइफ के उन पलों को भी याद किया, अपने अनुभवों को भी साझा किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम को जितने भी श्रोता सुन रहे होंगे वो मोटिवेट होंगे और वो भी एक डिसीजन लेंगे, वो भी कुछ बेहतर करेंगे और जिस फील्ड में है उसमें और मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी कार्यक्रम बढ़ते कदम में
0: जी
1: शामिल होने के लिए।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमने सुना सुनील क्रिसफोट्टा को, कराटे कोच टीम इंडिया, साथ ही चेयरमैन ट्राइबल एंड माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कमीशन कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के, रांची से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, सफलता हासिल की, संघर्ष किया, नई पहचान बनाई और आज सबके लिए मोटिवेशन है। हमें भी जिंदगी में बेहतर करना है, सकारात्मक सोचना है, खेलना है, फिट रहना है। बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत और आपको छोड़े चल रहा हूं इस खूबसूरत से गाने के साथ, जिसे सुनकर आप और भी मोटिवेट होंगे। नमस्कार।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे बढ़ते कदम, भेंट वार्ता, संघर्ष से सफलता, सफलता से पहचान, अब खेल दे रहा नई राह। भेंट वार्ताकार थे सुनील क्रिस्पोटा, कराटे टीम इंडिया कोच, भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी दोस्त राधा
1: और मैं हूँ

0: दीदी।
1: हाँ, कार्यक्रम जोहार रांची में आपका स्वागत है साथियों, मेरे साथ और कृति के साथ। कार्यक्रम शुरू करते हैं एक सुंदर विचार से, क्यों कृति?
0: बिल्कुल।
1: जब देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम और सम्मान देना सबसे बड़ा धन है। रिश्ते पैसों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। सही है दोस्तों, रिश्तों की मधुरता त्योहारों में और भी बढ़ जाती है ना कृति? जब हम दूसरे से मिलते हैं तो प्यार मोहब्बत से ही मिलते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं बहुत ही मोहब्बत से। जैसा कि अभी पावन पवित्र समय दुर्गा पूजा का चल रहा है, ये पर्व हमारे जीवन को और परिवार को नई खुशियां और उमंग से भर देती है। तो चलिए माँ दुर्गा को नमन करते हैं।
0: और माँ दुर्गा को नमन करते हुए हम सुनते हैं एक गीत, क्योंकि आज आरोग्य, ऊर्जा और अष्ट सिद्धि की देवी माँ कुष्मांडा की पूजा है।
1: हाँ, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन माता रानी का।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप
3: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
5: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
6: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
7: कृति, आज मौसम की बातें करें तो आज 14 अक्टूबर है। मौसम आज का दिन रांची का मौसम साफ और धूप रहने की पूरी उम्मीद है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। ये आसिन का मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है। मीठी मीठी प्यारी धूप बारिश के बाद जब हमारे घरों में और हमारे बदन पर पड़ती है तो बहुत ही राहत महसूस करते हैं। क्यों कृति, ऐसा तुम भी महसूस करती होगी?
8: हाँ, बिल्कुल। और मौसम बदलने के साथ हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। तो हमें सर्दी और गर्मी के बीच का संक्रमण
7: मौसम संक्रमण का काल होता है।
8: तो इस ऐसे में हमें हल्का गर्म भोजन करना चाहिए और सर्दी जुकाम से बचने के लिए अदरक तुलसी इसकी चाय पीने चाहिए और हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए।
7: हाँ, इस मीठे मौसम का स्वागत करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
4: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
5: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
6: कृति, आज का मौसम और अभी का मौसम कितना खूबसूरत होता है ना, अक्टूबर का मौसम, और उसमें ये पूजा पाठ और दशहरे का मौसम, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा ना?
7: हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है।
6: तो साथियों, ये मौसम बड़ी ही खूबसूरत और सुहावना है, ऐसे मौसम में घूमने का अपना एक अलग ही आनंद है। अगर आप घूमने की कहीं सोच रहे हैं तो विंध्याचल धाम जरूर जाएं। अभी माता रानी की पूजा अर्चना भी है और विंध्याचल धाम जो मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र शक्तिपीठ है। कीर्ति, यहाँ जाने के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, गया जी से भी यहाँ आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से माँ विंध्यवासिनी की पूजा की जाती है, जिन्हें माता दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। पता है कृति, कहा जाता है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तब उन्होंने विंध्य पर्वत को ही अपना अस्थायी निवास बनाया था। पुराण में भी यह वर्णित है कि यहाँ माँ दुर्गा सशरीर विराजमान रहती है।
7: और एक दिलचस्प बात यह भी है कि विंध्याचल की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त त्रिकोण परिक्रमा पूरी ना कर ले। तो आप जाने की तैयारी करें विंध्याचल जाने की, या अपना मन बनाए, तब तक के लिए सुनते हैं यह गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कृति, बातें तो हम कर ही रहे हैं तो इतिहास की ओर भी रुख करते हैं। आज के दिन यानी 14 अक्टूबर को देश और दुनिया की कुछ अहम जानकारी हम श्रोताओं को दे देते हैं। आज के दिन 1953 में भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया था स्वीकृति, और आज के ही दिन 14 अक्टूबर को 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था।
2: हाँ, और 1882 में आज ही के दिन पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी।
1: हाँ, और आज के ही दिन 1964 में डॉक्टर मार्टिन लूथर क्यों जूनियर को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो और सुनते हैं प्यारा सा नगमा और श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: इसके साथ ही संपन्न होता है हमारा कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं को हमारा और कृतिका
1: जोहार,
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सुनिए राजेश कुमार झा से, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं राज हॉस्पिटल के।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम इनसे मिलिए में। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा, जो राज हॉस्पिटल रांची के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही वाइटैलिटी कार्डियक क्लिनिक के भी सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर हमारे श्रोताओं को संक्षेप में आपका परिचय बताएं। सर
2: नमस्कार श्रोतागण, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे बारे में। मैं राजेश कुमार झा हूं और मेरी इनिशियल पढ़ाई बिहार में हुई थी 6-7 तक। उसके बाद फिर मैं पापा रांची आ गए तो मैं भी रांची आ गया। रांची से मैंने 10th और 12th किया, फिर MBBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहली बार नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में। फिर MBBS मैंने मुंबई से किया, फिर MD मेडिसिन मैंने रांची से किया, DM कार्डियोलॉजी मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया, फिर वहीं पर मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट था GB पंत हॉस्पिटल में और आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। फिर वहाँ से मैं राज हॉस्पिटल रांची में आर्टेमिस हॉस्पिटल का एक ग्रुप कार्डियोलॉजी सेंटर मैंने यहाँ पर स्टैब्लिश किया से। जो मैं इम्पॉर्टेंट है आजकल जो युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग मेडिकल अभी नीट का काफ़ी चल रहा था चर्चा, तो मैंने जानबूझकर आपको ये बताया कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में MBBS हुआ था, कि ऐसे लोग जिनको पहली बार नहीं होता है उनको हताश नहीं होना चाहिए, और मैं भी हताश नहीं हुआ था और पूरी एनर्जी से अगली बार मैंने दिया और प्रैक्टिस करता हूँ, हेल्दी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों को, यंग जनरेशन को, कि हताश नहीं होना चाहिए और मेहनत से, लगन से। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती था हमेशा। मैं पढ़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक करता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंटेलिजेंट हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर यही करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना टाइम आप डिवोट करते हैं अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस समय के लिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: ये इंटेलिजेंस और डिलिजेंस का जो सर आपने फर्क बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए। परसीवियरेंस होना चाहिए कि जब आपने गोल डिसाइड किया तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहें।
2: जी,
1: आप दौड़ेंगे तो थक सकते हैं लेकिन चलेंगे तो आप लंबा चल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आने से मिली

0: या तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहें।
1: जी, जी,
0: आप दौड़ेंगे तो थक सकते हैं, लेकिन चलेंगे तो आप लंबा चल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आने की मिली आप लंबा चल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आने की मिली

0: कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आप रांची में हैं और बहुत लंबी आपकी प्रैक्टिस है, तो इस यात्रा का मूल्यांकन कैसे करते हैं सर?
1: मैं तो यही कहूँगा, ये एक फेज वाइज होता गया, रास्ते में कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस भी आए हैं और वो तो आएगा ही, कोई भी आप कहीं भी चलते हैं तो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, बस उसको सक्सेसफुली और थोड़ा पेशेंस रख करके उसको हैंडल करना है, और जो जैसा मैंने बताया निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो मैं भी वही मेहनती था, मेहनत करता रहा, और एक जो हमारे सर थे सफदरजंग हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जब मैं डीएम कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और लाइफ में एक चीज़ ज़रूर है कि अगर तुम अपने काम के साथ और अपने पेशेंट के साथ ईमानदारी रखोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर के कार्डियोलॉजिस्ट से होते हुए डायरेक्टर मैं बना हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा काम के लिए ईमानदारी और जितना मेहनत कर सकते हैं वो किया है। तो वो चीज़ मुझे सीख अभी तक मिली हुई है, और जब मैं आर्टिमिस में गया तो वहां के डायरेक्टर जो थे उन्होंने भी मुझे यही बोला, और मैंने उनको यही बोला, ही वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो वो काफी ईमानदार आदमी है, तो वो चीज मेरे अंदर अभी भी है और आशा करता हूं कि पूरी जीवन ये चीज मेरे लिए रहे।
0: ये बड़ी प्रेरणादायक बात आपने कही सर कि अपना कार्य अगर हम ईमानदारी से करें और एक एक ध्येय की तरफ हम चलते रहें तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाती हैं।
1: जी,
0: और जो आपने अवरोधों की बात की तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर, आपने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर कई बार जीवन और मृत्यु की कॉल्स भी ली होंगी, कई बार स्प्लिट सेकंड के डिसीजंस लिए होंगे सर, जिनसे किसी पेशेंट की जान बची होगी, कई बार सर ऐसा नहीं भी हुआ होगा, जबकि एज अ डॉक्टर आपको हमेशा पता रहता है कि पेशेंट का आउटकम क्या है।
1: जी जी,
0: इन स्थितियों को सर आप स्वयं के लिए कैसे मैनेज करते हैं और पेशेंट के परिजनों के लिए कैसे मैनेज करते हैं?
1: एक्चुअली पहले और अभी में प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क आ गया है। पहले लोगों को, जो जनरल लोग हैं, उनको ज्ञान का अभाव होता था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें उन्हें मालूम नहीं होता था, वो यही समझते थे कि डॉक्टर साहब के यहाँ है पेशेंट, अब भगवान चाहेंगे तो बचेंगे नहीं तो नहीं बचेंगे, तो डॉक्टर भी ईमानदारी से काम करते थे जैसा भी रिजल्ट रहा। आज के डेट में क्या हुआ है, युवा स्पेशली चैट जीपीटी और बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और इतने सारे सवाल करते हैं, तो उसमें और जनरल आदमी को ये नहीं पता कि जब हम इंटरवेंशन करते हैं उस समय 1-2 मिनट का ही फर्क होता है, और कई बार हमने देखा 1-2 मिनट में ही पेशेंट का जान भी बचा है, 1-2 मिनट में ही फील हो जाता है कि अब ये नहीं बच सकते हैं, तो वो जो टाइम होता है हमारे लिए वो बहुत ही खराब टाइम होता है, क्योंकि एड्रिनर्जिक लेवल जो है ना, एड्रिनलिन लेवल हमारे शरीर में वो फुल टाइम हाई होता है, तो ये जो इमोशन का जो हमारा अप एंड डाउन होता है, इसी वजह से आप देखे होंगे कि अभी जो डॉक्टरों का एवरेज एज इंडिया में 70 है, लेकिन जो डॉक्टरों का एवरेज एज अभी 60 या 65 ऐसी कुछ है, 5 से 10 साल कम है, और वो ये जो स्ट्रेस लेवल है ना, जनरल लोग नहीं समझ सकते हैं जो हम लोग फील करते हैं। और मानिए ना मानिए, एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये जो भी होता है वो सारा श्रेय हम लोग कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति है, भगवान है, जो भी जैसे बोलिए, जरूर है, क्योंकि उनके बिना हम भी अंदर जाते हैं तो यही सोचकर कि बढ़िया से हो जाए, आने के बाद हमेशा धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि वो 2 मिनट ऐसा होता है जिसमें आप एक्सपर्ट कितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर पेशेंट को बचना है तो डेफिनेटली बच जाते हैं।
0: एक्चुअल में सर मेरा प्रश्न ये होने वाला था, ये चैट जीपीटी और यूथ को लेकर के, कि ये वेब एमडी से संबंधित जानकारियां और तमाम अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है जो सामान्य जानकारियां दे देते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो एक एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी तक पहुंचने के लिए आप लोग अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष उसमें डिवोट करते हैं
1: जी,
0: वर्सेस कोई एक व्यक्ति आता है और वो प्रश्न पूछने लगता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया
1: जी,
0: तो ऐसे में सर थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेवल की आपने बात की, आप लोग अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं?
1: देखिए, पहले किया था होते हो पूछने वाले, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया है कि वो भी अपनी जगह पर जायज है, गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका जो पेशेंट है उनके लिए एक ही पेशेंट है, हमारे लिए तो बहुत सारे पेशेंट हैं, तो हर पेशेंट अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनके लिए, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में

0: तो अब हम लोग यही है कि मैं तो करता ही हूँ, और सबसे मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों को भी थोड़ा पेशेंसली उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर होना सबसे ज़्यादा जरूरी
1: संवाद
0: है।
1: होना आवश्यक
0: संवाद,
1: है
0: सम
1: वहां
0: बिना
1: पर।
0: संवाद के अगर हम काम करते हैं तभी ये प्रॉब्लम होता है। तो अब ये आदत सी हो गई है, लोग पूछते हैं, पेशेंसली कूल होकर उनको जवाब दीजिए तो उनको भी अच्छे से समझ में आता है। बस थोड़ा हमें भी समय डिवोट करना पड़ता है, और उनको भी सामने वाले को समझना चाहिए। अब उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझना चाहते हैं, तो अब सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर
1: नहीं कर
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं उसमें। सर, नीतिगत तौर पर अगर देखें, अगर पॉलिसी लेवल पर हम लोग जाकर देखें, तो एक वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक होने के नाते पॉलिसी लेवल पर आप क्या चेंजेस चाहें।

0: उनको मैंने एंजियोप्लास्टी किया। अभी काफ़ी सारी योजनाएं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी चीज़ें, दवाइयां अवेलेबल रहती हैं, एटलीस्ट ब्लड थिनर और जो स्टैटिन होती हैं उसका रेट भी सरकार ने फिक्स कर दिया है। तो अगर लोगों के मन में कई बार भय होता है कि ये ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है, मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत करीब करीब झारखंड थ्रू हम लोग करते हैं। दूसरी पॉलिसी जो झारखंड जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पर अभी भी दुर्गम एरिया में, जिसको हम लोग खूंटी ही बोलेंगे, जो कि रांची से हार्डली 1 घंटे की डिस्टेंस पर है, लेकिन अभी भी वहाँ सरकारी अस्पताल में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ मॉडल अपनाना पड़ेगा जिसमें इंसेंटिव लोगों को थोड़ा ज़्यादा आप सैलरी दे करके डॉक्टर को रखें, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया में कोई भी नहीं जाना चाहते हैं, और वो भी इतना पढ़ाई करने के बाद। तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को एटलीस्ट बेसिक सुविधाएं और बाकी चीज़ें मिले। ऑल्दो अभी आयुष्मान भारत के बाद मैंने देखा है सदर अस्पताल जो भी हैं स्टेट में, उसकी स्थिति काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उसमें यही है कि कैथ लैब और बाकी चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो होने के लिए हम लोगों को थोड़ा अलग से प्लानिंग करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर और नर्सेस वहाँ फुल टाइम रहें, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले।
1: एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं,
0: जी
1: दोनों अपनी बात कह सकें और उसके आधार पर कुछ आगे पॉलिसी डिसीजंस
0: नहीं,
1: होने
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इतने बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल मैनेज करना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं अभी झारखंड में, मैंने देखा है आयुष्मान भारत के अंडर में बहुत सारा NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है, उसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को इंक्लूड किया गया है, और इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को, और संवाद भी होता है, इससे आपस में कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे राय हम भी देते हैं, वहाँ से भी हमें मिलता है, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है।
1: सर, सामाजिक तौर पर भी आपका रांची में काफी नाम लिया जाता है, तो सामाजिक तौर पर आप कैसे सक्रिय रहते हैं?
0: जी, मैं जब MD कर रहा था उस समय हमने यहाँ लोधमा गांव है, उसमें पूरे गांव को गोद लिया था। पहली बार हमने देखा कि गांव में बिजली तक नहीं है, तो हमने यहाँ पर KK सोन साहब हुआ करते थे DC, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने काफ़ी सहायता किया, मदद किया, और हम लोग अपने से गाँव में बिजली, लाइब्रेरी खुलवाया हमने हेल्थ के लिए, हमने वहाँ पर रेगुलर कैंप 3 साल तक हम लोग किए, और बैम्बू क्राफ्टिंग के लिए लोगों को, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अभी भी है, यूथ फॉर इक्वालिटी, तो उसके थ्रू हमने असम से एक बॉम्बू के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको बुलवाया था रांची, और 2 दिन तक उन्होंने वर्कशॉप करवाया था। उसके बाद से अब जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एक NMO है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू मैं थोड़ा सक्रिय रहता हूँ, कैंप वैम्प भी करता हूँ रूरल एरियाज में जा करके।
1: आपकी प्रैक्टिस से जो समय मिलता है सर, बचा हुआ, उसमें आप अपनी हॉबीज को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ तो हॉबीज होंगी सर
0: सही
1: ऐसी
0: मायने में
1: आपकी।
0: बोले तो टाइम बहुत कम मिलता है,
1: जी,
0: लेकिन कुछ हॉबीज हैं, एक सुबह एक्सरसाइज और योगा करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मैं सबको सलाह देता हूँ, हार्ट के मरीजों को जो करना चाहिए। और उसके साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि गाड़ी में जब भी जाता हूँ तो 103 अपना जो FM है वो मेरा पसंदीदा FM है, क्योंकि उसमें गाना कंटिन्यूअस चलता है, बकवास कम होता
1: सर, ये जो जो आपने संगीत या मनोरंजन वाले कार्यक्रम की बात आपने कही, तो क्या संगीत का शौक आपको है?
0: है। जी बिल्कुल, लेकिन ओल्ड सॉन्ग्स मुझे ज्यादा पसंद है, नए सॉन्ग्स में कम सुनता हूँ,
1: जी
0: सहगल साहब और बाकी जो उस समय का, चूंकि मुंबई में हम लोग एक जगह खाना खाने जाते थे बचपन में, तो वहां पर अक्सर ये 70s, 50s, 60s का गाना चलता था, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
1: कोई कोई एक ऐसा फेवरेट सॉन्ग सर जो बड़ा दिल के करीब हो आपके?
0: तो याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सहगल साहब का कुछ बरसात का मौसम है, कुछ चला दीजिए।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर राजेश कुमार झा। आपने हृदय रोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में एक एक झलक उन्होंने दी, जिससे ये पता चलता है कि एक चिकित्सक भी, एक डॉक्टर भी पहले इंसान होता है और तब फिर वो डॉक्टर बनता है, तो वो भी पूरे समाज के विषय में सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपका। इनसे मिलिए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, लेकिन इस संदेश के बाद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
5: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी
6: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है समाधान दीदी की एआई तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है
5: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें
6: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी

साथियों, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये गाना सुनते हैं हम फिल्म फिर मिलेंगे से। रचना समीर के हैं, संगीत निखिल विनय के और सुर हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम के। इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मिक्का बीरक।

ये अगला गीत जिसे सुनना चाहा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी राज। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा नगमा जो फिल्म दिल है तुम्हारा से लिया गया है, रचना समीर के हैं। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और स्वर है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। ये अगला गीत, जिसे सुनना चाहा है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू और चरण डोंगरी पपरिया से दुर्गा राम साहू। फिल्म है फिल्म फाइव, रचना उपेंद्र कुमार उपाध्याय का है, संगीत विभाव का है और सुर है सोनू निगम के। आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, ये अगला गीत है फिल्म ब्रदर्स से। रचना अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, संगीत अजय अतुल के, स्वर हैं सोनू निगम और नितिन मोहन के। इस गीत को सुनना चाहा है रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और रांची यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा है। नाम है विकास, अरुण और गायत्री। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म मेरा साया का ये गीत था। सिंगर मोहम्मद रफ़ी थे और इस गीत की रचना की थी राजा मेहदी अली खान ने। इस गीत को सुनना चाहता उत्तम कुमार भगत और श्वेता भगत, किशु और तासु, पाकुड़, झारखंड से। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का समय हो चुका है, जिसके सूत्रधार हैं लता रानी और रानी शुक्ला। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोता बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी और परिवार संग प्रसन्न भी। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ हैं हम दो सखिया, मैं लता
1: और मैं रानी। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए, साथ ही पूरे गृहलक्ष्मी परिवार की ओर से आप सभी बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में सुख शांति और खुशहाली का वास हो, यही कामना है हमारी, क्यों लता?
0: बिल्कुल, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, चारों ओर भक्ति का माहौल है, बाजारों में रौनक है, घरों में तैयारियां चल रही है और हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ खरीदारी में जुटा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं पूजा की सामग्री खरीदारी की जा रही है तो कहीं मिठाइयां, कपड़े और घर के सजाने के सामान।
1: हाँ बिल्कुल सच लता, त्योहारों का मौसम हो तो घर आंगन से लेकर बाजार तक हर तरफ रौनक दिखाई देती है, लेकिन बहनों इन खुशियों के बीच कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी तो उतना ही आवश्यक है ताकि हमारी खुशियाँ सुरक्षित रहे और त्योहार का आनंद दोगुना हो जाए। और त्योहारों पर तो हम अपने घर और परिवार के लिए कितनी सारी चीजें खरीदते हैं ना लता?
0: हाँ रानी, तुमने भी बहुत कुछ खरीदारी कर रखी होगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बहनों खरीदारी की इस चहल पहल के बीच क्या हम ये भी देखते हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, कितनी गुणवत्ता उसकी कैसी है और क्या वो निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है?
1: बात तो बहुत जरूरी है लता, क्योंकि सामान खरीदते समय हमारी नजर अक्सर उसकी कीमत, रंग और सुंदर पैकिंग पर जाती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना भी तो उतना ही आवश्यक है बहनों।
0: हाँ, और यहीं पर मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बहनों मानक ऐसे निर्धारित नियम और मानदंड हैं जो उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
1: हाँ बहनों, हर चीज की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए कुछ तय नियम और मापदंड होते हैं ताकि हमें सही और सुरक्षित उत्पाद मिल सके, और इन्हीं मानकों के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है।
0: यानी मानक सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं होते बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हर रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर बिजली के उपकरण, हेलमेट, खिलौने और कई दूसरी चीजों की खरीदारी में ये जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ देखना जरूरी है बहनों कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानक पर खरा उतरता है या नहीं।
1: और घर की खरीदारी में तो महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है लता।
0: हाँ।
1: इसलिए सामान खरीदते समय सिर्फ सुंदर पैकिंग या कम कीमत देकर फैसला भी नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल बहनों, रानी बहुत अहम बात कर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अट्रैक्टिव पैकिंग देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें पैकेट पर दिए गए जरूरी विवरण, गुणवत्ता से जुड़े चिन्ह, निर्माण और समाप्ति की तारीख और मात्रा और अन्य जरूरी जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
1: हाँ, और पता है बहनों, हमारे देश भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता से जुड़े कार्य करता है।
0: हाँ।
1: आपने कई उत्पादों

0: पर ISI चिन्ह देखा होगा, ये उस उत्पाद के भारतीय मानक के अनुरूप होने का संकेत है।
1: हाँ बिल्कुल। और सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर त्योहारों पर गहने खरीदना तो बहुत सी महिलाओं की पसंद होती ही है। ऐसे में सोने की शुद्धता से जुड़ी जानकारी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी
0: हाँ
1: है।
0: बहनों, त्योहारों में खरीदारी में थोड़ी सी जागरूकता बहुत काम आती है। खाद्य पदार्थों पर FSSAI से संबंधित जानकारी, सोने के आभूषणों पर लागू हॉलमार्क और संबंधित उत्पादों पर आवश्यक गुणवत्ता चिन्हों की जांच करना अच्छी खरीदारी का हिस्सा है। पर ध्यान रहे, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं होता।
1: बिल्कुल, खासकर खाद्य पदार्थों में तो थोड़ी सी लापरवाही भी हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए जागरूक ग्राहक बनना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह हो या उसके बारे में जरूरी जानकारी ना दी गई हो तो सवाल जरूर पूछें।
0: हाँ, क्योंकि सही जानकारी के साथ की गई खरीदारी सिर्फ पैसे की बचत नहीं करती, बल्कि हमारे परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है बहनों। और याद रखें, अच्छी चीज सिर्फ वो नहीं जो देखने में अच्छी हो, बल्कि वो है जो गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर भी खरी उतरे।
1: हाँ रानी, बहुत सही कहा तुमने। और त्योहारों की असली खुशी तभी है जब हमारी खरीदारी भी सुरक्षित हो और घर परिवार भी खुशहाल रहे। और जागरूक ग्राहक वही है जो सवाल पूछने से नहीं हिचकता और खरीदारी करते समय सही जानकारी हासिल करता है।
0: इसलिए बहनों, आप जब भी बाजार जाएं या घर के लिए कोई नया सामान खरीदें तो गुणवत्ता और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि घर को सुंदर बनाना जितना जरूरी है, घर को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। और त्योहारों की असली खुशी महंगी खरीदारी में नहीं, बल्कि अपनों के साथ सुरक्षित और सुखद पल बिताने में है।
1: बिल्कुल, इसीलिए इन त्योहारी मौसम में तभी हम खुशियों की बौछार कर पाएंगे और हमारे घर आंगन में खुशियां ही खुशियां छाएंगी।

0: तो मैनु स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बचपन की ओर और संस्कारों की दुनिया।
1: हाँ बिल्कुल बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध हमारे बच्चों के भविष्य और समाज की दिशा से है। क्यों लता?
0: हाँ, संस्कारों का बच्चों के व्यक्तित्व विकास में योगदान। मैंने एक बार हमने जैसा बताया था, कई बार हम हमेशा चर्चा करते हैं कि संस्कारों का बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कितना बड़ा योगदान है।
1: हाँ।
0: कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढाला जाता है धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व वैसा ही आकार लेने लगता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उनमें अच्छे संस्कार विकसित करना है, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देते हैं जबकि संस्कार हमें उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाते हैं।
1: बिल्कुल लता, बचपन जीवन की वो अवस्था है जब बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। बहनों, वे माता पिता, दादा दादी, शिक्षक और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार देने की शुरुआत तो घर से ही होती है।
0: हाँ बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव भी बच्चों पर तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हम सब इससे वाकिफ है और हमको लगता है हर बहने हमारी जो है वो इस चीज से बहुत ही करीब से इन चीजों को जानती हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनसे खुलकर बातचीत करें और अच्छे बुरे में अंतर करना सिखाएं। और इसकी जगह पर कहानियों, प्रेरक प्रसंगों, पुस्तकों और पारिवारिक गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा लता, ये भी ध्यान रखना जरूरी है बहनों कि संस्कार देने का अर्थ बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं है। उनकी जिज्ञासाओं को समझना, सवाल पूछने की स्वतंत्रता देना और गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करना भी अच्छे संस्कारों का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, बहुत खूब कहा तुमने रानी। मैंने याद रखिए, संस्कारवान बच्चे जो है केवल अपने परिवार का गौरव नहीं होता बल्कि वह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम बच्चों में प्रेम, ईमानदारी, सहिष्णुता और जिम्मेदारी के बीज बोएंगे ना, तो कल एक संवेदनशील और बेहतर समाज का निर्माण भी यही बच्चे करेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने लता। और बहनों, बच्चों को केवल सफल बनाने का प्रयास न करें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। क्यों लता?
0: बिल्कुल बढ़ाएं, और कदम बढ़ाने के साथ अब हम आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और लेते हैं छोटा सा विराम।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
5: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
4: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
6: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।

0: एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो बहनों, हम बात कर रहे थे बच्चों में विकास की और उनमें हम बहनों की, हम माताओं की जो संस्कार देने की प्रवृत्ति है उसकी, क्योंकि रानी हमें लगता है कि हमारा बच्चा जैसा भी हो हमारे लिए तो वो चांद तारे से कम नहीं है।
2: बिल्कुल।
1: तो चलो बहनों के साथ हम अपने बच्चों के संग चांद तारों की दुनिया में चलते हैं।

0: चंदा और सूरज का खूबसूरत गीत सुनकर के हम भी चांद तारों की दुनिया की सैर कराएं
1: हाँ
0: क्या?
1: हाँ बिल्कुल। लेकिन अब बात है एक
0: हाँ
1: और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की।
0: बिल्कुल, जो हमें अपने नन्हे मुन्नों को भी सिखाने की जरूरत है।
1: हाँ
0: तो आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे अनमोल संसाधन जल संरक्षण की। मानो जल ही जीवन है, इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खाने पीने, खाना बनाने, खेती और दैनिक कार्यों के लिए पानी हमारी बुनियादी जरूरत है। लेकिन बढ़ती आबादी, पानी की बर्बादी और भूजल के लगातार गिरते स्तर के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल लता, ऐसे में जल संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है बहनों। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखें, नहाने में जरूरत से ज्यादा पानी खर्च न करें और घर में कहीं भी नल से पानी टपक रहा हो तो उसकी मरम्मत कराएं।
0: बिल्कुल, और बच्चों को अवश्य सिखाएं कि बच्चे अगर अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं और नल का पानी जो है वो बह रहा है तो उसे ध्यान से देखकर चेक करके ही बाहर निकले। और ये छोटी छोटी जो पहल है ना बहनों, वो बहुत अहम है और इससे हम थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत संरक्षण जो है की जरूरत है और उसे हम पूरा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बहनों, बारिश के पानी को वर्षा जल संचयन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है, हम अब अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और तालाबों व कुओं जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को भी बचाकर भी हम जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। और याद रखें बहनों कि पानी की हर बूंद कीमती है।
1: हाँ, और साथ ही ये भी याद रखिए बहनों कि पानी बचाने के लिए हमें किसी बड़े अभियान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में पानी की बर्बादी रोककर वर्षा जल संचयन, जैसा कि लता ने कहा, इसको बढ़ावा देकर और दूसरों को जागरूक करके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: हाँ,
1: आज हम पानी बचाएंगे लता, तभी तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे।
0: हाँ, और बहनों, आज इसी जानकारी के साथ हम यह संकल्प लें कि न पानी बर्बाद करेंगे न दूसरों को करने देंगे।
1: बिल्कुल,
0: जल बचाएं, जीवन बचाएं। और इसी संदेश के साथ अब हम सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: तो वाकई इस माता रानी की भजन को सुन करके हम सब भक्तिमय हो उठे।
1: बिल्कुल।
0: और बहनों, त्योहारी मौसम चल रहा है, माता रानी के दरबार में हम सब उपस्थित हैं, और आइए हम इसी के साथ कार्यक्रम के जरिए ही हम माता रानी की उपासना करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और इसी के साथ अब लता, समय हो गया है
0: बहनों से विदा लेने का। तो बहनों, चलते चलते आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। तो अब अपनी सखी लता
1: और रानी को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप मेरे साथ यानी अपनी दोस्त राधा के साथ सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो आपके लिए है।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। साथियों, हम आपके साथ एक बात साझा करना चाहते हैं कि मौन वह शक्ति है जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। कभी कभी खामोश रहना जान कमजोर हमें नहीं बनाता, बल्कि बहुत बड़ा मानसिक बड़प्पन और समझदारी होती है मौन रहना। आइए सुनते हैं इसी बात पे एक और प्यारा सा नगमा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: Cena.
1: साथियों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि दुख हमें होता है तो दुख का सबसे बड़ा कारण दूसरों से हद से ज्यादा उम्मीदें रखना है। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ मत दीजिए।

साथियों, मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहती हूँ कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि अनुभवों और ठोकरों से आती हैं। गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप और हम कोशिश करते रहते हैं, और कोशिश करना भी जीवन का आधार है और उद्देश्य भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत ने तपेदिक के खिलाफ हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 2015 से 2024 के बीच नए मामलों में 21% की कमी दर्ज। बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। राज्य के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को उपलब्ध होगा बेहतर इलाज। आईसीयू सीसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी। ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं होंगी मजबूत। भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची, प्रदेश कार्यालय में करेंगे बैठक। कहा, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ कर रहे काम। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज खुलेंगे कई प्रमुख पंडालों के पट। प्रशासन ने की सुरक्षा की व्यापक तैयारी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में देश में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। भारत में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है। केंद्र सरकार ने टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। दवा प्रतिरोधी टीबी के मरीजों के लिए 6 महीने का नया

0: सक्षम सदर अस्पतालों में पायलट आधार पर डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों में 5,25,00,000 रुपए की लागत से 21 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के अनुसार इससे लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल आज रांची पहुंचे। पत्रकारों से पटेल की बैठक में वे हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व सांसद बृजमोहन राम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यपाल का जिम्मा देना गर्व का क्षण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश के साथ में कि सबका साथ और सबका विकास, महामहिम राज्यपालों की जो नीतियां हुई उसमें आप झारखंड के ही एक अनुसूचित जाति वर्ग के एक हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता थे, बहुत वरिष्ठ कर हमारे नेता भी हैं, उनको महामहिम राज्यपाल बनाया है और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच का एक छोटा सा कार्यकर्ता को इस प्रदेश की कमान सौंपी है।
0: संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने देवघर के मोहनपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की सभी शाखाओं, अभिलेखों के रखरखाव, कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजी और जन शिकायतों से संबंधित फाइलों की बारीकी से जांच की। उन्होंने अंचल अधिकारी को जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।
2: निरीक्षण का था संबंध कार्यालय कार्यों में या फिर कहीं किसी योजना आदि के एग्जीक्यूशन में यदि किसी तरह की खामी तो उसको सुधार करना है, प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह से दुरुस्त करना है ताकि जन समस्या का निराकरण सौ समय हो, लोक कल्याणकारी कार्यों में विशेष रुचि ले, इसका लाभ आम जनता को।
0: भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के बीच टाटा पावर ने डेटा सेंटर क्षेत्र में अपनी कारोबारी संभावनाओं को मजबूत किया है। टाटा पावर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी 18 प्रमुख वैश्विक और घरेलू डेटा सेंटर संचालकों के साथ 29 सक्रिय कार्यक्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इस पोर्टफोलियो में कंपनी के वितरण नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले आगामी डेटा सेंटरों की लगभग 430 मेगावाट बिजली मांग, पारेषण से संबंधित 1,236 मेगावाट के अवसर और 1,150 मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कहा कि भारत सरकार सेमी कंडक्टर परियोजनाओं की सफलता के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है।
3: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है।
0: बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेट्टी इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। आरसेट्टी से प्रशिक्षण के बाद कई लोगों ने स्वरोजगार शुरू कर अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: बोकारो के अनिल कुमार और नीतू कुमारी ने बताया कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
1: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा युवती जी, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। कृषि संबंधित प्रशिक्षण होता है, प्रोसेस प्रोडक्ट संबंधित प्रशिक्षण होते हैं।
2: मेरा नाम अनिल कुमार है। प्रधानमंत्री जी के बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ और कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया। टाइपिंग कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश का, जिससे मेरी 10 से 15 हजार की आमदनी हो जाती है।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक गिरावट के साथ 22,692 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,27,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है। आज चतुर्थी पर रांची में कई प्रमुख पूजा पंडालों के पट खोले जाएंगे। इधर कोडरमा में कल आधी रात के बाद एसपी कुमार शिवाशीष ने कोडरमा और झुमरी तिलैया शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों शहरों की पेट्रोलिंग पार्टी और पैंथर यूनिट को खास दिशा निर्देश देते हुए इस त्योहारी मौसम में रात के समय विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया।
3: दुर्गा पूजा का समय है, अच्छा पेट्रोलिंग करते रहे, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास पेट्रोलिंग अच्छे से करते रहे। तक जुलूस खत्म नहीं होता तब तक उनके साथ रहे। पेट्रोलिंग इफेक्टिव हो रही है, टोटल 4 बाइक पार्टीज बना रहे हैं, हमारे सिविल दस्ता भी रहेंगे और इसके अलावा हम लोग के पास टोटल अप्रोक्सीमेटली 300 एक्स्ट्रा फोर्स है और 200 एक्स्ट्रा होमगार्ड आ रहे हैं, तो 500 लोगों की हम लोग टोटल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं।
0: क्रिकेट, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराने के बाद भारत 5 मैचों की इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत ने तपेदिक के खिलाफ हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 2015 से 2024 के बीच नए मामलों में 21% की कमी दर्ज। बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। राज्य के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को उपलब्ध होगा बेहतर इलाज। आईसीयू सीसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी। ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं होंगी मजबूत। भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची। प्रदेश कार्यालय में करेंगे बैठक। कहा प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ कर रहे काम। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज खुलेंगे कई प्रमुख पंडालों के पट। प्रशासन ने की सुरक्षा की व्यापक तैयारी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। साथियों, उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कलाकार हैं शोभा गुड्डू, बोल है छोड़ो छोड़ो डगरिया और राग है मिस्र पहाड़ी में ये ठुमरी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थे शोभा गुट्टू।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे चुनिंदा चंद गजलें। कलाकार हैं आशा भोसले।

0: the cherry for the day. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied with hailstorm over Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Punjab and West Rajasthan till Friday. IMD said that thunderstorms accompanied by lightning and lightning over Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan and Vidarbha, Himachal Pradesh, Keralam and South Interior Karnataka during the next 2 days. In men's cricket, India will face West Indies in the fourth T20 International in Hyderabad today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India lead the five-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in the third T20I in Indore last Sunday. In badminton, Tanvi Sharma and Kidambi Srikanth progressed to the second round of the Denmark Open 2026 after securing hard-fought victories in their opening matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% down in afternoon session today. Sensex fell 351 points to 72,682, while Nifty lost 125 points to 22,598 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dipped marginally, while small-cap 100 index declined 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India proposes developing joint India-ASEAN research agenda focused on maritime security and emerging technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, world is moving towards new international order with wide range of countries playing greater role in global affairs. Wholesale price index inflation rises to 11.39% in September this year. IMD forecasts heavy rainfall over Jammu Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu and Puducherry for today. And in cricket, India to take on West Indies in 4th T20 International in Hyderabad today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय हैं आगे बढ़ाता है।
1: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।

0: इंफ्रास्ट्रक्चर।
1: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: $10 trillion of GDP, भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
3: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
4: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
5: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlert.

0: अलर्ट्स को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणाली और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
2: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से सुरंग बेहद महत्वपूर्ण, इस पर सेला दर चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की वजह सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। फिल्म का नाम था गंगा की लहरें। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से चुना है। शब्द आनंद बख्शी की, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति,

0: अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म अदालत का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर, शब्दकार हैं राजेंद्र कृष्ण और धुन मदन मोहन की।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

अभी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। गीत को शैलेंद्र ने लिखा था और तर्ज शंकर जयकिशन की थी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जो 12% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। सरकार के अनुसार भारत में टीबी इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है और 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस मुहिम से जुड़े हैं। जमीनी स्तर पर जागरूकता के लिए हाल ही में 11 राज्यों में जोश अभियान शुरू किया गया है। झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल आज सुबह रांची पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक कार्य योजनाओं को प्रभावी बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। धनबाद जिले के टुंडी में कल रात पुलिस मुठभेड़ में एक हत्यारोपी घायल हो गया। ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब के अनुसार आरोपी शंकर डे उर्फ पिंकू डे को पुलिस हथियार बरामदगी के लिए मनियाडीह ले गई थी। इसी दौरान आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है।
1: क्रम में द्वारा ये बात बताया गया है, ये दोनों मिलकर बहुत सारा कांड करते हुए लेन देन के चक्कर में आदमी था को इनके द्वारा मार दिया गया। इनके द्वारा ये भी कबूल लिया गया है, तो ये लोगों का बहुत बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये दोनों मिलकर बहुत सारा कांड किए हैं। अभी वेपन रिकवरी में जिनके द्वारा जो फायरिंग है जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा किया।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ के अपने पैतृक गाँव नेमरा में दिवंगत माता रूपी सोरेन के श्राद्ध कर्म में सातवें दिन पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने संताल परंपरा के अनुसार दातुन, पानी और भोजन परोसने की रस्म पूरी की। इस भावुक क्षण में परिवार और ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आज चतुर्थी के पावन अवसर पर राजधानी रांची में कई संतोष कुमार गंगवार जिला स्कूल मैदान स्थित श्री रामलला पूजा समिति के पंडाल का भव्य उद्घाटन करेंगे।
1: रंगारंग कार्यक्रम और भजन संध्या का भी यहाँ आयोजन किया गया है, प्रसाद का आयोजन किया गया है। 9 छोटी बच्चियों द्वारा 9 दुर्गा के रूप से वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे, उनका पूजन भी किया जाएगा।
0: इसके साथ ही बकरी बाजार में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिला स्कूल में स्वरवेद महामंदिर और रांची रेलवे स्टेशन पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की थीम पर सजे आकर्षक पंडालों के द्वार आम जनता के लिए खुल जाएंगे। सुरक्षा और सुगम आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने आज से 23 पार्किंग स्थल और 144 ड्रॉप गेट सक्रिय कर दिए हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर जिले के गांधी मैदान में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनोखा अभियान जारी है। उमा जागृति फाउंडेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय शिविर में बेटियों को सामर्थ्य और शौर्य का पाठ पढ़ाया जा रहा है। असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए यह बेटियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे, तलवारबाजी और लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां सिर्फ डांडिया नहीं खेलती, जरूरत पड़ने पर कृपाण भी उठा सकती हैं।
2: लाठी चाल सीख रहे हैं ताकि हम अपना आत्मरक्षा खुद कर सके, सेल्फ डिफेंस। अभी जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है उसी कारण, और सर ने बताया कि यहाँ पे भी निशुल्क सिखाया जा रहा है तो मैं भी आई। बहुत फायदा होगा, हम कहीं भी अकेले जा सकते हैं आत्मरक्षा के साथ अपना, कहीं डर नहीं लगेगा कि हाँ हम अपना स्वयं रक्षा, सेल्फ डिफेंस।
0: की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी जापान में होने वाले एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज संजना टूर्नामेंट के लिए रवाना हो चुकी हैं। वे SL3 श्रेणी के एकल वर्ग में देश के लिए चुनौती पेश करेंगी। कोच गौरव खन्ना के मार्गदर्शन में अभ्यास करने वाली संजना से देश को पदक की बड़ी उम्मीद है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली तुम्हें और हमारे सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: मैं समझ गई आपका हेल्दी नमस्कार होगा और भी नवरात्रि का त्योहार
1: बिल्कुल
0: बड़ी जोर शोर से पूरे देश में मना रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है व्रत भी करती हैं,
1: बहुत तो, सारे भाई भी करते हैं बहुत, और बच्चे भी करते हैं, युवा को भी बहुत देखा है करते हैं, और ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो है बिल्कुल भी यानी सिर्फ पानी पर रहते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे गरिष्ठ चीजों का सेवन करते हैं, तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं इन दिनों में, उपवास के, और फलहार बनाया जाता है
0: जी।
1: कई सारी जगह पे कई लोग अलग अलग रेसिपी शेयर भी करते हैं अपने, और इसी तारतम्य में हमने सोचा चलिए शकरकंद के आपको अलग अलग व्यंजन बताया जाए।
0: शकरकंद जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, उपवास में खाया जाता है, तो शकरकंद के जो व्यंजन है वो आज हमारे बहुत सारे सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने ऑलरेडी लिख भेजे हैं, वे भी हम शामिल करेंगे। और भी अगर आप कुछ अलग शकरकंद के व्यंजन बनाते हैं तो वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा, नवरात्र के दिन हो और तरह तरह के परिधान हम पहनते हैं, साड़ियों का तो देखो सदा बाहर मौसम रहता है, जब पहनिए तब अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो अलग अलग हम प्रदेशों की साड़ियों को उसकी जानकारियां हम बताना चाहते हैं आपको। तो आज तेलंगाना की पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बहुत सारे संदेश भी आए हैं और ऐसा लग रहा है हमारी सहेलियों को ये वाली साड़ी बहुत पसंद है,
0: और हम पूछ भी लेते हैं ना अपनी सहेलियों से कि उनके पास में ये साड़ी है कि नहीं। बहुत सारे हमारे श्रोता भाइयों से भी पूछते हैं कि आपने अपनी पत्नी जी के लिए पोचमपल्ली साड़ी दिलवाई है, उन्हें गिफ्ट दी है या नहीं,
1: और अगर ना दी होगी ना तो आज की जितनी जानकारियां हैं वो सुनने के बाद जरूर दिलवाइएगा।
0: साथ ही आज जो है एक खास दिन है, विश्व मानक दिवस है
1: जी,
0: उस विषय पर भी हम बात करेंगे। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है दीपा, कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा।
1: बिल्कुल, जो आज का युवा है 26 के बाद घरों में आमतौर पे भारतीय घरों में ये होने लगता है कि भाई शादी करनी है, हम तुम्हारे लिए लड़का देखें या लड़की देखें, इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। वहां फिर देखिए हमारे बच्चों को लगता है अभी नहीं करनी, अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी तो ये वक्त ही नहीं है, अभी हमारी नौकरी प्रॉपर नहीं है, इस तरह की सारी बातें शुरू हो जाती है। कोई स्टार्टअप लेके बैठा है तो कहता है अरे भाई स्टार्टअप लेके हम बैठे हैं, कहां हम ये शादी और इन सब के झमेलों में हमें मत डालिए मम्मी पापा। इस तरह के घर में बातचीत शुरू हो जाती, कहीं तो बहस भी हो जाती है।
0: और पहले ये बातें जो हुआ करती थी ना दीपा, ये सिर्फ लड़के करते थे, पर आजकल लड़कियां भी इस तरह की बातें करने लगी
1: जी।
0: सही बात है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपने करियर को सजाया सवारा है, पर हर चीज का एक वक्त होता है। शादी अगर बहुत एक वक्त होने के बाद में अगर शादी हो तो बहुत सारी आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं।
1: बिल्कुल, तो हम इस बातों पे विचार विमर्श तो करेंगे ही, और चाहते हैं कि आप सब भी, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत आपके सुबह में घर में
0: जी,
1: तो आप जरूर शेयर कीजिए।
0: और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखे हैं, और वे जैसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो अपने विचार लिखिए कि इस बारे में आपके विचार क्या है।
1: घर में कोई ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, या कुछ चल रही है इन दिनों, या आप अपने बच्चे को या पोता पोती को किसी को समझा रहे हैं और वो ना मान रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जरूर बताइएगा।
0: और एक खास और एक और सेगमेंट है, ये है कि शब्द हमारा विचार आपके
1: जी,
0: इसके अंतर्गत आज का शब्द चुना है प्रार्थना, जिसको तो सुनते ही सुकून हमें महसूस होता है।
1: तो चलो शब्द बात की है प्रार्थना की, तो एक प्रार्थना ही सुने
0: जी, सुनते हैं।

0: तो दीपा, अंबे माँ को हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के जीवन में खुशहाली हो और बस आनंद के साथ हम जिंदगी गुजारें।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, भक्तिपूर्ण माहौल हो गया है, प्रार्थना भी हमने कर ली है और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, और जिंदगी भर करते ही रहना चाहिए। हम जिस चीज को मानते हैं, जिस भी बात पे आस्था है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। और देखिए, बहुत सारे हम विशेष दिनों की बातें करते हैं, तो आज है विश्व मानक दिवस, जो हर साल आज ही के दिन यानी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को समझाने के लिए और उन विशेषज्ञों को उन्हें योगदान उनके योगदान का सम्मान उन्हें हो सके, उनको समर्पित किया जाता है ये दिन। तो जो वस्तुएं होती है ना, सेवाओं और तकनीकी प्रणालियों के लिए एक मानक तैयार करते हैं। मानक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन अनेक ऐसी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं सोनाली, जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकों की अहम भूमिका होती है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही दीपा। और चाहे मोबाइल फोन हो, बिजली के उपकरण हो, खाद्य पदार्थ हो या दवाइयाँ हो, हर क्षेत्र में मानकों का विशेष महत्व है। और विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे चलकर इसी प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी आईएसओ की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1970 में आईएसओ के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त फेरुख सुंटर, इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: और इस वर्ष की जो थीम है ना दीपा, 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इस वर्ष का संदेश है।
1: बिल्कुल।
0: प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में अंतर्राष्ट्रीय मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मानक क्या होते हैं? मानक यानी किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की गुणवत्ता, सुरक्षा, आकार, माप और कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियम या दिशा निर्देश है। अब उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, बिजली के उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के नियम और मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के बीच तालमेल, वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से इमारत और जो पुल होती है उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं। तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। तो आईएसओ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये संगठन अलग अलग उद्योग या सेवाएं या प्रक्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी आईईसी, ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का, ये इसका फुल फॉर्म है। ये दूर

0: खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण चुनना, उत्पादों पर ISI चिन्ह और अन्य लागू प्रमाणन चिन्हों की जांच करना, वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण पढ़ना। हर उत्पाद पर एक चिन्ह लागू नहीं होता, हर उत्पाद पर हर चिन्ह लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं, इसलिए खरीदारी करते समय संबंधित उत्पाद के लिए लागू मानक और प्रमाणन देखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो हमें लगता है अब सखियां हमारी सच में इस बात, इस जो जानकारी है इससे और सचेत हो जाएंगी और हमेशा मानक की महत्व
0: चिन्ह देखकर ही
1: खरीदारी करेंगे।
0: अब जैसे कोई सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें भी मानक हमें देखना है, चिन्ह देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कोई भी चीजें हैं तो उसे उसका चिन्ह देखकर ही हमें खरीदारी करना चाहिए।
1: फिलहाल अभी क्या करना चाहिए,
0: गीत सुनना चाहिए?
1: चलिए।

0: सपनों का रंग देखो कभी कभी परिधानों पे भी आ जाता है।
1: और कभी कभी डर भी दे डरा भी देता है।
0: कैसे?
1: जैसे हमेशा एक ही सपना आता है कि हम परीक्षा में लिखने बैठे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं और रेगिस्तान में हमारे पैर ही नहीं उठ रहे हैं।
0: ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई साड़ी खरीदने की इच्छा होती है ना, तो आप देखिएगा कितनी सारी, हमारी सखियां इस बात से सहमत भी होंगी, वो सपने में आने लग जाती है
1: हाँ
0: ना।
1: आपकी आती है?
0: आती है
1: हाँ
0: बिल्कुल, सच में ऐसी इच्छा है कि कभी हम जाएं ऐसी बर्फीली पहाड़ियों पे, हम भी कोई ऐसे शिफॉन की साड़ी लहरा करके एक बढ़िया सा कुछ वीडियो बनवाएं।
1: यानी जैसे फिल्मों की हीरोइनें।
0: हाँ, जैसे फिल्मों की हीरोइनें करती हैं, हीरोइंस करती है भाई, अभिनेत्री, हर हर महिला अपने जीवन की अभिनेत्री तो होती है ना, और
1: बिल्कुल।
0: साड़ी उनका वही खूबसूरत परिधान है। और ये सिर्फ परिधान नहीं है, हमारे देश की कला संस्कृति और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए एक खूबसूरत विरासत है। देश के अलग अलग हिस्सों की साड़ियों की अपनी अलग पहचान होती है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: इन्हीं में से एक जो हम आज बात कर रहे हैं ना, पोचमपल्ली इक्कत, जिसे अपने जिसमें उसमें बड़े अट्रैक्टिव ये होते हैं
1: डिजाइन।
0: डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, हिंदी में अपन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, और उसकी अनोखी बुनाई होती है जो कि दुनिया भर में जानी जाती है।
1: और पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इक्कत की कला को संजोते आए हैं और पोचमपल्ली इक्कत को भारत की पारंपरिक हाथकरघा कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी
0: मिला
1: हुआ है,
0: हुआ
1: जीआई
0: है,
1: टैग है,
0: जी
1: ये
0: आई
1: भी हमने
0: टैग
1: मानक
0: मिला।
1: की जो बात की
0: हाँ,
1: ना,
0: मानक की बात की है
1: तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है।
0: जी।
1: जी।
0: अब इस साड़ी में ऐसा क्या खास है? तो असल में इक्कत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगाई और बुनाई की तकनीक है। सामान्य साड़ी में अक्सर कपड़ा बुनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इक्कत में धागों को बुनने से पहले एक खास तरीके से बांधकर उनमें रंग भरा जाता है। यानी डिजाइन कपड़े पर बाद में नहीं, बल्कि जब बुनाई होती है ना, तो धागे में पहले से ही तैयार किया जाता है।
1: और इस प्रक्रिया को समझना भी बहुत दिलचस्प है। ताने या बाने के धागों के जिन हिस्सों को किसी खास रंग से बचाना होता है उसे कसकर बांध दिया जाता है, फिर धागों को रंगा जाता है। बांधे गए हिस्सों पर रंग नहीं चढ़ता, इसके बाद अलग अलग हिस्सों को खोलकर दूसरे रंगों में रंगा जाता है और अंत में इन्हीं रंगे हुए धागों को करघे पर बुनकर मनमोहक पैटर्न तैयार किया जाता है। इसी वजह से इक्कत के डिजाइनों में हल्का सा धुंधलापन या धागों के मिलने का प्रभाव दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती और पहचान दोनों है।
0: बिल्कुल। अब हमारी जिन सखियों ने ये साड़ी खरीदी होगी या जिन्हें पसंद है, तो वो जानती है कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे हीरे वाला जो पैटर्न है ना, हीरे का आकार या चौकर, डायमंड शेप या चौकर पैटर्न होंगे, धारियां मिलेंगी या फिर पारंपरिक मोटिफ दिखाई देते हैं। कलर की बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला, ऐसे सारे चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इनमें। और आज के समय में बुनकर पारंपरिक रंगों के साथ कुछ पेस्टल और आधुनिक रंग, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, वैसी साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं।
1: और पोचमपल्ली इक्कत की परंपरा का इतिहास कई पीढ़ियों पुराना है। यहाँ के बुनकरों ने इस कला को अपने परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कभी ये कला मुख्य रूप से स्थानीय और पारंपरिक जरूरतों से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ पोचमपल्ली इक्कत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज साड़ी के अलावा इक्कत से दुपट्टे, कुर्ते, स्टोल, शर्ट और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
0: अब भाई बात होगी कि चलिए, आपकी इतनी सारी जानकारी से अब हमारी तो इच्छा जागृत हो गई कि हमें साड़ी खरीदनी है।
1: और इसमें शर्ट का जिक्र किया है, तो हमारे पुरुष जो भाई हैं
0: वो भी खरीद
1: सकते हैं, इक्कत का शर्ट।
0: अब वो जानेंगे भाई मैं शर्ट लूं, उससे पहले मुझे घर में जो महिलाएं उनको दिलाना पड़ेगा, तो कीमत क्या है इन साड़ियों की? तो कीमत जो है उसके कपड़े, धागे, डिजाइन, बुनाई की जो जटिलता है, या हस्तकरघा का काम या पावरलूम पर बन रही है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अब अगर आप मिक्स्ड फैब्रिक का, मिक्स्ड कपड़े का लेते हैं ना इक्कत की साड़ियां, तो 1500 से 2000 या 2500 तक की भी मिल सकती है शुरुआती उसके जो रेट हैं। और आप बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन की लेते हैं या सिल्क कॉटन साड़ियां, तो लगभग 3000 से 7000 के बीच में ये मिल जाती हैं। और वहीं शुद्ध रेशम से की, हाथ से बनी हुई जटिल डिजाइन वाली और एकदम प्रीमियम

0: कोचमपल्ली इक्कत साड़ियों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 10,000 से 25,000 तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उसमें जितनी ये है कि कितना बारीक काम है उस पर निर्भर करता है इसका रेट, और हाँ फैब्रिक पर भी कि किस तरह का आपने कपड़ा चुना है
1: जी। और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचमपल्ली इक्का साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंग और डिजाइन पर नजर मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएं, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
0: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है?
1: गीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनाली, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम नहीं सुनेंगे पोचमपल्ली की जानकारी क्योंकि बजट हमारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हर रेंज की साड़ियों के बारे में आपको बताया। आप अगर चाहिए तो मिक्स्ड फैब्रिक, जिसमें कि
3: कॉटन भी ले सकते हैं।
2: कॉटन में भी इकत की जो वीविंग वाली साड़ी आती है, और अगर आप वीविंग वाली भी नहीं लेना चाहें तो प्रिंट वाली भी आती है। तो आप एक बार अपने मर्जी से बिना उनसे पूछे, घर में बगैर पूछे लेके तो जाइए और ये तोहफा देके बताइए, और उसके बाद यहाँ आकर के बताइएगा इसी मंच पर कि वो उनका चेहरा खुशी से देखिए, खूबसूरती उनकी बढ़ी या नहीं।
3: बिल्कुल। और महिलाएं जो है ना दीपा, वो तो अपनी जो है ना परिवार की सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। तो घर की महिलाएं अगर खुश हो जाए, फिर भला ही वो साड़ी के माध्यम से हो या छोटे के तोहफे से माध्यम से हो, तो कितनी बड़ी बात होगी।
2: सच में छोटी छोटी बात है, और कोई साड़ी लेना भी जरूरी नहीं है, आप छोटी सी चीज भी लेकर जाएंगे ना। बस यूं ही जाते हुए घर, दफ्तर से घर आते हुए अगर आप एक गुलाब का फूल भी लेके जाते हैं, वो फूल देख कर भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे मुझे याद किया, क्या बात है।
3: या उनकी पसंद की कोई चीज है ना, भले ही वो छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: सहेली।
1: इतने सारे संदेश आए हैं ना कि वो ब्रेक खत्म होने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमारी एक सखी ने लिखा कि कुछ महीने पहले मेरे भतीजी की शादी के एक कार्यक्रम में मैंने पोचमपल्ली साड़ी खरीदी थी और अच्छा उनका अनुभव रहा, ऐसा वो कहती हैं। तो सच में अलग अलग हथकरघा या आप अलग अलग प्रदेशों की साड़ियां जब आप पहनते हैं, अलग अलग हमारे अनुभव होते हैं। और सच में बहुत जो आपस में जो ये जो कहते हैं ना महिलाओं वाली बातें, उसमें साड़ियों का जिक्र तो निकलता ही
0: वैसे प्रार्थना की बात चली है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे स्कूल में शुरुआत में सभी स्टूडेंट और टीचर प्रिंसिपल एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थना आज भी याद है। कुछ खास बात प्रिंसिपल को कहनी होती तो उसी समय कहते थे। प्रार्थना का असर क्या होता था पता नहीं, पर मन बहुत शांत हो जाता था। मैं रोज सुबह नहाने के बाद 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। उस समय जो भी भगवान से जो कहना होता है वो कह लेती हूँ। आखिरकार उस परम पिता की कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है। प्रार्थना से शांति तो मिलती ही है।
1: बिल्कुल
0: बहुत सही
1: सही
0: बात
1: कहा,
0: जी।
1: बिल्कुल सही। और इसी तरह से विचार हमारे एक श्रोता के कहते हैं, हमारे विचार से प्रार्थना करने से हमारे मन मस्तिष्क और जीवन पर कई सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। ये तभी संभव है जब सच्चे दिल से प्रार्थना की गई हो। नियमित प्रार्थना करने से अहंकार दूर होता है, स्वभाव विनम्र बनता है, जिससे आंतरिक बल और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन से जुड़ी समस्याओं और उलझनों का समाधान मिलता है। आगे कहते हैं, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब है मानव तू प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना केवल कुछ शब्दों को दोहराना या हाथ जोड़कर घुटने टेकना नहीं है, बल्कि आत्मा की वे गहरी पुकार है जो सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब हम कहते हैं शब्द हमारा विचार आपके, तो इसका अर्थ है कि यह शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन उनके पीछे की भावना, गहराई और चिंतन पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में एक ऐसा सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। क्या
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही,
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा। और संदेश अगला कहता है कि पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्वसुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना हृदय का गीत है। चाहे आप शब्दों का प्रयोग करें या मौन रहकर केवल अपने मन के भावों को अर्पित करें, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भूलकर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, के भीतर क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सुंदर, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का सबसे सरल माध्यम है। यह हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जगाने और ईश्वर के साथ एक अटूट व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का जरिया है। शब्द चाहे कोई भी हो, यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध हैं तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार्य है। कितनी सुंदर बात, कितने
1: बहुत
0: सुंदर विचार लिखे हैं हमारे
1: बिल्कुल
0: सभी।
1: सही कहा सोनाली। हमारे एक श्रोता ने कुछ फिल्मों में दिखाए गए प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारे फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। आगे लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना करवाया जाते थे, पहले हमारे समय में, और एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या मानी गई है सुबह की प्रार्थना। बच्चों के मन को शांत करती है और दिन भर की पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित रखती है। और आगे कहते हैं कि कतार में खड़े होकर साथ में प्रार्थना करने से बच्चों में अनुशासन, नियम और की पाबंदी की जो कि ये जो आदत है ये विकसित होती है।
0: एक साथी कहते हैं, पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
1: एक और कहते हैं कि प्रार्थना शब्द सुनते ही वो स्कूल की सुबह की प्रार्थना याद आ जाती। छोटा सा ढोलक और एक खंजरी बजाकर तीन लड़कियां सामने बैठकर गाती थी और उनके पीछे सब गाते थे। हर दिन एक नई प्रार्थना गाई जाती थी, हमें बड़ा मजा आता था।
0: एक कहते हैं, प्रार्थना दुखी मन को न केवल शांति प्रदान करता है अपितु हृदय में धैर्य भी भरता है, और इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हुए जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
1: एक अगला संदेश ये कह रहा है कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि जो मिला है उसका धन्यवाद करने के लिए भी होना चाहिए। किसी असहाय की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना जैसे काम भी प्रार्थना के ही रूप हैं।
0: एक साथी कहते हैं, हम सभी लगभग प्रार्थना करते ही हैं, परंतु अगर हम संसार के रचयिता से सच्चे मन से भगवान से जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना स्वीकार न हो। जरूरी होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सुख और दुख दोनों में प्रार्थना कर जगत के पालनहारी से प्रार्थना करें। और अब
1: गीत सुनते हैं।

0: प्रार्थना से देखिए, सच में कहा ना, सभी हमारी जैसे सखियां बता रही थी कि मन में एक सुकून आ जाता है और शांति आ जाती है ना। और सबके लिए ऐसा लगता है एक शुभ कामनाएं निकलती हैं दिल से कि इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी हैं उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना।
1: और जो माताएं होती, जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि भाई जल्दी से हमारे
0: बिल्कुल
1: घर में
0: हमारे
1: बहू रानी आ जाए या फिर हमारे घर में दामाद आ जाए। वे हमेशा हाथ जोड़ के कहती कि भाई हमारे बच्चों को अब इस तरह की इच्छा जागृत हो कि वे जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे।
0: बिल्कुल। लेकिन आज के जो बदलते सामाजिक परिवेश है ना सोनाली, उसमें जो युवा है, यूथ है जो है, उनकी सोच, जीवन शैली और उनकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत बदल गई हैं आजकल। एक समय था जब विवाह को जीवन का एक स्वाभाविक हम पड़ाव मानते थे कि हाँ अब इस एज के बाद तो ये शादी होनी है, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना, विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी।
1: जी
0: लेकिन आज जो युवा है वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं।
1: इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपा, कि जैसे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना अच्छा सजाया संवारा है, और अगर हम शादी के बाद में उसमें बाधा आ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा, तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपके क्या विचार है, आपको ऐसा लगता है क्या पुराने जमाने में भी करियर भी हुआ करते थे, शादियां भी हुआ करती,
0: बिल्कुल।
1: तब हमारे मन में विचार नहीं आता था, पर आजकल के युवाओं के मन में ये विचार क्यों आने लग गया है?
0: आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हम भी यहाँ पर से अपनी तरफ से इस बातों को, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये समझना आवश्यक है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं है।

0: कारण यह है कि माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े भी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर वे भी इसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहेंगे। हालांकि हर विवाह का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। स्वस्थ संवाद, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल। और अपने आसपास शादियों का जो टूटना देखते हैं ना, पारिवारिक विवाद भी देखते हैं, घरेलू तनाव और रिश्तों में कड़वाहट देखने वाले युवाओं के मन में भी एक विवाह को लेकर ना थोड़ी एक डाउट डर आ जाती है, डाउट सा बनने लग जाता है। वे सोचते हैं कि यदि विवाह के बाद जीवन में शांति के बजाय अगर ये तनाव इस तरह मिलना है तो ऐसा रिश्ता बनाने का क्या लाभ है।
0: अब देखिए, दोस्ती के बीच में भी जब हम दोस्ती बनाते हैं ना किसी से, तब भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
1: ये बात
0: कि
1: तो सही
0: हमारी
1: है।
0: हाथों की पांचों उंगलियां एक समान
1: वो
0: नहीं
1: भी
0: होता,
1: एक समान
0: तो हर इंसान कैसे एक समान।
1: अरे भाई, घर में भाई बहन जो होते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे, वो भी तो सब अलग अलग तरह से होते हैं।
0: तो हमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। और देखो, एडजस्ट करने की जो यहाँ पे बात कर रहे हो ना सोनाली, हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ा कम समझाते हैं कि थोड़ा सा आप संभल के चलिए, या थोड़ा सा आपस में एक कोई अगर एक या हम कोई एक दो में से कोई एक में अगर हमने ही पहले थोड़ा सा झुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं हमारा क्या वो हमारा अहंकार है जो आड़े आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं भी तो इतनी पढ़ी लिखी हूं या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं क्यों झुकूं। ये बात, ये अहम की भावना कहीं पहले आके दीवार बना देती है
0: और रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। भाई, हमारे साथियों ने भी लिखी है कुछ बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा बड़ा रोचक मुद्दा है। नई शादी होने के बाद युवक और युवती अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। युवक त्योहार उत्सव में जाना बड़ा आनंद लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ना, फिर काम पर जाना, अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जंजाल में युवा फंसे होते हैं। हमारी माँ तो कहती है प्रभु ही शादी कराएगा, असल में प्रभु ही इनकी शादी करवाएगा, ऐसी उन्हें चिंता लगी रहती है।
1: एक संदेश ये भी कह रहा है कि भाई, जहां तक वैवाहिक जवाबदारी से बचने की बात है, जवाब कम है, दुनियादारी ज्यादा है। आजकल के युवा 21वीं सदी के हैं जो कह रहे हैं हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुकार कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, वो मंजिल है नौकरी या कोई बिजनेस, फिर बाद में बाद में कहते हैं बाद में छोकरी, मतलब ये गुजराती में शायद उन्होंने लिखा है कि भाई वो कहते हैं कि सब सेटल हो जाए हम उसके बाद ही विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता के बीच भी लगातार होने वाले झगड़ों में भी बच्चों का मन, ये अगर घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि माता पिता के बीच में बहसबाजियां अगर बच्चों ने देख रखी है तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर वो बड़े होकर उसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहते हैं। हालांकि अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर विवाह का अनुभव एक जैसा होता भी नहीं है। स्वस्थ संवाद होते हैं, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बना सकती है। अब ये भी बात है सोनाली कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है ना, इसके साथ हम इमोशनल तरीके से भी जुड़ते हैं, फिर घर की व्यवस्था भी देखनी होती है, आर्थिक योजना क्या है, या परिवार के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य से जुड़े निर्णय भी आ जाते हैं।
0: और अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुना जाए,
0: सुनते हैं गीत।

0: सुना ली। बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है। और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और खबरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं। बच्चों की शादियों की बातों से वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों तक साथ रहने के बाद भी वैवाहिक जीवन का जो सुनहरा रंग है वो बदलता जा रहा है। यहाँ पर दबाव की ही नहीं, यहाँ बातचीत करके किसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है उसे बदला जाए या उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो अच्छे लोग और अच्छे विचारों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ये तय नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है, आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में ना बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं। शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं, फिर वो एक उम्र के बाद में ना जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं। और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आजादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देखकर युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ, आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में, तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
1: अब ये जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शकरकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबालें, स्टीम कर लें, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट लें। अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत
0: सुन सकते हैं।

0: हम तो ये कहेंगे अपने हमारे श्रोताओं से कि जिन परिवार में बच्चे नहीं सुन रहे उन्हें ये गीत सुनाइए, जहाँ पे उन्हें बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी। इसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
4: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है, इसके पहले मैंने फौजी 2 मतलब फॉलोअप सीजन ऑफ फौजी 1 जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था उसका एक फॉलोअप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा।
3: द गर्ल ऑन द हाईवे
4: वो हमारे अपना हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें। okay. वो अपनी आईपी अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं। बहुत से मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट्स थी, 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल मीडिया वायरल कंटेंट से थिएट्रिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था। हाँ। कि ऐसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें, उसको सब देखें, जिसके बारे में कोई नेगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी जो मुझे बहुत समय से जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें, जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे तो बच्चे, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, मौसा फूफा, जो भी आप पॉसिबल है, दोस्त मित्र, आपको हर व्यक्ति के लिए हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी कितना भी अच्छा आप कर लो लेकिन आपको निगेटिव करने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं।
3: बिल्कुल।
4: आप समझिए, सोचिए, आपके 9.7 की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो, 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पर, आप निगेटिव ढूंढते रह जाएंगे आपको मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रह जाएंगे आपको निगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा निगेटिव,
3: बिल्कुल नहीं।
4: तो ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है, चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटागनाइज नहीं किया, क्योंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जिसको मैंने केटर नहीं किया। अगर वो पति पत्नी के बीच में वो है तो सबको एड्रेस किया है समाज समस्याओं को। तो मैं इस फिल्म को बोलता हूं, जब मैं फिल्म को पोजीशन कर रहा था तो मैं बोलता हूं इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोलूं, एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूं समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूं, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ,
3: मानवीयता है,
4: मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ, कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और somebody who's a filmmaker और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई, आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में, बट किसी भी समय पर फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे, आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो एक
3: बांध के
4: रखे और आपको मजा भी आता रहे।
3: तो यहाँ एक गाना सुनते हैं
4: जी।
3: बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
4: मुझे लगता है कि एमेरी जोरा जबी, वो सुनाइए,
3: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हैं हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले ऑफेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स ऑफेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म में के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हम, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पर भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे, क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, पांचवा नहीं होगा, और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर पांचवा कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सेलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो मैं पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया, लगभग 9 चैप्टर्स थे उनको बांट दिया, और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जब आप उनको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगहें, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए, तो ऐसे करके मैंने पीरियड एप्रोप्रिएट किया। और तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना
1: कैसे? बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से, मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो हो गया, ये किताब पढ़ लेना, भले मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ, और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो, अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मैं जो फॉलो करते आया, बिकॉज ऑफ मदर, आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर प्रिंसिपल्स, कि किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडली जागरण हुआ होगा, कुंडली जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सांसा हाले हंसा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे, एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं, कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरा ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है, तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी के वजह से बहुत मिली, प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ, मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले आसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंप्लीफाइड और इतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड येट सिंप्लीफाइड, सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड, यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल, इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप

0: हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए। अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे हैं कि
1: तो
0: डांट पड़ी हो वो भी
1: बहुत
0: बताइए।
1: मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था। मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीज़ों में। कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है,
0: जी
1: तो मार तो मैं खाता था
0: हाँ
1: लेकिन भाई की वजह से खाता था। और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो
0: हाँ
1: पाइप होता था जिससे बेलन पाइप चिमचा, तो वो कह रही, तो आप सब देखते हो लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें
0: हाँ
1: पानी भरते हैं,
0: हाँ
1: वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो। तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो। मुझे
0: अच्छा
1: मुझे याद नहीं कौन कि, मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया
0: ओहो,
1: है।
0: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या
1: कौन,
0: रहती थी?
1: शी विल जस्ट गेट फ्यूरियस एंड देन शी विल बीट एंड देन नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज यू अब ये तो जॉब है ये तो
0: कि मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मार पड़ती थी,
1: मैं
0: कहीं ना कहीं
1: एक्चुअली
0: उसमें
1: कोई कोई सच वो नहीं थी। इंफॉर्मेशन कैसी कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट। एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहाँ पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं, आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर। किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी एरोगेंट हैं, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूं मैं इस बारे में। तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया। तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है,
0: जी
1: पूरे सिक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे। वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको, वो जब रोने लगता है, जब वो कहते हैं कि यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी साधु संत को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज ये मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं। दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स। तो इंटरप्रिटेशन है, अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने, तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता। हो सकता कोई भी ना मुझे क्वेश्चन करता,
0: बिल्कुल
1: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए वो फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया। दैट वर्क फॉर पीपल। किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग, वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया।
0: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है, तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए। माँ
1: जी
0: पिता के नाम कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
1: माँ के नाम पे, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे।

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं एमबीबीएस कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ? मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी, मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था. मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई, और आया क्यों मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोइट्रीज लिखने शुरू कर दी मैंने. तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई. अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं. कुछ सालों मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियाँ भी की मुंबई में, और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है. मैं इस दुनिया में जाता हूँ फिर इस दुनिया में आता हूँ. और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था. पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहा हो. लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे पेट में गैस बन गया. तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं. और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पर चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से. तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया, सागर में नैया डाल दी, उनको मजदार में नहीं छोड़ा मैंने. तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा, और सेम समय मैंने म्यूजिक भी छोड़ा था. म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने. मैंने एक फिल्म साइन की थी, और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके. तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सिलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है. फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूं नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूं. मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूं, गाने बनाता हूं, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं इस बात को क्वेश्चन करने लगा. और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था. तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूं. 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूंगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है. तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में अनदर स्क्रिप्ट, फिर साल में, फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं. तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 कॉन्सेप्ट 54 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूं या करना चाहता हूं भविष्य में.
0: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
1: में. नहीं ऐसा नहीं, डिजिटल माध्यम से, अगर डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है.
0: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं.

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए।
1: तो मेडिकल कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना। अच्छा। मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बंबई है
0: जी।
1: तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बंबई चले गए, हमने 15 दिन का बंक मार दिया। अब उसमें मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी एमबीबीएस ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे। उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीजें थी। हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बंबई आए कि वहाँ पे जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करके 15-17 दिन मैंने वहाँ पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहाँ पे बंक मारना अच्छा है, तो वहाँ पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत बहुत दिल अजीज टीचर हैं वो, रामजी पवार उनका नाम है, डॉक्टर रामजी पवार, एनाटॉमी पढ़ाते थे वो। ऐसा टॉल, डार्क, हैंडसम, 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे।
0: अच्छा।
1: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, मुंबई से आया लंबे बाल के साथ में। और गलती से मैं जो है ना, आगे वाली सीट पे बैठ गया।
0: अच्छा।
1: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल, क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया। और वो पता नहीं, वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7-10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया। तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसके बोलते हैं, हाँ, जो अनबीड़ा की, और क्या ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समाउ। मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि देयर इज दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में, और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं।
0: जी, यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई, बैंड का जिक्र किया आपने लखनऊ में, कौन सा बैंड था, म्यूजिक बैंड?
1: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में चले गए, वहाँ म्यूजिक टीचर हैं, और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना, वी हैड अ बैंड, तो वहाँ पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के। सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो, बट देन मूव टू गोरखपुर। गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन 3 दिन में अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है, जैसे बोलते ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ। तो वो 5-6 साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था। लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार, इन बिटवीन 2017 एंड 2020,

0: आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट. तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया.
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ
0: आई कैन
1: लाइनें,
0: सिंग,
1: कुछ याद है
0: आई
1: तो
0: कैन
1: गा
0: सिंग,
1: भी
0: आई
1: सकते
0: कैन
1: हैं
0: सिंग अ सॉन्ग. या आई
1: जी.
0: कैन सिंग कपल ऑफ लाइंस. एक हवा का हूं झोंका, उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी, कौन जाने यहां.
1: क्या बात है.
0: दिस वॉज वन सॉन्ग.
1: बहुत बढ़िया.
0: उसकी उसकी एक एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें. वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्माया था उसको.
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना,
0: जी
1: और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे
0: जी
1: हैं, तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में, वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि ये लगभग मेरी उस समय की कविता है. अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड
1: जी.
0: जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना, कि ये जीवन है किस लिए,
1: जी.
0: क्यों जी रहे हैं, जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ.
1: क्या बात है.
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ. मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ, जमी से हूँ उत्पन्न मैं, जमी में जाके घुल गया,
1: क्या बात है. वाह.
0: जमी से हूँ उत्पन्न मैं, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया.
1: वाह वाह वाह.
0: ईश्वर माँ है. और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूं धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया.
1: क्या बात है. वाह. तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं, और तो अब यहाँ
0: जी
1: पर एक गाना सुनवाते हैं. बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गाना आप सुनाइए, रहमान साहब का वंदे मातरम. दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स.
1: सुनते हैं यही
0: जी
1: गाना.

0: अब गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं किसी उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो
0: जी
1: तीन
0: जी
1: थ्री
0: बिल्कुल
1: स्ट्रक्चर होते
0: बिल्कुल
1: हैं, तीन स्ट्रक्चर भी
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते हैं
1: नहीं
0: आप?
1: ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे
0: हाँ
1: नहीं।
0: ठीक है सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना कौन
1: चाय को
0: करता है भाई?
1: मना कौन करता है भाई, कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है, वाह
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय,
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है हाय, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती,
0: क्या बात
1: कड़क रसीली नशीली चाय, होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह
0: मुंह
1: जबानी
0: जुबानी
1: के
0: कहते हैं।
1: जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलिन की एंट्री,
0: कड़वी है कॉफी
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: क्या बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह वाह वाह
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलेन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है
0: क्या बात है,
1: भाई,
0: वाह
1: कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
0: क्या बात है, वाह
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद।
0: वाह वाह
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है हाय, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह
1: से मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क
0: क्या बात है,
1: रसीली।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत में।
1: जी
0: विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान
1: जी
0: अंश
1: जी
0: की ओर।
1: जी
0: इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा,
1: जी
0: तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का? एक बच्चा है, फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य
1: स्वप्न
0: शोभिना
1: सत्य।
0: शोभिना सत्य, कहाँ से मिलेगी?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूं। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
0: जी,
1: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए, तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखराम के लिए चूज किया था, और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे,
0: जी
1: वो जब उनका नहीं ही हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले पोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे वो तो नासिर अली पोज किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों, आई हैड एन आइडिया कि ये
0: जी जी
1: होगा, और मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने, तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके सब
0: जी
1: सबका ऐसा हो
0: जी
1: गया।
0: जी
1: देन जो बच्चा है विहान शेडगे, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक ऐड किया था पिछले साल, उसके पहले साल, और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों ने, दोनों मराठी हैं, और वो मैंने
0: यहाँ
1: मरा, हाँ
0: नेहा पराजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी,
1: रही हैं, अच्छा
0: रही
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: वो अभी भी
1: तो
0: कैजुअल आकाशवाणी में
1: आकर्षण
0: होती हैं।
1: करती हैं।
0: जी जी
1: तो
0: अभी
1: नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी ऐड किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ ऐड, वो मैंने, मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो महाराष्ट्र मराठी ऐड था, और वो इतना पॉपुलर हुआ, ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी, और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी श्रीमती राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो हैं, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जैसे दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद लेट आया था वो। सो आई वॉज एंग्री एट हिम, कह रहे यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया लेकिन भूल गया, मैं तो बोला रही महाराज जी, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहाँ पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है मेरी, अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
0: अच्छा,
1: मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मेरी माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं, हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है, मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूं। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है, मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जो उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है,
0: हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
1: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा, आप कैसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन का एज है, इस एज में इंफॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी के बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इंफॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है, तो गलत है सही है वो एक वो बात की बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के दुनिया में आप इंफॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक एक, एक नई राह पे उनको एक नए नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे, तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूँ, किसी तरह कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं यही मेरे खर्चे हैं, इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना ये दूसरे खर्चे हैं जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है, या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह, उसमें बहुत मुझे मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके, तो ये मेरे शौक है, जिस वजह से मैंने काफी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूं, तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो सही रास्ते नहीं है, तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और मैं बहुत जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूं उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूं या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है ये डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया है, फिल्म ही बन रही है अपनी।
0: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह
1: जी,
0: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं
1: जी,
0: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
1: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूंगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर फिल्म फेयर चले गए, तो उनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से और मैं भी इनका सलाहकार हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ सलाह लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर हूं इनका
0: जी,
1: तो इनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मैं मेरा इसको हॉस्पिटल

0: बना के उसमें इलाज भी कराते थे,
1: जी
0: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम ऐसा किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य
1: जी
0: में। लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज हैं वो ये हैं, बहुत सारा बहुत सीखता हूँ उससे कि कैसे हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है। और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे हैं, हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में।
1: जी
0: मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको। मैं
1: जी
0: बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूँ, मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे लिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नॉट बॉलीवुड। तो वो हमारा
1: वो इलाहाबाद के, आप लखनऊ के,
0: जी
1: ये भी एक रिश्ता है तो,
0: मिले
1: और
0: तो ही
1: मुझे,
0: मुंबई में थे, मेरे पेशेंट
1: हाँ
0: थे जब मैं क्लिनिक
1: अच्छा
0: चलाता था, तो ये एक दिन एक मित्र
1: जी,
0: मनीष
1: अभी तो आपके
0: वो
1: बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मुरीद हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, एक लंबी तादाद। अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई
0: धन्यवाद
1: के पात्र हैं, आप बहुत
0: धन्यवाद,
1: सारी
0: बहुत बहुत
1: बधाइयाँ।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: यहाँ हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहाँ उन शहरों को क्या चीज़ मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है
1: जी
0: उसी पेस पे चल रहा है, प्रॉब्लली जैसे मेरा अंतरंग, मेरा मन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, यहाँ पे शरीर और वो सब पीछे रहता है और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोप अप करने के लिए कॉफियां चाय दुनिया भर के उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो है ना उसके साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहाँ लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है,
1: जी बिल्कुल, बहुत
0: ऐसा
1: अनुशासित,
0: अनुशासित है,
1: डिसिप्लिन।
0: लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर,
1: जी
0: जो वहां पे आपको टेंशन होती है वहां पे उलझन होती है,
1: जी
0: जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो
1: जी
0: मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो वे लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की
1: अब
0: शाम, अवध की शाम।
1: अवध की शाम।
0: जी
1: जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, अब
0: जी
1: मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, कैची धाम जहाँ पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियाँ तो किस तरह से आपको मोहित करती रहीं, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
0: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, वो सब चित्रकूट है,
1: ओहो,
0: और
1: चित्रकूट,
0: चित्रकूट है,
1: ओहो,
0: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने वीएफएक्स पे क्रिएट किया है,
1: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश
0: उत्तर
1: चित्रकूट,
0: प्रदेश का चित्रकूट जो है ना
1: वाह क्या बात है, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम
0: कैची
1: है,
0: धाम
1: क्योंकि
0: है,
1: आपने कई बार
0: धाम
1: अपने
0: भी दिखाया है,
1: इंटरव्यू
0: जो भी
1: जिक्र
0: आपने
1: भी
0: कहा है,
1: किया
0: वो अगमर्षण
1: तो
0: कुंड है जहां पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था,
1: हाँ
0: वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहां पे तेंदुए और
1: जी जी
0: दुनिया भर
1: बिल्कुल
0: के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहां पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहां पे,
1: घने जंगल है
0: घने
1: उस
0: जंगल हैं, तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में धारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट करना। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए, तो फिल्म मेकिंग जो है ना वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना, रियल लोकेशन है वो लेकिन किसी और जगह की है, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती है भावनात्मक आप लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां
1: जी
0: का,
1: जी
0: वो आप कर लेते हो इस तरह से, हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही, और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें उन्होंने बनाई बन नहीं पाती।
1: बिल्कुल। अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता हैं, युवा श्रोता, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
0: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हज़ार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी उसी ने, विरक्ति उसको हो जाती है, वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीजें जो नीम करोली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो, ये तीन चीजें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है, वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और यही तो इसलिए नीम करोली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेंजी और जैन अल्फा को सबसे ज्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
0: जी। अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठोर है बाबा, के आहवा के जावा,
1: क्या बात,
0: के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो बोले शंकर।
1: जी जी। विशाल जी, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें, यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, मैं 1960s में कहीं बैठा हूँ, सब फीलिंग आ रही है।
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा,
2: हाँ जी वादा।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद

0: ಬನ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೇಂಜರ್ ಔರ್ ಫಿರ್ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಹಲೆ ಬನ್ನಿ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಕಿ ಪೇಂಟರ್ ಬಾಬು ವಾರಿಸ್ ಔರ್ ಫಿರ್ ಸಂಗೀತಕಾರ ಉತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೈ
1: ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೈ
0: ದುಶ್ಮನ್
2: ಚಿಟ್ಠಿ ನ ಕೋಯಿ ಸಂದೇಹ
0: ಗದರ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ
3: ಮೈಂ ನಿಕ್ಲಾ ಓ ಗಡ್ಡಿ ಲೇಕೆ
0: ಪಿಂಜರ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಬೇಮಿಸಾಲ್ ಸಂಗೀತ ಕಿ
4: ಉಡ್ ಜಾ ಕಾಲೇ ಕಾವಾ ತೇರೇ ಮೂಹ ವಿಚ್ ಖಂಡ ಪಾವಾ
0: ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಜೀವನ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ
5: और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के बाद श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। रांची में आईएमए झारखंड समेत डॉक्टरों के 10 प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलन शुरू किया है। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और आयुष्मान भारत योजना के बकाया भुगतान की मांग की है। संगठनों ने 22 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी भी दी है। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से शेष 34,886 छात्र छात्राओं के आवेदनों को मंजूरी देते हुए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई। इससे पहले जिले में 65,545 आवेदनों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। मेदिनीनगर के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। पलामू जिले के 690 पूजा पंडालों में सुरक्षा के लिए 400 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि सभी पंडालों में सीसीटीवी की व्यवस्था पुख्ता रहेगी। गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में कल ओबीसी मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष शुभम गुप्ता ने बताया कि इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कई प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। मोर्चा अपनी प्रमुख मांग जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपेगा। राज्य के 4 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। आज कोडरमा में सर्वाधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम 16.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास। फिर भी एक एहसास है जैसे है वो कहीं आसपास। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग। इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो, कहीं दूर चले चले वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलकें झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे। दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी, इसी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट ले, बांट ले गम, बांट ले आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट ले आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

0: मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।
1: वो हम

मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें, जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था, दिखाई थी तमाम तस्वीरें एक दूसरे को, जब यूं ही सड़कों पर खाली बेमकसद चलते रहते थे, याद आ गए वे पल जब यूं ही बैठे चुपचाप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।

0: नदी का किनारा, लहरों का खेल करता समंदर, आसमान।
1: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं, आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:25 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी स्वयं सहायता समूह के लाभ, और साथ ही चर्चा में सुनेंगे पर्व त्यौहार में रखे स्वच्छता का ख्याल। वार्ता में सुनेंगे सूर्य से बिजली हर घर में खुशी, वार्ताकार होंगे तंतुजा कुमारी। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, और 6:02 पर ग्रामीण किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण सभा। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। साथ ही भेंटवार्ता में सुनेंगे अमरूद फसल की सघन बागवानी। भेंटवार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे, और भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। साथ ही चर्चा में सुनेंगे धान फसल की बीमारी एवं उसकी देखभाल। 6:30 पर कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम सुन सकेंगे खेती बाड़ी। आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में चर्चा होगी झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति एक परिचय, और भेंटवार्ता में सुनेंगे सरकारी योजनाओं के लाभों एक महिला कृषक से ली गई बातचीत, जिसमें भेंटवार्ताकार होंगी श्रीमती मंजू देवी सिक्की पाटन पलामू से। भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। संयोजन एवं प्रस्तुति होगी श्री प्रशांत गौरव की। आज की बात में सुनेंगे दीदी बाड़ी कार्यक्रम की विशेषताएं, और साथ में आप आज के बाजार भाव और आज के मौसम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिंगी मैच कल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या सुन सकेंगे। कल्याणी कार्यक्रम में आज सुनेंगे एक भेंटवार्ता, भेंटवार्ता में सुनेंगे फैटी लीवर उपचार एवं सावधानियां। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर ऋषि, भेंट करता होंगे श्री संजीव कुमार लाल और समय होगा 7:45। 8 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से का और 8:30 पर सुन सकेंगे नई सोच नया कदम।

रात्रि का 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में खबरें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार में आप सुनेंगे विविध भारती से। 10:00 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि के 10:30 पर एक ही फनकार आप सुन सकेंगे एक रंग कार्यक्रम में। 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का, जिसे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे हमेशा की तरह, और ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में, साथ ही नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्र पर्व की महिमा अपरंपार है। जब तब आराधना पूजा अर्चना द्वारा 9 दिनों तक देवी शक्ति की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है बहनों कि हम नवरात्र पर्व के महत्व को समझें, उसकी शक्ति को पहचानें। वैसे देखा जाए तो हर स्त्री में दुर्गा है, सृष्टि के कण कण में दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, तो माँ लक्ष्मी भी है। ज़रूरत है तो बस अपने अंदर छिपी इन शक्तियों को पहचानने की, उजागर करने की और समय आने पर उसे अमल में लाने की। जी हाँ बहनों, आज महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपने अपने स्तर से उस शक्ति का प्रयोग भी कर रही हैं। खासकर देखा जाए तो महिलाएं आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है इन महिलाओं के लिए, जो आगे आना चाहती हैं, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। यह समूह होता है छोटे छोटे महिलाओं से मिलकर बनता है और इसे सामान्यतः इसमें 10 से 20 महिलाएं मिलकर एक संगठन बनाती है और आपस में सहयोग द्वारा इस छोटे मोटे व्यवसाय को शुरू करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि इस समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं जो है वो सबसे पहले स्वावलंबी होती हैं और जब उनके हाथों में 2 पैसे आते हैं तो फिर वो थोड़ी थोड़ी बचत करना भी सीख जाती हैं और इस बचत के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करके वे ऋण लेकर अपने मन मुताबिक कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, और जैसे कि बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, सिलाई कढ़ाई करना, मशरूम उत्पादन करना, सब्जी की बागवानी करना या फिर छोटे मोटे कोई किसी भी प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जो अपनी सहूलियत और क्षमता के अनुसार भी या अपनी रुचि के अनुसार भी इन व्यवसाय को अपना सकती हैं। इन व्यवसाय से जुड़कर महिलाएं अपने आय में वृद्धि करती हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती हैं। देखा जाए तो पहले महिलाएं घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थीं और जब से महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने लगी हैं तो फिर आपस में मिलकर विचार विमर्श करती हैं, किसी भी निर्णय में अपना जो है वो राय सलाह दे सकती हैं। और इतना ही नहीं, जब 4 लोगों के बीच में वे बैठती हैं तो उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है और इन आदान प्रदान के द्वारा वे बहुत तरह से जागरूक होती हैं, अपने शक्तियों के बारे में जानती है और साथ ही उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी वे जान पाती हैं, जागरूक हो पाती हैं। तो इस प्रकार से ये समूह के द्वारा महिलाएं मिलती हैं और इसमें कई प्रकार से उन्हें इसका लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, जब वे 4 लोग के बीच से मिलती हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास सा बढ़ जाता है और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो वे और आगे बढ़ने को प्रेरित होती हैं, और जब आगे बढ़ने को प्रेरित होती हैं तो आगे बढ़ती ही चली जाती हैं क्योंकि इसका लाभ उन्हें मिलता जाता है, और जब आगे बढ़ती हैं तो फिर पीछे मुड़ के वे नहीं देखती और फिर वो एक अपनी अलग पहचान बना पाती है समाज में। स्वयं सहायता समूह से इसके अलावा वे शिक्षा के महत्व को भी जान पाती हैं और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी बेहतर निर्णय ले पाती हैं। बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उन्हें अच्छी ज्ञान देना भी उनकी उनकी जो है एक उत्तरदायित्व होती है बहुत बड़ी। और जब वे महिला खुद अपने बाहर निकलती हैं तो शिक्षा के महत्व को समझती हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ वे चाहे तो आवाज़ भी उठाती हैं या आवश्यकता पड़ने पर उठा सकती हैं। तो इस प्रकार से जब वो जागरूक होती है ना, तो हर अपने अच्छे बुरे का निर्णय वो लेने में सक्षम हो जाती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो परिवार और समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ने लगता है, घर के निर्णयों में भी उनकी भागीदारी होती है और बच्चे की जो है पहले से बेहतर उनकी देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये इत्यादि इत्यादि उनकी चाहे शादी विवाह हो सभी पर उनका निर्णय होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं के विकास में सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है और इनसे महिलाएं जो है पहले से अधिक स्वतंत्र अपने आप को महसूस कर रही है, आत्मविश्वासी बन रही है और सामाजिक सम्मान पा रही हैं और पहले से कहीं बेहतर जीवन जीने में भी वे सफल हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ महिलाएं अपनी पहचान बनाती है, जहाँ महिलाएं अपने आप को आर्थिक स्वावलंबन बनाती है और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में भी सक्षम होती हैं। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं वार्ता सूर्य से बिजली हर घर में खुशी। वार्ताकार होंगी तंतुजा कुमारी।
1: श्रोता भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं तंतुजा आज आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हमारे घर से जुड़ी है और हमारी जेब से भी, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। हम सब रोज़ सूरज को देखते हैं, सुबह सूरज निकलता है, सारे जग को रोशन करता है, गर्मी देता है और शाम में ढल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सूरज हमारे घर के लिए बिजली भी बना सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौर ऊर्जा की, सूर्य से बिजली हर घर में खुशी की। आजकल आपने कई घरों की छत पर सोलर पैनल लगे देखे होंगे। ये सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाने में मदद करता है। अब जरा सोचिए, हमारे घर की छत खाली पड़ी है और उस पर दिन भर धूप आती है, अगर उसी छत पर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहली बात, बिजली के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और दूसरी बात, हम अब स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे पर्यावरण को भी भरपूर फायदा पहुंचाएगा, यानी फायदा हमारे घर का भी और प्रकृति का भी, जिसकी बदौलत हम आज सभी पृथ्वी पर जीवित हैं। सूरज की रोशनी को सोलर पैनल के जरिए बिजली में भी बदला जा सकता है। घर के छत पर रूफटॉप सोलर लगाकर परिवार अपनी बिजली की ज़रूरत का एक हिस्सा को पूरा कर सकता है। इससे बिजली के बिल में कमी लाने में मदद मिल सकती है और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि सोलर लगाना तो महंगा होगा। बात सही है, शुरुआत में खर्च आता है, लेकिन सरकार भी घरों की छत पर सोलर लगाने को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान है। इसलिए अगर आप भी अपने घर पर सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो आज इस योजना की पूरी जानकारी आपसे मैं साझा करूंगी, जिससे कि आप सभी को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी सोलर पैनल लगवाए तो कैसे? सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाना है और इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी कि सब्सिडी भी दी जाती है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। अगर कोई पात्र परिवार 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाता है तो मौजूदा केंद्रीय सहायता के हिसाब से उसे 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। 2 किलोवाट पर यह सहायता 60,000 रुपये तक है और अगर 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम लगाना चाहते हैं तो अधिकतम 78,000 रुपये तक भी यह सहायता है। यानी सरकार की मदद से सोलर लगवाने का शुरुआती खर्च काफ़ी कम हो सकता है। अब मन में ये सवाल आएगा कि आवेदन कहाँ से करें, कैसे करें, तो इसका बिल्कुल आसान तरीका रखा गया है। सबसे पहले सरकार के आधिकारिक पोर्टल PM सूर्य घर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम चुनना होता है। इसके बाद बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर तथा ईमेल जैसी जानकारी देकर हम आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ईमेल जैसी जानकारी देने के बाद आवेदन के बाद डिस्कॉम से आवश्यक स्वीकृति मिलती है और पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेता यानी अधिकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। सोलर लगाने के बाद नेट मीटर की प्रक्रिया होती है। डिस्कॉम की जांच और सिस्टम के चालू होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्रता के अनुसार सब्सिडी बैंक खाते में भेजी जाती और हाँ, सरकार की ओर से कम ब्याज वाले ऋण की भी सुविधा का प्रावधान है जिससे शुरुआत में खर्च का बोझ कम करने में मदद मिल सकता है। अगर हम पलामू के संदर्भ में बात करें तो यहाँ बिजली वितरण JBBNL के माध्यम से होता है और JBBNL ने PM सूर्य घर के लिए अपनी आधिकारिक व्यवस्था प्रक्रिया और सूचीबद्ध विक्रेताओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। आप JBBNL के माध्यम से भी इनका लाभ उठा सकते हैं। पलामू में स्थानीय जानकारी के लिए झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी विद्युत विभाग मेदिनीनगर में भी संपर्क किया जा सकता है। अब आप कहेंगे हमारे घर में तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता, फिर सोलर पैनल क्यों लगवाएं? देखिए, बात सिर्फ आज के बिल की नहीं है। सौर ऊर्जा अपनाने से हम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, बिजली की ज़रूरत को स्थानीय स्तर पर पूरा करने में मदद करते हैं और पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। और अगर आपके घर में सोलर सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाता है तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने की भी व्यवस्था हो सकती है। तो फायदा सिर्फ घर का नहीं, देश का और पर्यावरण का भी है। इसलिए अगर आपके पास अपना घर है, छत पर पर्याप्त धूप आती है और वैध बिजली कनेक्शन है तो आप इस योजना का लाभ जरूर लें और राष्ट्र के विकास में सहायक बने। परंतु ध्यान रखिए, सोलर लगवाने से पहले किसी अनजान व्यक्ति का भरोसा ना रहे और उस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखें और सूचीबद्ध और अधिकृत वेंडर के माध्यम से ही आगे बढ़ें। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें, जहां संभव हो सौर ऊर्जा को अपनाएंगे, बिजली को बचाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि सूरज सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, सूरज हमारे लिए एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने घर अपने भविष्य दोनों को रोशन कर सकते हैं। तो याद रखिए, सूर्य की रोशनी अपनाएं, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाएं, बिजली बचाएं, पर्यावरण बचाएं और सबसे ज़रूरी बात, सूर्य से बिजली, हर घर में खुशी। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता सूर्य से बिजली हर घर में खुशी। वार्ताकार थी तंतुजा कुमारी। और चलिए बहनों, अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ नवरात्रि पर्व की धूमधाम है, चहल पहल है। आइए हम भी इसमें शामिल होते हैं।

बहनों, पर्व त्यौहार शुद्धता एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण को रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे स्वस्थता भी होती है, यानी लोग सेहतमंद होते हैं। और सेहत जो है वो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी है। वहाँ जहाँ आदमी स्वस्थ होता है वहीं सुख समृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्वच्छ वातावरण रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर अपनाएं। खासकर अभी पूजा जो है, पूजा अर्चना के समय में तो और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपनी पूरी पूरी भूमिका निभाएं। तो चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक और भक्ति गीत।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और असामाजिक तत्वों से निपटने का पूर्वाभ्यास किया। सुरक्षा के लिए 400 होमगार्ड धनबाद पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। चतरा में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। डीएसपी सन्निवर्धन ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए यह कदम उठाया गया है। विश्व मानक दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। इस वर्ष की थीम सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा रही, जिसके तहत सतत विकास, गुणवत्ता और सुरक्षा में मानकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। लोहरदगा समाहरणालय में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी आवासीय विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच करने और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत छात्रों की आभा आईडी बनाने का निर्देश दिया। राज्य के 4 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। आज कोडरमा में सर्वाधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम 16.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार, स्वागत है। बहनों, आज के इस कार्यक्रम में सभी बहनों को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, हर पर्व मनाने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ न कुछ संदेश अवश्य होते हैं जो हम सभी के लिए कल्याणकारी होते हैं। अभी नवरात्र पर्व में सभी जगह काफ़ी उत्साह उमंग देखी जा रही है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन पर्व मनाने के पीछे जो उद्देश्य है उससे हमें अवश्य अवगत होना चाहिए। नवरात्रि में देवी शक्ति की पूजा की जाती है, वो शक्ति जो प्रकृति के कण कण में विराजमान है, और हम कह सकते हैं कि विवेक भी एक शक्ति है, विद्या भी एक शक्ति है, अर्थ का ज्ञान भी एक शक्ति है, तो भोजन पकाना भी एक शक्ति है, और किसी भी कला में कुशलता हासिल करना भी एक शक्ति है। समाज, परिवार एवं देश को एक सूत्र में बांधना भी एक शक्ति है। बिना शक्ति के इस संसार में जीवन अपूर्ण है बहनों, और महिलाएं तो शक्ति की पूंज है, उनके बिना किसी भी क्षेत्र में विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम बातें करें कृषि क्षेत्र की, तो यहाँ भी महिलाओं की जो शक्ति है उनका भरपूर उपयोग होता है, सहयोग होता है। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि के लगभग हर चरणों में अपनी भागीदारी बखूबी निभाती हैं। उनकी भूमिका केवल खेतों में काम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

0: करने वाली महिलाओं की भूमिका भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं धान की नर्सरी तैयार करती हैं, साथ ही साथ नर्सरी को जब तैयार हो जाते हैं तो उन्हें उखाड़ कर उन्हें खेतों में रोपाई करती हैं क्रमबद्ध रूप से, और फिर उसे देखभाल करती है, उसे भली भांति बढ़ने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो काफ़ी सराहनीय होती है। और सिर्फ धान की ही बात नहीं बल्कि जो भी फसलें उगाई जाती हैं खेतों में सभी में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अभी यदि महिलाओं को देखा जाए धान की फसल में तो महिलाएं गुनगुनाते हुए बहुत ही झूम झूम के खेतों में नर्सरी जो है लगाती हैं और उसे फलते फूलते देखती हैं। तो इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं मक्का गेहूं दलहन तिलहन इत्यादि इत्यादि सब्जियां हैं या और भी जो भी फसलें उगाई जाती सभी में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही साथ बीजों को सुखाना, उसे सही तरीके से उसे सहेज कर रखना और बीज को उपचारित करना, उसे क्रमबद्ध से उसे बुआई करना और फिर जो उसे जो है बढ़ने में उनका काफ़ी योगदान होता है। और जब निकाई गुड़ाई की बात आती है तो बहनें जो है अपने खेतों में निकाई गुड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और खरपतवार निकालना भी इतना आसान नहीं होता है, जबकि हमारी जो बहनें हैं वो खेतों में जो है काफ़ी अपना समय निकाल कर खरपतवार निकालने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा समय समय पर सिंचाई करना उन्हें, ताकि जो है पौधे को पूर्ण रूप से पोषक तत्व प्राप्त हो सके, प्रकाश मिल सके, और इसीलिए वे खरपतवार निकलना भी आवश्यक हो जाता है। सब्जियों की क्यारियां हो जहां पौधे को आवश्यकता अनुसार जो भी उनकी सिंचाई करनी हो, गुड़ाई करनी हो या फिर उनमें उर्वरक डालनी हो, जो भी कार्य हो सभी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो फसलों के बुआई से लेकर उसकी कटाई मढ़ाई सफाई यहाँ तक कि भंडारण तक महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इतना ही नहीं, अनाजों को जो है वो बेहतर तरीके से साफ़ करना, चुन बिन कर साफ़ करना, सुखाने का काम करना, फिर उसे बीज उसमें से अलग करना और उन बीजों को सुरक्षित रखना, और जो अनाज तैयार हो गए हैं उसे भंडारण तक पहुंचाना और फिर उन अनाजों को भंडारण में सुरक्षित भंडार करना, इन सभी कामों में महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और यदि देखा जाए तो अगर महिलाएं अगर बेहतर ढंग से अपना योगदान नहीं देती हैं तो फिर बहुत सारे फसल जो है खेतों में नष्ट हो जाते हैं, खलिहानों में नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से महिलाएं जो हैं वे सब्जियों का भी उत्पादन करती हैं अपने खेतों में, और बड़े पैमाने पर आज जो महिलाएं हैं वो सब्जियों का सिर्फ उत्पादन ही नहीं कर रही है बल्कि वो उसके फलने फूलने बढ़ने तक उसकी सेवा भी करती हैं, और जब तैयार हो जाता है तो उसे बाज़ारों तक ले जाते हैं और बाज़ार में खुद उसकी बिक्री करके उसे आर्थिक उपार्जन भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महिलाएं वो हर काम करने में सक्षम हैं जो कि एक कृषक पुरुष भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो पशुपालन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यदि महिलाएं पशुपालन में अगर नहीं साथ देती हैं तो पशुपालन करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पशुपालन में महिलाएं जो हैं पशुओं की विशेष देखभाल करती हैं, उसके रहने के स्थान को साफ सुथरा करना, समय पर उन्हें चारा देना, हरा चारा देना, साथ ही उनके जो खान पान पर है उसे बेहतर ढंग से उन्हें पौष्टिक आहार देना और नहलाना समय पर। यदि चराने की बात हो तो महिलाएं भी पशुओं को चराती है, भेड़ बकरी या गाय भैंस जो भी हो उन्हें चराने भी लेकर वो साथ में जाती हैं और चराती भी हैं। इतना ही नहीं, अगर समय वक्त आने पर वे उनका दूध भी निकालती है, यानी जिसे हम दूध दूना करते हैं, और दूध निकाल कर फिर उसे बिक्री भी करती हैं, यहाँ तक कि बिक्री करने भी जाती हैं, लोगों के घरों तक भी वे पहुँचाती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पशुपालन में भी उनका काफ़ी सराहनीय महत्व जो है स्थान होता है। यदि दूध निकालने का काम करती है तो उसे फिर पनीर निकालने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। उसे दूध से मावा निकालने का काम भी बहनें करती हैं। और यदि मक्खन वगैरह इकट्ठा हो जाए तो उसे घी निकालने का काम भी बहनें ही करती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पशुपालन में भी उनका जो है जो कार्य का क्षेत्र है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे कृषि कार्य हो या पशुपालन हो या बागवानी हो, जैसा कि साग सब्जी उगाना या फल वृक्ष लगाना, जो भी हो, सभी में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और महिलाओं के बिना कृषि का जो क्षेत्र है वो अधूरा है। यानी कृषि विकास तभी संभव है जब इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा, उनकी भागीदारी होगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महिलाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहनों, यदि हम बातें करें अमरूद फल की, तो भला अमरूद किसे अच्छा नहीं लगता। जितना ये स्वादिष्ट होता है उतना ही गुणकारी भी होता है, और जितना गुणकारी होता है उतना ही आर्थिक लाभ भी देता है। जी हाँ बहनों, कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारे किसान भाई बहन जो भी हैं, अगर अमरुद का नए तकनीक से बागवानी करते हैं तो निश्चय ही उन्हें बहुत ही बेहतर लाभ मिलता है। तो चलिए, अमृत फल की सघन बागवानी कैसे करें, इस पर हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, जिसमें भेंट वार्ता कर रहे हैं कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे फल उद्यान की, और विशेषकर पलामू जिला में या फिर गढ़वा लातेहार में अमरुद की खेती हमारे ग्रामीण बंधु आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि हम अमरुद की सघन बागवानी कैसे करें। इस संबंध में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
1: सर्वप्रथम तो बताया जाए हमारे ग्रामीण भाइयों को कि अमरुद की खेती के लिए जो चुनाव वो करते हैं वो कैसा है।
2: देखिए संतोष जी, पहले क्या होता था कि लोग शौकिया तौर पे अमरुद की फसल लगाते थे और यह ट्रेडिशनल फल था, लेकिन आज के समय में अमरुद एक व्यापारिक फल है।
1: जी
2: व्यापारिक फल, मेरा कहने का मतलब है, फल का मतलब है, ऐसे फसल से है जिसपे दिन प्रतिदिन इसको जब हम मार्केट में लाए तो ये तुरंत का तुरंत बिक जाए।
1: जी
2: अमरुद के केस में सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के समय में डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा फल है, रफेज जिसमें बहुत ज्यादा होता है, तो विभिन्न तरीका के रोगों में जो फल वर्जित है वहाँ पे अमरुद को आसानी से लोग लेते हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं, विटामिन सी की प्रचुरता है, इसके साथ ही साथ इसकी खेती सालों भर हो सकती है और सालों भर मार्केट में इसका डिमांड होता है। इसका कभी भी प्राइस आपको 30 रुपये 40 रुपये से नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो आज के समय में यह एक व्यापारिक फसल बन चुका है। और जहाँ तक हम लोग इसकी खेती के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में बोलेंगे, तो बहुत पहले से 17वीं शताब्दी से इसका, चूंकि ये बाहर से आया हुआ फल है, लेकिन यहाँ इंडिया में इस तरीका से रच बस गया है कि लगता है जैसे यहाँ का ही ये ओरिजिन हो।
1: और हाँ, इस तरह
2: और ढेर सारी वैरायटी है
1: जी।
2: जो कि यहाँ पे है, जैसे इलाहाबाद सफेदा, सरदार, ललित, इसी तरीका से ढेर सारा वैरायटी है जो कि रच बस गया है और लगता है कि ये इंडिया का ही फसल है।
1: फसल है जी। ऐसे ये मूलतः है कहाँ का?
2: मूलतः यह अमेरिका का है,
1: अच्छा,
2: अमेरिका महादेश का फसल है, और 17वीं शताब्दी में जैसे पपीता ये सब के साथ पुर्तगालियों के द्वारा ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका हुआ है।
1: और ऐसे भी हमारे ग्रामीण भाई बहन एक ना एक पौधा अपने घरों में, जो नहीं भी शौक रखते हैं उनका लगा हुआ रहता है अमरूद का पौधा। और हम समझते हैं कि अगर इसकी खेती की जाए तो निश्चित रूप से व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी आमदनी हमारे ग्रामीण भाई बहन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी खेती की शुरुआत कैसे करेंगे?
2: आज हम लोग इसकी सघन बागवानी पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सघन बागवानी का मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले हम लोग 1 एकड़ में बहुत कम पौधे लगा पाते थे, मुश्किल से 100-150 पौधे लग पाते थे। आज के समय में वो 2000 तक हम पौधे लगाने में सक्षम हैं।
1: अच्छा।
2: दूसरा चीज़ क्या है कि पहले जो नॉर्मल हम लोग प्लांटेशन

0: कहते हैं तो ज्यादा बढ़ेगा और महिलाएं ज्यादा पैसा भी खेती के माध्यम से अपने आप को संबल बनाती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और दिन रात इसमें आराम से मेहनत करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हाइट कम है, नीचे मुड़ बैठ करके काम करना है, तो सघन बागवानी में इन चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है और सालों भर इसका फल बाजार तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है।
1: जी जी, तो कौन कौन से प्रभेद का चुनाव करें हमारे किसान भाई, खेतों की तैयारी कैसे करें?
0: खेत जब हम लोग इसके सघन बागवानी की बात करते हैं तो जहाँ पहले हम लोग इसको 5 मीटर की दूरी पे 5 मीटर बाय 5 मीटर पे लगाते थे, आज इसकी दूरी को कम करके हम लोग लाइन से लाइन 2 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर रखने की स्थिति में आ गए हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसमें क्या है कि पहले गड्ढा करने में भी या गड्ढा भरने में भी समय ज्यादा लगता था, आज यदि हमको कहीं पे भी अमरुद की बागवानी करनी है तो जमीन देखिए कभी भी ज्यादा मायने नहीं रखता है कि कैसा जमीन है।
1: जी जी,
0: उस जमीन को कम से कम 2 बार 3 बार आप जुताई कर दें, 1 बार 2 बार गहरी जुताई कर दें और उसको यदि हम प्लेन कर दें और इसके बाद जैसे मेड़ ऊंचा करके और 2-2 मीटर के बाद हम लोग 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में इसका ऊंचा कर दें और पौधा को 1-1 मीटर की दूरी पर लगा दें, बीच में फिर आप आने जाने जैसा रास्ता छोड़ दें और 2 मीटर के बाद फिर पौधा लगा दें, तो पौधा लगाने के लिए आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: सबसे पहले हम लोग को दिमाग में बात डालना है कि चूंकि पौधा बच्चा है और इसका क्या हमको ज्यादा ऊंचा तक लेकर जाना नहीं है, तो ज्यादा ऊंचा लेकर नहीं जाना है तो इसमें ज्यादा हमको खाद पानी देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग को जहाँ पे अमरुद लगाना है इसका यदि हम लोग लाइनिंग तैयार कर लेते हैं तो हर एक जहाँ पे पौधा लगाना है उस जगह पे मात्र 1.5 से 2 kg हर एक गड्ढा के अनुसार आप पूरा सड़ा हुआ गोबर खाद प्रारंभ में और 90 ग्राम यूरिया 45 ग्राम पोटास मिला करके गड्ढा में हम लोग रखते चले जाएंगे।
1: अच्छा,
0: और जो गड्ढा हम बनाए इसका हमको ये कोशिश करना है कि जैसे बरसात आ गया, लेआउट हम लोग अभी कर लिए, लेकिन बरसात आ गया जुलाई, हम लोग जुलाई में घास जैसे उस खेत के एरिया को उस जहाँ पे रखना है घास मुक्त हो कम से कम।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लास्ट अगस्त में पौधा लगाएं।
1: अच्छा,
0: चूंकि जो भी पौधा हम लगा रहे हैं चूंकि थोड़ा कॉस्टली पौधा है, जैसे इसके लिए हम लोग चुनाव करते हैं थाई पिंक या VNR की है ये प्रजाति जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी से इम्प्रूव किया हुआ टिश्यू कल्चर वाला पौधा है।
1: अच्छा,
0: तो उस पौधे का यदि व्यावसायिक खेती हम कर रहे हैं तो उसका चुनाव कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल है जैसे इलाहाबाद सफेदा ललित, उसका भी हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो इम्प्रूव वैरायटी है जैसे थाई पिंक की मैं बात किया, VNR की मैं बात किया, उसके उसके फलन में और जो हमारा ट्रेडिशनल है प्रभेद उसमें फलन में देखिए जो प्रोडक्शन होगा थोड़ा अंतर पड़ता है।
1: अच्छा,
0: अंतर पड़ता है जैसे कि उसमें 1 साल के बाद जहाँ आप 1 kg लेंगे, ट्रेडिशनल हम जो अपना लगाते हैं उसमें 700 से 800 ग्राम।
1: अच्छा,
0: मतलब 25% का आपको कमी देखने को मिला है अभी रिसर्च के माध्यम
1: अच्छा,
0: से
1: अच्छा।
0: और लॉन्ग ड्यूरेशन में और फिर एक गैप हो जाता है।
1: अच्छा,
0: जैसे एक पौधा में उसमें 20 kg तक हम लेंगे, ये हमारा 12-14 kg तक प्रत्येक पौधा में रह जाता है।
1: अच्छा,
0: 5 साल के बाद
1: अच्छा।
0: लेकिन इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है चूँकि जो एक टिश्यू कल्चर पौधा है यदि आप लॉट में ज़्यादा मंगाते हैं तो इसका मूल्य कम पड़ता है, 90-100 रुपये तक पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: हो सकता है ज़्यादा लॉट में मंगाए या हमारा हम लोग जो किसान भाई ज़्यादा समूह में इकट्ठा होकर के पौधा का डिमांड करें, जैसे ये आंध्रा के से पौधा जनरली आती है तो वो कम पड़ेगा 40-50 तक, तो इनिशियल कॉस्ट इसमें पौधा में ज़्यादा पड़ता है।
1: अच्छा,
0: चूँकि हमको 2000 पौधा लगाना है
1: जी,
0: तो इनिशियल कॉस्ट उसमें लग जाता है ज़्यादा, खाद में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है।
1: अच्छा, तो प्रति वर्ष वो फल देगा?
0: इसमें क्या है कि 7 महीने के बाद जैसे आप पौधा आज लगा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पौधा

0: आना शुरू हुआ तो हम लोग उसके वेजिटेटिव ग्रोथ को, जैसे पत्ती वगैरह निकलता है, उसको तुरंत चेक करेंगे। अच्छा। 4 महीना के बाद उसको काट देंगे, प्रूनिंग कर देंगे। तो प्रूनिंग करने से क्या होगा कि वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा।
1: अच्छा।
0: रिप्रोडक्टिव फेज मेरा कहने का मतलब फलन में चला जाएगा। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो किसान भाइयों को, खासकर पलामू के किसान को मेरा ये सलाह रहेगा कि जो 7 महीने के बाद जो फूल वगैरह आता है उसको हटा देने का मैं सुझाव दूंगा। कम से कम 1.5 साल का पौधा हो तब उन्हें फल लेने का मैं सुझाव दूंगा।
1: अच्छा।
0: इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जमीन जो है थोड़ा कम उपजाऊ है और हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें गड्ढा खोद करके ज़्यादा पौधा देने रहे हैं, तो यदि हम ज़्यादा उसमें लगाते हैं तो उसके भार को सहेगा नहीं, जहाँ तहाँ क्रैकिंग होने लगेगा तो उसके स्ट्रक्चर को। चूंकि हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल में 70-80 सेंटीमीटर जाने के बाद हम लोग छटनी करते थे, यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ही पौधा सीधा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर को हुआ तो 40 सेंटीमीटर के बाद ऊपर से हम पौधा को कट कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: ऊपर का पौधा कट कर देते हैं और उसके बाद नीचे से जो शाखा निकलती है वो फिर बढ़ती है।
1: अच्छा।
0: उस पौधे को भी 3-4 महीने के बाद हम कट कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इस दौरान चूंकि पौधे की पेंसिल थिकनेस का पौधा रहता है, उसको मोटा होने का समय मिल जाता है।
1: समय मिल जाता है जी।
0: तो समय जब ज़्यादा मिल जाता है तो आगे हमारा जैसे नॉर्मल जहाँ 10-15 वर्ष तक हम आसानी से बिना मेहनत के भी, आगे जो मेहनत चाहिए उसके मेहनत के भी हम आराम से हमारा फलन होते रहेगा।
1: कितने वर्षों तक हम इसे फल ले सकते हैं?
0: जब हम इस तरीका का सघन खेती की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में 15-20 साल आप आराम से ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हो सकता है कि 15-20 साल के बाद हम इसमें फिर से खेत की पूरी गाढ़ी जुताई करना पड़े, पौधे में किसी तरीके का रोग संक्रमण हो उसको बाद में, चूंकि होता क्या है कि सघन होने के बाद उतना मेंटेन हो नहीं पाता है, तो उसके चलते ढेर सारी बीमारियां भी आने की संभावना रहती है। लेकिन यदि मेंटेन किया जाए तो 15-20 वर्ष तक इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आगे इसके सालों भर के मेंटेनेंस पे, किसान भाइयों के मेंटेनेंस पे इसका उम्र डिपेंड करता है।
1: अमरुद की सघन बागवानी पर हम बातें कर रहे हैं किसान भाइयों, और इससे छुड़ी कोई संक्षिप्त बातें?
0: किसान भाइयों को जो सबसे पहला ध्यान देना है कि जो मैं पहले बताया कि पहला कटिंग 4 महीने के बाद करेंगे, और उनको हमेशा ये कोशिश करना है कि फिर जब चारों तरफ से जो शाखा निकलेगी 4 महीने बाद उसको फिर हम 20-30 सेंटीमीटर का होता है या जो उसकी लंबाई 4 महीने में बढ़ गई, तो जितना लंबाई उसका जो शाखा निकला 4 महीने में बढ़ा उसका आधा जहाँ पे आएगा वहाँ पे वो कट कर लेंगे।
1: अच्छा।
0: इसी तरीका से फिर 4 महीने का आएगा, तो इस तरीका से हम लोग 1.5 साल तक उसका पूरा ट्रेनिंग करते हैं पौधे का।
1: अच्छा।
0: तो 1.5 साल तक ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग पौधे की ऊंचाई को किसी भी कीमत पे 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, और समय समय पे हम उसकी पत्तियों की छटाई करते रहेंगे। छटाई भी हम 4-4 महीना के अंतराल पे करेंगे, क्योंकि हम और उसमें सबकी छटाई नहीं करेंगे। छटाई करने समय में भी हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पौधा है उसमें मान लीजिए कि 100 ब्रांच निकला, तो 100 ब्रांच में आप मात्र 50 ब्रांच में छटे नहीं करें। 50 ब्रांच में वो क्या है कि एक नियत समय के बाद फूल वगैरह आएगा, फिर 4 महीने बाद हम उस जो नया ब्रांच आ रहा है उसमें 50% में कटिंग करेंगे। उससे क्या है कि आपको सालों भर अमरुद की फल प्राप्त होते रहेगी
1: जी।
0: और बाजार में हम हमेशा सप्लाई करते रहेंगे। दूसरा चीज इसमें मुख्य बात यह है कि फ्रूट फ्लाई का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है।
1: अच्छा।
0: खासकर बरसात वाला जो फलन होता है, तो किसान भाई बरसात में चूंकि जो फल आता है यदि स्वस्थ और अच्छा रहे तो उसका बाजार में अच्छा प्राइस मिलता है। इसके लिए किसान भाई फल में लगाने लायक जो बैग आता है उस बैग से फल को बांध सकते हैं यदि कम क्षेत्र में है। ज़्यादा क्षेत्र में है तो एक लियोर आता है, वो लियोर क्या होता है कि नर मादा को अपने, नर जो कीट है उसको अपने तरफ खींचेगा। तो एक यदि एक एकड़ में हमको लगाना है तो मुश्किल से 4-5 जगह हम उस लियोर को लगा देंगे और वो लियोर को नर को खींचेगा, तो उस नर को अपने तरफ खींचेगा, तो उससे हमको देखने से समझ में आएगा कि ए

0: फ्रूट फ्लाई का कैसा स्थिति है। इसके साथ भी बीच बीच में हम लोग जैसे गेंदा का फूल वगैरह लगा सकते हैं, और भी कोई सुगंध वाली इस तरीका के जो कि कीड़ा को अपने तरफ आकर्षित करें बीच बीच में, और उसके ऊपर हम लोग कीटनाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। फल पे हम डायरेक्ट कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि जो किसान भाई पूरे तरीका से इसको ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, उनके लिए कि वो अपने खेत में यूरिया डीएपी का छिड़काव देना नहीं चाहते हैं, वो किसान भाई कंपोस्ट के अलावा जो जीवामृत की बार बार चर्चा होती है, उस जीवामृत का कम से कम 200 ml 15 दिन के अंतराल पे हमेशा देते रहेंगे, तो ये ऑर्गेनिक उत्पाद भी उनका आएगा, और जिससे वो क्या है कि बाहर भी इसको भेज सकते हैं, ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है।
1: तो किसान भाइयों, ये हुई संक्षिप्त बातें अमरुद फसल की सघन बागवानी पर, और जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। हमारे कार्यक्रम से जुड़े सर और अमृत की सघन बागवानी से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेजवार्ता, अमृत फसल की सघन बागवानी, इस पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। बहनों, आपका परिश्रम ही आपका फल होता है, और खेतों में देखिए अभी धान फसल लहलहा रहे हैं, उनमें बालियां निकल आई हैं, और उसे देखकर सचमुच आप फूले नहीं समाती। लेकिन यही वो महत्वपूर्ण समय होता है जब धान फसल की विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि धान फसल में रोग कीट वगैरह लगकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और साथ ही उत्पादन को घटा भी सकते हैं। तो बहनों, धान जो है हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और धान की अच्छी पैदावार के लिए केवल समय पर सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समय पर खाद देना और फसल में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान करना और उचित प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं बहनों कि इनमें कौन कौन से कीट और रोग लग सकते हैं। तो अभी समय है कि ज़्यादा अभी संभावना है कि उसमें तना छेदक कीट लगने की, तो इस कीट की सुंडी धान के तने में घुसकर अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआती अवस्था में पौधे की बीज की पत्तियां सूखकर डेड हार्ड जैसी दिखाई देती हैं, और बालियां निकलने के बाद प्रभावित बालियां सफ़ेद होकर सूख जाती हैं, जिसे कि सफ़ेद बालियां भी नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे कृषक महिलाओं को चाहिए कि खेत की नियमित जांच पड़ताल करते रहें, अंडों के समूह दिखाई देने पर उसे नष्ट कर दें, साथ ही संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन का प्रयोग करें, और अधिक प्रकोप होने पर उसमें अपने कृषि विशेषज्ञ के अनुसार उसमें दवा का छिड़काव करें, ताकि समय रहते उस पर नियंत्रण पाई जा सके। अब हम बातें करेंगे पत्ती लपेटक की। तो इसकी सुंडी पत्तों को मोड़कर उसके अंदर रहती है और हरे भाग को खा जाती है। पत्तियों पर सफ़ेद धारियां या खुरचे जैसे हिस्से दिखाई देते हैं। तो खेत की नियमित निगरानी करते रहें, आवश्यकता के अनुसार ही नाइट्रोजन का प्रयोग करें, और आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहनों, अब हम बातें करेंगे झुलसा रोग की। तो इसमें जो लक्षण है वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। पत्तियों पर आँख या नौ के आकार के धब्बे बनते हैं जो बढ़कर पत्तियों को सुखा सकते हैं। अधिक प्रकोप होने पर बालियों पर भी असर पड़ सकते हैं। तो चाहिए कि किसान महिला जो, उनको चाहिए कि स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, संतुलित पोषण दें, खेत में उचित दूरी पर ही उसकी बुआई करें, और समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर फफूंदनाशी दवा का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो इस प्रकार से बहनों, आप अपने खेतों की नियमित रूप से जांच पड़ताल करते रहें, निगरानी रखें, और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उसका निराकरण करें, तभी आप अपने मेहनत का पूरा पूरा फल यानी कि उत्पादन पा सकेंगे। तो बहनों देखिए, अब समय हो चला है कि हम आपसे लिए विदा। कार्यक्रम ग्रामीण सभा से नमस्कार।

अभी महिलाएँ सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। समय हो चला है कार्यक्रम खेती बाड़ी का,

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, पर्व जो है वो एक माध्यम होता है जो हमें सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर ले चलती है, यानी अपने आप को पहचाने, अपने शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करें। जी हाँ बहनों, आज हम एक ऐसे ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बातें करेंगे जिससे जुड़कर महिलाएं आगे आ सकती हैं, अपना विकास कर रही हैं और अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ भी कर रही है। जी हाँ बहनों, आज हम बातें करेंगे झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति के बारे में। तो बहनों, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति को हम JSLPS भी कह सकते हैं। यह झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास के अंतर्गत आती है और इस संस्था की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था राज्य के ग्रामीण परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उन्हें अस्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। इस समिति संस्था के कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें से पहला उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को कम करना। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवार कृषि, मजदूरी और छोटे मोटे व्यवसाय पर निर्भर हैं। कई बार उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिल पाते जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। ऐसे परिवारों को आजीविका के साधनों से जोड़ना होता है, उनकी आय बढ़ाने में सहायता करनी होती है, साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी इस संस्था का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने, बचत की आदत विकसित करने, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बनाने तथा आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। इससे महिलाएं अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में भी भागीदारी कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन समूहों में सामान्यतः महिलाएं नियमित रूप से बैठक करती हैं, छोटी छोटी बचत करती हैं और समूह के नियमों के अनुसार जरूरतमंद सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करती है। इस संस्था का रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने अवसर बढ़ाने का काम भी करता है। इस संस्था

0: संस्था का उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को केवल मजदूरी पर निर्भर रहने के बजाय आय की विभिन्न साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों और लोगों की रुचि के अनुसार विभिन्न आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं और स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को कई प्रकार से लाभ मिलते हैं, जैसे कि बचत की आदत। महिलाएं जो है नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि बचत करना सीख जाती हैं, इससे उन्हें जो है अच्छी बचत हो जाती है, जो समय आने पर उसका भी उपयोग कर पाती हैं। ऋण की सुविधा, समूह की पात्रता और नियमों के अनुसार बैंक से ऋण भी प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिलती है। महिलाएं जो है अपनी क्षमता और स्थानीय बाजार के अनुसार भी अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और इस व्यवसाय से वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अतिरिक्त आय से परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में उन्हें मदद मिलती है, यानी जब वो आत्मनिर्भर बनती है तो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर भी अपने खर्च कर सकती है उन पैसों को। और इस प्रकार से जब वो स्वावलंबी बनती है तो उनमें आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है, यानी बैठक में समूह में बैठक लेना, उनसे बातचीत करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इन सभी के जो अवसर आते हैं तो इससे महिलाएं पहले से अधिक सशक्त और मजबूत बनती है। इतना ही नहीं, महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति, पोषण के, शिक्षा, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं से संबंधित भी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है, यानी पहले से वो अधिक जागरूक हो पाती हैं और अपने सभी अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिलती रहती है। तो इस प्रकार से जो है JSLP के माध्यम से जो है हमारी महिलाएं आजीविका के प्रमुख जो साधन है, जैसे कृषि कार्य करना, सब्जी उत्पादन करना, और देखा जाए तो महिलाएं जो बढ़ चढ़कर आज इसमें भाग ले रही हैं, कृषि कार्य में भी, सब्जी उत्पादन में भी, पशुपालन में भी, तो इस प्रकार से जो उनकी जो गतिविधि है वो दिनों दिन बढ़ रही है और हर क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है बढ़ चढ़कर है। और यदि मशरूम उत्पादन की बात की जाए, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात की जाए, तो इन सबों में भी उनकी जो भूमिका है सराहनीय है। और इन सभी से जुड़कर यदि हम बातें करें, पापड़ अचार बनाने की, मसाला तैयार करने की, अगरबत्ती निर्माण में, सिलाई कढ़ाई बनाने, दोना पत्तल बनाने, इत्यादि इत्यादि जो भी कार्य हैं उन सभी से जुड़कर वो अपने आप को स्वावलंबी बना रही हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज ये जो संस्था है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है वैसी महिलाओं को जो आगे बढ़ने की जिनमें इच्छा है, जो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है, उन्हें मौका देता है, अवसर देता है ये संस्था। तो चलिए बहनों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। सरकारी योजनाओं की लाभों एक महिला से बात करेंगे। भेंटवार्ताकार होंगी श्रीमती मंजू देवी, जो सिक्की पाटन पलामू से है, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो आइए सुनवाते हैं ये भेंटवार्ता।
1: ग्रामीण भाइयों, आज निश्चित रूप से महिलाएं कृषि की रीढ़ हैं, और आज एक सफल महिला किसान मंजू देवी, जो वर्षों से खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले चुकी हैं और अन्य पशु भी पाल रखे हैं, ये स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अभी आप किस चीज की खेती कर रही हैं?
2: अभी हम आलू लगाए हैं।
1: अच्छा।
2: और लहसुन लगाए हैं, गोभी लगाए हैं, मिर्चा, बैगन और गाजर वगैरह भी लगाए हैं।
1: वाह, तो ये आलू जो लगाई हैं, गोभी लगाई हैं, मिर्चा बैगन लगाई हैं, तो सब स्थानीय है या हाइब्रिड है?
2: नहीं, हाइब्रिड नहीं लगाते हैं। हाइब्रिड लगाने से तो फल बड़ा बड़ा होगा ही, लेकिन उससे आदमी को फायदा नहीं है, उसे नुकसान है, इसीलिए हम लोग हाइब्रिड नहीं लगाते हैं।
1: मतलब कुल मिलाकर

0: जैविक खेती की ओर आप लोग ज्यादा ध्यान देती हैं।
1: जी जी
0: जी। और रही बात रासायनिक खाद की, तो आप रासायनिक खादों का भी प्रयोग करती हैं या फिर ये जैविक?
1: नहीं, हम लोग जैविक खाद घर में ही बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: अपने गाय रखे हैं, गाय का गोबर से और उसका पेशाब से हम लोग खाद बना लेते हैं और वही खाद हम लोग सब्जी में डालते हैं। उसको उस सब्जी खाने से कोई घाटा नहीं है, शरीर के लिए वो फायदा ही फायदा है।
0: जी। और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ऐसी बातें कि कहाँ से सीख मिली कि हमको ये काम करना चाहिए, हम जैविक खेती करें?
1: ये हम लोग समूह में भी जुड़े हुए हैं, स्वयं सहायता समूह, उसमें भी मिला और चिया के फोरम में भी जो ट्रेनिंग होता था उसमें भी हम लोग भाग लेते थे, वहाँ भी सीखने को मिलता था। तो हम लोग धीरे धीरे सुनते सुनते अपने से भी ये करने लगे कि इससे क्या फायदा है और हाइब्रिड से क्या फायदा है। हम लोग धान भी जो लगाते हैं
0: अच्छा।
1: उस श्री विधि से लगाते हैं, एक एक धान लगाते हैं ऐसे नाप नाप के, उसका पैदा और जो जनरल धान होता है उसका पैदा अलग हो जाता है, फर्क हो जाता है उसमें।
0: सही बात है। तो ये श्री विधि के भी जानकारी आपको वहीं से मिली, कृषि विज्ञान केंद्र से?
1: हाँ हाँ, वहीं से मिला है, चिया के फॉर्म से।
0: इस बार उत्पादन की क्या स्थिति है धान की?
1: धान बहुत अच्छा है।
0: अच्छा।
1: हाँ, बीज भी कम लगा और मेहनत भी कम लगा और उसका पौधा अभी बहुत सुंदर है, अब उसमें बाली निकलने वाला है।
0: वाह, तो बाली भी स्वस्थ निकलेंगे हमको
1: जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है।
0: और कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं आप कृषि विज्ञान केंद्र से?
1: ये तो लगभग 10 से ही ज्यादा हो गया जुड़े हुए,
0: वहाँ से जुड़े हुए 10 वर्ष से ज्यादा
1: हो गया।
0: और क्या क्या ट्रेनिंग अभी तक प्राप्त की आप?
1: मशरूम का भी ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए और गाय पालन का भी और ये बकरी पालन का, ये सारा चीज वहाँ
0: प्रशिक्षण दी गई।
1: दी
0: बकरी पालन के संबंध में क्या प्रशिक्षण दी गई आपको?
1: उसको बकरी के रख रखाव के लिए कैसे खाना देना है, कैसे बकरी को रखना है, समय समय से इंजेक्शन दवा
0: अच्छा।
1: हाँ, देना पड़ता है बकरी ज्यादा बीमार न हो।
0: ये सारी बातों को ध्यान रखने की बात है। और ये अन्य पशुपालन में?
1: गाय वाला, गाय का हम ट्रेनिंग लिए रांची में जाके।
0: वाह, रांची कहाँ पर?
1: पशुपालन में जो वहाँ गाय का जहाँ ट्रेनिंग होता है ना,
0: मत्स्य एवं पशुपालन विभाग।
1: हाँ हाँ। अच्छा। वही जाके ट्रेनिंग लिए थे।
0: अच्छा। तो ट्रेनिंग जाने के दौरान, प्रशिक्षण लेने के दौरान आपको क्या क्या भत्ता वगैरह भी दिया गया था?
1: हाँ, दिया गया था।
0: अच्छा। और क्या क्या सुविधाएं दी गई थी?
1: वही बताया गया कैसे गाय के खाना देना है, कैसे रखना है, कैसे समय समय से उसको भाई इंजेक्शन दवा बीरो के सब हुआ, कैसे चारा देना है,
0: कितना हरा है, क्या क्या दी गई आने जाने में?
1: आने जाने के लिए
0: भाड़ा वगैरह,
1: ठहरने
0: वहरने की व्यवस्था?
1: हाँ, वही व्यवस्था था, खाना पीना सारा चीज वही मिलता था।
0: ये तो हम बातें कर लिए प्रशिक्षण की। और निश्चित रूप से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो आपके गांव के और भी ग्रामीण महिलाएं होंगी जो इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं?
1: है, और बहुत सारा महिला लोग जुड़ गई।
0: और अब बाद में भी जुड़ी?
1: हाँ, बाद में भी।
0: अच्छा। और सब लोग अभी खेती बाड़ी कर रही?
1: हाँ, सब कोई कर रहा है अपना अपना, सब्जी का भी श्री विधि से लोग लगाता है।
0: अच्छा, सब्जियां भी आप श्री विधि से करती हैं?
1: जी जी, श्री विधि से भी करते हैं। हाँ, उसका माने प्रॉफिट ज्यादा होता है
0: श्री विधि का।
1: जी जी।
0: और अगर हम बात करें अनाज फसल की, तो अभी अनाज फसल में, अभी जो खासकर रवि में, तो अभी किसकी तैयारी करने जा रही?
1: अभी तो गेहूं लगेगा, चना लगेगा और मटर वगैरह, ये सारा चीज।
0: इस सब की तैयारी अभी हुई नहीं है?
1: नहीं, अभी तो खेत के जुताई करवा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: इसके
0: मतलब तैयारी शुरू है?
1: हाँ, शुरू है।
0: अच्छा, कितना जुताई करवाती हैं?
1: उसमें देखिए 3-4 बार जुताई होना चाहिए, खेत अच्छा सा बन जाता है तब तो फल अच्छा से उगता है, बीज अच्छा से निकले।
0: तो बीजों को उपचारित करती हैं आप?
1: जी, करते हैं।
0: अच्छा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बातें की थी प्रशिक्षण की, तो उसमें आप बता रही थी कि हम मशरूम की खेती करते हैं, मशरूम भी?
1: हाँ, मशरूम भी उगाते हैं।
0: अच्छा, तो मशरूम उगाने के लिए क्या क्या प्रशिक्षण में आपको क्या जानकारियाँ दी गई?
1: उसके लिए पहले वो चाहिए 5 kg का प्लास्टिक, उसमें भूसी को उबाल करके, अति धान का जो पुआल होता है ना, उसको कुटी को उबाल करके उसको नमी के सुखा के, मतलब सुखा के इसके बाद फिर 5 केजी की जो प्लास्टिक है उसमें भरते हैं, एक लेयर भूसी और दूसर का लेयर में वो मशरूम के दाना डलाता है, ऐसी कर कर के 5 लेयर तक भराता है।
0: अच्छा।
1: और पूरे प्लास्टिक को फिर भर के उसको मुंह पर बांध देते हैं, ऊपर में रबर लगा देते हैं और प्लास्टिक में किनारे किनारे छेदा कर देते हैं पेन से। हाँ, उसमें पानी देना रहता है अपने, फिर जब उग जाता है तो उसमें पानी किनारे किनारे और अच्छा से 3 टाइम देना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: सुबह शाम दोपहर। मशरूम बहुत अच्छा होता है।
0: तो इसका मतलब कि आप मशरूम भी उत्पादन कर रहे हैं?
1: जी।
0: तो कब कब करती हैं मशरूम उत्पादन?
1: मशरूम के खेती देखिए ज्यादा गर्मी में भी नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: और ज्यादा ठंडा में भी नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: अभी तो उसका होगा खेती।
0: अच्छा।
1: हाँ हाँ, अभी उसका समय है।
0: तो अभी आप बंद कर दिए हैं मशरूम की खेती?
1: हाँ, अभी थोड़ा सा बंद कर दिए हैं, काहे कि भूसा नहीं है कुट्टी।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसीलिए
0: उसके अभाव में।
1: उसके अभाव में अब जब धान होगा तब फिर।
0: अच्छा, धान होने के बाद फिर?
1: हाँ,
0: जब भूसा प्राप्त करेंगी तो फिर उसके बाद जो भी फसल अवशेष होंगे उसका इस्तेमाल करेंगी। अच्छा, फसल अवशेष की हम अगर बात करें आपसे, तो लोग जला देते हैं फसल अवशेष को खेतों में कहीं किनारे, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कैसे करती हैं?
1: उसको मतलब धान के जो पुआल होता है उसको हम लोग कटवा के इकट्ठा करते हैं खलिहान में। इसके बाद मशीन जो रहती है कुट्टी काटने वाला, उससे उसको कटवा देते हैं।
0: और भी फसल अवशेष की हम बात कर रहे हैं, और भी फसल कचरा वगैरह जो प्राप्त हुआ, जो भी जिसे कचरा कह लेते हैं, वो अवशेष जो होगी उसको क्या करती है? पलवार करके मने खेत में ही जोतवा देती है, क्या करती?
1: हाँ हाँ, वो खेत में जोता जाता है, खेत में आदमी जला भी देता है।
0: हाँ, तो लेकिन आप लोग जलाती है क्या?
1: नहीं, हम लोग
0: चूंकि
1: तो
0: जलाना नहीं है, जलाना नहीं, कभी नहीं चाहिए।
1: नहीं, हम लोग तो नहीं जलाते, हम लोग के मवेशी वगैरह घर में है ना, तो सब तो खाता ना है।
0: हाँ, और उसके बाद बाकी खेत में जुताई कर देती है।
1: हाँ।
0: और गेहूं के लिए अभी आप जो तैयारी करने जा रही हैं उसमें स्थानीय बीज या हाइब्रिड क्या इस्तेमाल करने जा रही हैं?
1: स्थानीय बीज, हाइब्रिड बहुत कम हम लोग नहीं ना उतना यूज नहीं करते हैं उसको।
0: वो भी स्थानीय?
1: जी।
0: और धान भी आप स्थानीय ही लगाई थी?
1: जी जी।
0: वाह, तो स्थानीय में क्या है, कौन सी किस्म की लगाई थी?
1: देखिए उसका नाम तो अभी याद नहीं है।
0: अच्छा, स्थानीय होने के कारण नाम याद नहीं है।
1: हाँ।
0: अच्छा, और यहाँ सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके गांव में मंजू जी?
1: अभी तो बारिश इस वर्ष बहुत अच्छा हुई है, तो अभी तो पानी है। इस वर्ष गेहूं का खेती ज्यादा लगेगा।
0: और पानी को रोकने रोकने की कोई व्यवस्था?
1: हम लोग तो ऐसे मतलब अभी कुआं से करवाते हैं। हाँ, बोर से भी पानी को उपलब्ध करते हैं।
0: मतलब पानी की स्थिति अच्छी है?
1: अच्छी है।
0: और सब्जियां की बातें हमने कर ही ली, सब्जियां की खेती आप करती हैं, मशरूम उत्पादन भी आप करती हैं, बड़े पशु भी पाले हैं। बड़े पशु में कौन कौन सी पशु हैं?
1: गाय है हमारे पास।
0: अच्छा, कितनी गाय है?
1: 8-10 गाय हैं।
0: अच्छा,
1: जो अभी कल एक गाय बच्चा दी है।
0: वाह। हाँ, तो दूध जो प्राप्त करती होंगी तो क्या करती हैं, घर में खपत हो जाता है या फिर उसको बिक्री करती हैं?
1: खाने भर रखते हैं, शाम वाला दूध, दिन वाला दूध बिक्री हो जाता है।
0: तो कहाँ बाजार बेचने के लिए जाते
1: हैं? हाँ, डाल्टनगंज।
0: अच्छा,
1: डाल्टनगंज जाता है।
0: बकरी पालन की हम आपसे बातें सुने कि आप बकरियां भी पालती हैं, तो कितनी बकरियां हैं अभी आपके पास?
1: अभी कुल बकरी मिला के 28 है, छोटा बड़ा सब मिलकर, जिसमें एक बड़ा बकरा रखे हैं और छोटा भी बकरा है साल भर के लमसम में, जो कि अभी दीपावली में वो सब बिक्री हो जाएगा।
0: अच्छा, और इसके देख रेख कैसे करती हैं आप?
1: आदमी रखे हैं।
0: आदमी भी रख ली हैं?
1: हाँ।
0: वाह, और वही सब देख रेख करते हैं?
1: जी।
0: तो और इसके टीकाकरण वगैरह का ख्याल?
1: हाँ, वो तो समय समय से देखना है, उसको नाक से पानी आने लगे तो भी करते हैं, डॉक्टर के पास फोन कर देते हैं और बुला के इंजेक्शन लगवा देते हैं, दवाई देते हैं और ये करते हैं, अजवाइन का धुआं लगाते हैं बकरी के।
0: अच्छा, उससे क्या होता है?
1: उससे सर्दी खांसी अच्छा होता है।
0: सर्दी खांसी मतलब अगर हो तो ठीक हो जाएगा?
1: ठीक हो जाता है।
0: अच्छा, स्वयं सहायता समूह की आप बात कर रही थी, तो स्वयं सहायता समूह से आपने क्या क्या ला लिया?
1: स्वयं सहायता समूह से लाभ यही है कि उसमें पैसा जो आता है, एक बार 1 लाख, एक बार 2 लाख, अब फिर 3 लाख, अभी 3 लाख वाला जो आया था, तो हम लोग पूरे सदस्य मिल के उसको निकाले हैं। अब सब कोई अपना अपना बंटवारा कर लिए, कहे कि खेती बाड़ी करने का समय है तो एक रुपये ब्याज पर वो पैसा मिलता है।
0: अच्छा।
1: और सब सदस्य लोग बांट बांट के ले लेते हैं और फिर उसका उसे अपन अभी खेती बाड़ी करेंगे और फिर धीरे धीरे करके वापस करना पड़ता है। इसी तरह से यही है समूह से फायदा। अभी कहीं दूसरे के पास लेने जाएंगे तो 10 रुपये से एकड़ मिलेगा, लेकिन समूह में 1 रुपये मिलता है, 1 रुपये से एकड़।
0: कृषि विज्ञान केंद्र है या क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है या आत्मा है जो आपका, तो आत्मा से आपने क्या लाभ लिया?
1: आत्मा से बीज मिलता है।
0: अच्छा, वहाँ से बीज प्राप्त करते हैं?
1: हाँ, मसूर सरसों यही, अभी तो इसी सीजन यही ना आया है मसूर लगाने का, सरसों लगाने का।
0: जी जी।
1: हाँ, गेहूँ लगाने का,
0: तो वहाँ से प्राप्त करेंगे।
1: हाँ।
0: और रही बात कृषि यंत्र की, तो कृषि यंत्र आपके पास तो होंगे ही। कृषि यंत्र जैसे धान कटाई का यंत्र हो गया, चाहे धान रोपाई का यंत्र हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का कृषि जैसे छिड़काव, कीटनाशी छिड़काव यंत्र हो गया, ये सब जो हो गया।
1: हाँ, वो सब तो गाय के पेशाब से हम लोग बनाते हैं समूह में,
0: वो बनाती हैं। लेकिन यंत्र अनुदान पर लिए हैं कि नहीं?
1: लिए हैं।
0: अच्छा, कौन सा यंत्र?
1: गाय लिए थे,
0: गाय ली थी ना। हाँ? लेकिन यंत्र की बात कर रहे हैं, मशीन। हाँ, की बात कर रहे हैं।
1: है, है, वो मशीन मिला था।
0: अच्छा। हाँ, कौन से मशीन?
1: उसका देखिए नाम तो याद नहीं है, लेकिन मिला था, 3 गो मशीन मिला था।
0: तो क्या कार्य करती थी उसे?
1: उसे दवा छिड़काव करते थे।
0: हाँ, वही कीटनाशी की बात।
1: हाँ,
0: कर
1: हाँ,
0: रहे
1: हैं। कीटनाशी।
0: और कौन मशीन?
1: बीज भी, जैसे बीहन वाला बीज होता है।
0: हाँ।
1: वो भी छांटने के लिए भी वो भी मशीन मिला था।
0: अच्छा। और
1: यही आत्मा से।
0: अच्छा। और
1: कोड़ाई के भी लिए।
0: अच्छा।
1: मिला था। हाँ,
0: तो ये सब अनुदान
1: दो तीन तरह के,
0: दो तीन तरह का प्राप्त किए थी, तो ये अनुदान पर मिला था या ऐसे ही दिया गया था?
1: ऐसे ही दिया गया था, उसमें पैसा वैसा नहीं लगा।
0: वाह, तो यानी सफल कृषक के नजरिए से वो दिया गया था खेती बाड़ी के लिए। जी,
1: जी।
0: वाह, बहुत सुंदर। तो आप हमारी महिला बहनों को क्या कहना चाहेंगी?
1: उन लोग भी इस तरह से सफल रहे। सारा काज काम में उस लोग भागीदारी ले और सफल वो लोग भी बने।
0: अच्छा, ये एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोई भी कृषि उत्पाद, जैसे आप किसी भी फसल की खेती कर रही हैं, तो उत्पाद प्राप्त करने के बाद आप उसको कहाँ बेचना उचित समझती हैं, बाजार में या फिर अपने गांव के छोटे छोटे मंडियों में कहाँ जाना चाहती हैं?
1: ऐसे तो आदमी पैदा कर ले रहा है लेकिन अच्छा से पैसा नहीं ले पाता है। लोग बोल देंगे कि ऐसा ही रेट है, तो वही रेट में देना पड़ जाता है।
0: लेकिन उचित लाभ आपको कहाँ, शहर जाकर के प्राप्त होता है?
1: शहर ले जाने में थोड़ा भाड़ा भी अलग लगता है और गांव में भी जो लोग जाते हैं वो तो भाड़ा वाड़ा नहीं लगना है, तो उसी पर जोड़ जाड़ के दे देते हैं कि चलिए उसको भी 2 पैसा बचे कहकर।
0: देखिए, आप चूंकि जैविक खेती करती हैं, आप जैविक खेती से सब्जियां उत्पादित करती हैं, धान तक उत्पादित करती हैं, गेहूं तक उत्पादित करती हैं आप, तो जैविक खेती से जो आप उत्पाद प्राप्त करती हैं उसका मूल्य और ऐसे दोनों में कितना अंतर पाती हैं आप? मतलब मूल्य कितना प्राप्त हो जाता है, इसकी मांग कितनी है जैविक खेती से जो सब्जियां उत्पादित करते हैं? तो
1: इसका तो ज्यादा मांग है।
0: अच्छा।
1: उतना पूरा नहीं सकेंगे, उतना मांग हो जाता है,
0: उस तरह की मांग हो जाती
1: जी,
0: है।
1: जी।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, सरकारी योजनाओं के लाभों एक महिला से बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार, और भेंट वार्ताकार थी श्रीमती मंजू देवी सिक्की पाटन पलामू से, और संयोजन एवं प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। तो समय हो चला है कि बहनों हम आपसे ले इजाज़त कार्यक्रम खेती बाड़ी से, तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और जाते जाते एक बार फिर से नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 हो चुके हैं और 7 बजे होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जुड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
1: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
1: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे रे, अरे कहाँ चल दिए?
6: NSV कराने।
1: पुरुष नसबंदी यानी NSV की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी रेलवे बोनस को मंजूरी। दिव्यांगजन पेंशन का दायरा बढ़ा। विकलांगता मानदंड 80 से घटाकर 40% किया गया। भाजपा के नवनियुक्त

0: पटेल वरिष्ठ नेताओं के साथ की अहम बैठक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामगढ़ के एकल विद्यालयों का किया दौरा, ग्रामीणों से संवाद कर बच्चों को बाल मजदूरी की अपील, ने सुरक्षा मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। 21 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी। और राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, रांची में आज खुले कई पूजा पंडालों के पट, धनबाद में हुआ मॉक ड्रिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दी है, जिस पर 2,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिव्यांगजन पेंशन के लिए विकलांगता का मानदंड 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है, जिससे 3,20,00,000 लाभार्थियों को मदद मिलेगी। साथ ही IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के बाद श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए राम मंदिर निर्माण कार्यों की सराहना की।
2: रोड की जाल जिसको कह सकते हैं, फोर लेन, सिक्स लेन, एट लेन योजना को कहीं पहुंचाया तो किसी ने, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव और घरों तक बिजली पहुंचा। तो ऐसे असंख्य काम उन्होंने किया, गरीबों को आना, गरीबों को घर, गरीबों को गैस कनेक्शन, गरीबों काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ के राजपेड़ा, ईटापुरी और बदायूं का, उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिए शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और बच्चों को राष्ट्रपति के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। राज्यपाल ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने और बाल मजदूरी से दूर रखने की अपील की। रांची में IMA झारखंड समेत डॉक्टरों के 10 प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलन शुरू किया है। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और आयुष्मान भारत योजना के बकाया भुगतान की मांग की है।
3: आज हमारे बच्चे बड़े होकर जब अपना क्लिनिक खोलने के लिए जाएंगे, अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में इतनी बुरी बुरी चीजें हैं तो आप खोल ही नहीं पाओगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे डॉक्टर्स को यहीं रहने दीजिए, हमारे डॉक्टर्स को राज छोड़ने पे मजबूर मत कीजिए। आज के दिन में आयुष्मान पूरे भारत में बहुत अच्छा कर रहा है। अब आयुष्मान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा बीच बीच में आते रहते हैं, उसको परमानेंट फिक्स करने के लिए कमेटी बनाए।
0: संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 21 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 अक्टूबर से राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार चार नए लेबर कोड जैसी ऐतिहासिक और दूरगामी परियोजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों को सुरक्षित

0: श्रमिकों और नियोक्ताओं के हित में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 नए लेबर कोड तैयार किए गए हैं। इन नए सुधारों से सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन मिलना सुनिश्चित हुआ है। साथ ही भत्तों को अधिकतम 50% तक सीमित करने से कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक पहल को देश का सबसे बड़ा श्रमिक सुधार बताया है।
1: हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे।
0: प्रधानमंत्री के श्रमेव जयते के संकल्प का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। धनबाद जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने लगा है। खासकर निजी और असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस बदलाव से बेहद उत्साहित हैं।
2: मेरा नाम आशीष सिंह है। कई चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो पॉइंट आउट की गई हैं, जिनका सीधे तौर पर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जैसे ग्रेच्युटी की मिल रही है कि जो पहले ही 5 साल में होता था, अभी कर्मचारी 1 साल में ही ग्रेच्युटी उनको मिलने लगेगा।
3: मेरा नाम भरत है। केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को कंपाइल करके 4 नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए हैं। नए लेबर कोड के तहत सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को न्यूनतम वेतन, समान वेतन, PF और SI का लाभ दिए जाने जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
0: धनबाद की कोल इंडिया अनुषंगी इकाई BCCL जैसे बड़े संस्थानों में इसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है, ताकि किसी भी मजदूर के हितों की अनदेखी ना हो। कुल मिलाकर पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर लाए गए इन नए लेबर कोड्स ने न सिर्फ काम की परिस्थितियों को सुधारा है, बल्कि देश के करोड़ों श्रम वीरों के जीवन को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए धनबाद से दीपक कुमार पांडे के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
4: राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। राजधानी रांची में आज चतुर्थी पर कई पूजा पंडालों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उधर धनबाद पुलिस लाइन में सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कर भीड़ नियंत्रण का पूर्वाभ्यास किया गया। सिटी SP ने बताया कि सुरक्षा के लिए जिले में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
5: मेजर पर्व त्यौहार वगैरह के पहले हम लोग इस टाइप का मॉक ड्रिल वगैरह करते हैं, ताकि कोई भी अनहोनी घटना या कोई भी अप्रिय घटना होने से रोकी जा सके। जिला पुलिस हर तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं, खुद स्वयं रोड पे निकल के जहाँ जहाँ पूजा पंडाल वगैरह है उसका स्वयं निरीक्षण किया गया है। तो हम लोग हर समय क्या होता है, एकदम तत्परता के साथ यहाँ पे सुदृढ़ रूप से जुटे हुए हैं, ताकि जो दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है, पर्व है, वो बिल्कुल पीसफुल ढंग से और बिल्कुल शांति के साथ निकाला जा सके।
4: और अब मौसम का हाल। राज्य के 4 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। आज कोडरमा में सर्वाधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम 16.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी रेलवे बोनस को मंजूरी। दिव्यांगजन पेंशन का दायरा बढ़ा। विकलांगता मानदंड 80 से घटाकर 40% किया गया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश पटेल वरिष्ठ नेताओं के साथ की अहम बैठक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामगढ़ के एकल विद्यालयों का किया दौरा। ग्रामीणों से संवाद।

0: याद कर बच्चों को बाल मजदूरी से दूर रखने की अपील की। रांची में डॉक्टरों के 10 प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने सुरक्षा मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। 21 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी। और राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। रांची में आज खुले कई पूजा पंडालों के पट। धनबाद में हुआ मॉक ड्रिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे चुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
2: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
3: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
2: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
3: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
2: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
2: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
2: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
2: और लड़के की 21 वर्ष है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:11 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम जिले में आजकल। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। नवरात्र के अवसर पर हर तरफ भक्ति की धारा बह रही है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र से आए पुनेरी ढोल के द्वारा गजब का समा बांधा गया। नवरात्र के अवसर पर रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है, जहां दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में नवाहन परायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। संध्या समय चित्रकूट से आए संतों के द्वारा प्रवचन भी किया जा रहा है। लोग अपने घरों में कलश स्थापना कर देवी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। लोहरदगा में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोचिकित्सक ने बताया कि बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन होने लगे तो परिजनों को चिकित्सकों से अवश्य मिलना चाहिए। मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव सहाय ने कहा कि
2: फिजिकल हेल्थ के बारे में लोग बात किया करते कि फिट होना जरूरी है। जो इंसान फिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बीमारी है, लेकिन फिर भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करके फिट रहता है। जैसे मेंटल हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। आपका स्ट्रेस होने पे कैसे हैंडल करना है वो चीज़ अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होने पे कैसे उसको हैंडल करना है, जो रेजिलियंस हम लोग बात करते हैं, वो चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ इज दैट, आपका फोकस रहना चाहिए कि आपका मेंटली हेल्दी रहिए, आप फिट रहिए मेंटली।
1: लोहरदगा जिला में शहीद SP अजय कुमार सिंह की याद में अजय उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन हुआ। मौके पर लोगों ने शहीद SP की कृतियों की चर्चा की और कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इस मौके पर लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
3: जिस काम के लिए जो नक्सलवाद के प्रति उन्होंने लड़ते हुए अपना प्राणों को न्यौछावर किया, आज आप लोग देख रहे हैं कि 26 साल बाद जिस चीज की जिस लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसके 26 साल बाद न केवल हम लोगों का लोहरदगा जिला बल्कि पूरा राज्य और पूरा देश आज नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। और इसके लिए मैं तमाम जो अजय सर ने जिस संकल्प को लिया था, उस लड़ाई में लड़ते हुए जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी है, जितने लोगों ने संघर्ष किया है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ।

0: इधर रुके हैं जहां, लेकिन जो भी समस्या के समाधान है, फोन नंबर भी हो सकेला प्रतिनिधि है या जितना लोग सबको जान पहचान आवे रोड के बारे होलक, हम वीडियो साहब के बोली आप प्रतिनिधि आप एक आवेदन बना के भेजिए, चाहे डीएफटी फंड होता है या कहीं से भी उपाय होता है, हम लोग के प्रयास करेंगे कि आगे काम हो।
1: लोहरदगा जिला में एसआईआर का काम जारी है, विभिन्न मतदान केंद्रों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
2: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं ओह माई गॉड इस फिल्म के गीत से। आवाज़ें मीका सिंह और श्रेया घोषाल की है। गीत केवल शबाब साबरी के हैं और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया।

अगला गाना हमने लिया है राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर की है और गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

राधा का संगम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत के बोल हजरत जयपुरी के थे। संगीत दिया था अनु मलिक ने। और अब आइए सुनते हैं क्रांति। इस फिल्म से आवाज़ें महेंद्र कपूर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की है। गीत के बोल मनोज कुमार के हैं और फिल्म का नाम है क्रांति।

महेंद्र कपूर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर ऋषि से ली गई भेंटवार्ता जो कि रांची के हैं। विषय है फैटी लिवर उपचार एवं सावधानियां। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: नमस्कार मित्रों, बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां निकलकर सामने आ रही है और हमारी जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित कर दे रही है। एक ऐसे ही बीमारी है फैटी लीवर की। 10 में से लगभग 7-8 लोग फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है और ख़ासकर जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, अल्कोहल लेता है, उसे ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो भी फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों इस तरह की बीमारी आजकल हो जा रही है और समय रहते हैं इसका हम उपचार कैसे करें, और सबसे अच्छी बात कि हम सावधानियाँ क्या क्या रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर साहब स्वागत है
2: जी। नमस्ते
1: डॉक्टर साहब, ये फैटी लीवर क्या है और ये कॉमन क्यों होता जा रहा है?
2: जी, ऐसा है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप अपने प्रैक्टिस में 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो उसमें 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको Grade 1, Grade 2 या Grade 3 फैटी लीवर आ रहा है। तो ये आम चिकित्सकों के लिए एक बहुत पैनिक सा कंडीशन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस पे गहन अध्ययन करते हैं और इस पे अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्यतः जो लीवर की समस्या होती है वो पहले अल्कोहल के कंजप्शन से होती थी। अल्कोहल लेने से लीवर में सूजन आ जाता था जिसे हम लोग फैटी लीवर बोलते थे, जिसको बोलते थे अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हुआ है। तो इसका मुख्य कारण है और वो है आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, आपका रहन सहन, आपका फूड हैबिट्स। तो जब हम ये देखते हैं कि आज के डेट में लोग फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे आश्रित हो गए हैं, सीजनल फूड नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, तो इस वजह से आपका जो फैटी लीवर है वो धीरे धीरे आमजनों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसा देखते हैं कि आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये काफ़ी बड़ा है, तो 5 से 10 सालों में लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप रात को सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर दिन में आप फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो वो कंडीशन और पैनिक हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिक को अगर ठीक करेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आहार विहार को ठीक करेंगे तो हम फैटी लीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
1: मतलब हमारी जो बदलती जीवन शैली है या यूँ कहें बिगड़ती जीवन शैली है वो बहुत हद तक इस फैटी लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है।
2: जी बिल्कुल,
1: हमारे खाने पीने उठने बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, हम रात तक जगे रहते हैं जैसा आपने बताया, जब मन किया सो लिया, जब मन कर लिया खा लिया, और खाना भी कैसा, वो तैलीय पदार्थ, और ये हमारे लीवर को रोगग्रस्त कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसका पहचान क्या है और समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है। तो जैसे ही फैटी लीवर स्टार्ट होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है तो लोग को लगता ही नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक स्टेज बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो ये एक दिक्कत सी कंडीशन, अगर स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है, Grade 1 ही है, तो अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन की दवाइयों में आपकी फैटी लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, जैसे LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि आपकी लीवर का साइज़ वगैरह क्या है। साथ में अगर हम CBC करा लेते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं तो ये कुछ छोटा सा टेस्ट है, इससे अगर आप चाहें तो निरंतर करने रहने से हम लोग फैटी लीवर को बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता है।
1: और यदि लक्षण दिखने लग जाते हैं, यदि हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ये सारी जो रूटीन टेस्ट है नहीं कराते हैं, तो फिर लक्षण क्या दिखने लग जाते हैं इसके?
2: हाँ, लक्षण में क्या है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पैर में सूजन आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीवर का फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी पाचन शक्ति वो कमज़ोर होने लगेगी। और लीवर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो सार भाग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडीज़ को मिलता है। और एक लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो डाइजेशंस है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको आलसीपन आने लगेगा, फिर आपके पैर में सूजन होने लगेगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचने लगेगा। तो ये सारी समस्या आपके फैटी लीवर्स की आती है।
1: डॉक्टर साहब, यदि शुरुआती लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं

0: या हमने रूटीन टेस्ट कराया और मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है, तो फिर इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
1: देखिए, आज हम आज के इस सेशन में मैं यह बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लीवर की समस्या इज़ इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद पे आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और आयुर्वेदिक कुछ औषधियों से 100% ठीक होता है। तो इसमें एक आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अगर हम विरेचन लेते हैं, जो कि एक पंचकर्म का प्रोसेस है, तो विरेचन से आपका लीवर खुद डिटॉक्स हो जाता है, मतलब वो शुद्धिकरण हो गया लीवर का, और उससे आपकी लीवर की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। और उसके बाद कुछ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ अगर अपने वैद्य से या चिकित्सक की सलाह से जो भी वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुनर्नमा से बनी हुई चीज़ें हो गई, भुई आंवला से बनी हुई चीज़ें हो गई, भृंगराज से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये जो चीज़ें जो हमारे आसपास ये मिलती भी हैं ये चीज़ें, तो इसका सेवन करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऋतु शोधन, कि हर शरद ऋतु में अगर हम एक विरेचन ले लेते हैं तो हमसे लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ वो ख़त्म हो जाएगी और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे
0: जी। और यदि फैटी लीवर की समस्याएं ज़्यादा हो गई है तो फिर उपचार किस प्रकार किया जाता है और कितना वक्त इसमें लग जाता है?
1: हाँ, अगर आप लीवर की समस्या से ग्रसित हो गए तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें, वो एक आपको एक प्लान बना के देंगे कि कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, आहार विहार को ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि लेंगे और साथ में पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आने वाले 3 महीने में अगर आपका लीवर बहुत डैमेज हो गया, मतलब आप ऐसे 3 स्टेज हम लोग देखते हैं, पहले फैटी लीवर, और फैटी लीवर को अगर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस से वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सिरोसिस से फाइनली वो लीवर कैंसर में मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है,
0: मतलब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है।
1: हाँ, क्योंकि अगर हम फैटी लीवर्स में ही कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर का एक अपना ऐसा गुण होता है कि वो लीवर के सूजन्स को कम करने के लिए लीवर उसमें एक स्कार बनाता है, मतलब कि उसके चारों तरफ एक छाया, मतलब उस पर एक दाग आता है, और दाग आने से लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मतलब टफ होते जाता है, हार्ड होते जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है, लीवर का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और वो धीरे धीरे लीवर फेल्यूर की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर वो हम लोग लीवर फैटी लीवर को एक सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए।
0: डॉक्टर साहब, हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, तो शुरुआत से ही हम अपने खान पान को सुधार कर रखें, अच्छी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें, बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित रखें, तो किस प्रकार कौन कौन चीज़ों का सेवन किया जाए और किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए?
1: बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें होल ग्रेन्स पे डिपेंड होगा, आजकल मल्टी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं तो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल सब्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें वैसे आर्टिफिशियल जो चीनी है या आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा, और जितनी भी घर से बनी हुई पदार्थें हैं उस पर डिपेंड होना होगा। और आज हमारे जो पंत प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसके लिए हमें अपने खान पान में तेल और घी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आने वाले समय में जो फैटी लीवर से लोग पैनिक हो रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमें मुख्यतः अपने घर की चीज़ों पर आश्रित होना होगा, मल्टी ग्रेन्स पर आश्रित होना होगा, तेल कम करना होगा, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें कम लेनी होगी, जो स्टार्च रिच फूड है उसे कम करना होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा लीवर काफ़ी अच्छा रहेगा।
0: अपने खान पान का यदि हम सही तरह से ध्यान रखते हैं, घर की बनाई हुई चीज़ों का हम सेवन करते हैं और बाहर का फास्ट फूड को हम ना भूलें, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम तेल का कम से कम धीरे धीरे तेल का उपयोग कम करें, कम तेल का इस्तेमाल करें, आज से ही शुरू करें, तो इन सारी बीमारियों के साथ साथ और भी जो अन्य बीमारियां हैं, फैटी लीवर से हम मुक्त हो पाएंगे और साथ साथ मोटापा भी हमें घेर नहीं पाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर पूरा परिवार फिट रहेगा।
1: आप अपना दिनचर्या ठीक करें, योग प्राणायाम और अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम से, दोपहर का खाने टाइम से, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, तो ये सारे काम अगर आप स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी तो आपको लीवर की समस्या होनी नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषि, आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में आए, बड़ी अच्छी आपने चर्चा की फैटी लीवर के बारे में। और मित्रों, आज से ही तेल का सेवन कम कर दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे।

0: परिवार स्वस्थ रहेगा। नमस्कार,
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋषि से ली गई भेंटवार्ता, विषय था फैटी लीवर उपचार और सावधानियां। इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। इसी भेंटवार्ता के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी अब यहीं पे समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। हमारा अगला प्रोग्राम

लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं गोपी फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल राजेंद्र किशन के हैं, संगीत दिया है कल्याण जी।

चले इस फिल्म से आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक, जसविंदर नरूला और साथियों की है। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत दिया है नदीम।

अब आइए सुनते हैं साजन चले ससुराल। इस फिल्म से आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब आइए सुनते हैं आज इस फिल्म से। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और चंदना दीक्षित की है। सुधाकर शर्मा के बोल हैं, संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है। और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्व

0: महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
1: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: समझ के सिर्फ बचाएंगे नहीं,
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
4: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
6: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद मनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
5: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
7: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
5: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
8: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
3: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Velkumar wins silver medal in men's 1,000-meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, fourth T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The approval also includes renaming of the scheme and its sub-schemes, along with revisions to the eligibility criteria, coverage and rates of assistance for disability pension beneficiaries. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. He said the benchmark disability criterion for eligibility will be reduced from 80% to 40%.
10: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
9: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given the nod to the strategic restructuring of IDBI Bank.
11: IDBI key strategic restructuring.
10: A decision has been taken to undertake the strategic restructuring of IDBI Bank. As India continues to grow rapidly, there is a significant need for growth capital. We need more institutions that can provide growth capital and support micro, small and medium enterprises. Therefore, a strategic partner has been selected for IDBI Bank. With the support of this strategic partner, fresh capital will be infused into the bank. This decision has paved the way for what could be the largest FDI in India's financial service sector.
11: Largest FDI aane ka madhyam is nirnay se ban.
9: Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance.
10: The cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
11: 2,009 crore rupees ka total bonus hai.
9: Prime Minister Narendra Modi today reaffirmed India's commitment to building a constructive and forward-looking strategic partnership with Canada aimed at delivering tangible benefits to the people of both countries. Mr. Modi met Canadian Foreign Minister Anita Anand in New Delhi and reviewed ongoing efforts to strengthen bilateral relations. During the meeting, the two sides discussed enhancing cooperation in key areas, including trade, technology, security, energy, education, and people-to-people exchanges. The Prime Minister emphasized the need to sustain the momentum in bilateral engagement and translate it into concrete outcomes, including the early conclusion of negotiations on a comprehensive economic partnership agreement. Earlier in the day, the Canadian Foreign Minister held talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Singh in the national capital. India has strongly condemned the recent attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia. Briefing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, which took place in the West Asian country yesterday. He described such acts as totally unacceptable and called for an immediate end to them.
4: There have been a string of attacks in Saudi Arabia, and we have condemned those attacks. Yesterday also there was attack on Aramco headquarters. We condemn all such attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia. We feel that such attacks need to cease immediately. They are totally unacceptable. We stand in solidarity with the people and government of Saudi Arabia in defense of their sovereignty, and we hope there is return to peace and normalcy in the region soon.
9: Meanwhile, the Indian Embassy in Riyadh today urged all Indian nationals to continue to follow local authorities' instructions, stay indoors in case of aerial attack, and refrain from circulating videos or news related to ongoing events in view of the current situation in Saudi Arabia. The central government has notified amendments to the India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement, introducing a principal purpose test to prevent the misuse of treaty provisions for tax avoidance and evasion. Under the revised agreement, tax treaty benefits may be denied if obtaining such benefits is found to be one of the principal purposes of a transaction or arrangement. This is Akashvani giving you the news.
12: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
9: Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing their concerns. Former member of Niti Aayog, Professor Ramesh Chand, will chair the panel. The constitution of the committee follows the decisions taken during a meeting of representatives of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra with the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. We have a report.
13: The committee will examine the demand for an increase in remunerative returns to sugarcane farmers, taking into account cultivation cost and other relevant factors. It will also examine the demand for revision of the ex-mill minimum selling price of sugar in the context of sugar production costs, market realizations, and the financial viability of sugar mills. Other key areas of examination will include existing mechanisms for testing and reporting sugar recovery and prevailing sugarcane weight mill practices at sugar mills. With Anand Kumar, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
9: Prime Minister Narendra Modi has said India's civilizational journey has been shaped by centuries of cultural exchange and the sharing of knowledge across borders. Mr. Modi made the remarks in a written message delivered at the inaugural session of the three-day international conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today. The Prime Minister's message was read out by Culture Secretary Vivek Agarwal at the conference. Mr. Modi highlighted the role of ancient centres of learning such as Nalanda in promoting the exchange of knowledge between India and other parts of the world. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like Pradhan Mantri Sangrahale.
14: Pradhan Mantri Sangrahalaya, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in 2022, highlights the contributions of all the prime ministers to the nation's development. The museum showcases how Indian democracy has provided opportunities for leaders from every section of society to contribute to nation building. Spread across two buildings, the modern digital museum offers visitors an insight into India's political history, democratic traditions, and journey of development. The Sangrahalaya features a light and sound show titled Viranganaon Ki Mahagatha, which narrates the inspiring stories of valiant women warriors who fought to uphold the nation's pride. Inaugurating the Pradhan Mantri Sangrahalaya, Prime Minister Narendra Modi described the museum as a living symbol of the shared heritage and collective contributions of all governments.
6: Desh aaj jis unchai par hai, wahan tak usse pahunchane mein swatantra Bharat ke baad pratyek sarkar ka yogdan hai. मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है. आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है.
14: During his visit to the Pradhan Mantri Sangrahalaya, Justice S. Turai Raja of Sri Lanka shared his reflections on India's democratic journey and the leadership that has shaped the nation.
15: We came to Delhi on the invitation of the Chief Justice of India, and it's a surprise call from the esteemed establishment to visit them. The people are very nice, the organizers are superb, the directors and the cheerful

0: children, those who are guiding us, and ASTA is in a different level. And I don't feel like going, but wish to come back again.
1: Located at Teen Murti Marg in New Delhi, the Pradhan Mantri Sangrahalaya inspires the younger generation by showcasing the vision, leadership and contributions of all the Prime Ministers. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi will launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh tomorrow through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Maharashtra has declared 305 of the state's 358 talukas drought hit, covering more than 85% of the state's talukas following the addition of 40 more talukas to the list. Speaking to reporters after a state cabinet meeting in Mumbai today, Chief Minister Devendra Fadnavis said each farmer in the affected areas will receive initial financial assistance of 5,000 rupees directly into their bank accounts before Diwali. The Pension Regulatory and Development Authority and NPCI Bheem Services Limited have launched Tatkal NPS on the Bheem Payments app. The new feature allows eligible citizens to open a National Pension System account in just 3 steps using existing bank-verified KYC and UPI, eliminating the need for branch visits or fresh paperwork. India's Anand Kumar Velkumar won a silver medal in the men's 1,000-meter sprint category at the World Skating Games being held at Asuncion in Paraguay. The Tamil Nadu skater missed out on a chance to win gold by a narrow margin of 4 milliseconds. Earlier, he won bronze in the 500-meter sprint. In men's cricket, West Indies have set a target of 248 runs for hosts India in the 4th T20 International in Hyderabad. Earlier put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, India were 24 for no loss in 1.5 overs when reports last came in. The hosts are leading the 5-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in the 30-20. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Velkumar wins silver medal in men's 1,000-meter sprint at World Skating Games in Paraguay. That is all in the news at 9. Good night.
3: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Neetika Tyagi. काबीना ने समाजी मदद से मुतालिक कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 बरस जारी रखने को मंजूरी दी है। उसने माजूरी पेंशन के मुस्तफिदीन के लिए अहलियत की शराइत और इमदाद की शरहों में भी नजरसानी की है। हुकूमत ने आईडीबीआई बैंक की अहम तंजीमें 9 और रेलवे मुलाजिमीन के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ कलीदी शराकतदारी के भारत के अज्म का इयादा किया है। दोनों मुमालिक ने तिजारत, तवानाई और सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत ने सऊदी अरब में सिविल बुनियादी ढांचे पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। उसने इन्हें फौरन रोके जाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र ने 305 तालुकाओं को कहत से मुतासिरा करार दिया है। उसने दिवाली से पहले हर किसान के लिए 5,000 रुपए की इब्तदाई मदद का ऐलान किया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में वर्ल्ड स्केटिंग गेम्स में मर्दों की 1000 मीटर स्प्रिंट में चांदी का तमगा जीता है और मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 4th T20 बैन अल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। مرکزی کابینہ نے سماجی مدد سے متعلق قومی پروگرام کو 2026-27 سے 2030-31 تک مزید 5 برس تک جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ اس پر 53,428 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اس نے معذوری پینشن مستفیدین کے لیے اہلیت کی شرائط اور امداد کی شرحوں میں نظانی کی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی

0: फायदा होगा। उन्होंने कहा कि माजूरी पेंशन स्कीम के तहत अब मुस्तफिदीन के लिए 79 साल की उम्र तक 375 रुपये और 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लिए 625 रुपये होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि बुजुर्ग शहरियों और बेवाओं के लिए पेंशन स्कीमें उनके कुनबे को फायदे की स्कीम के साथ इसी तरह जारी रहेंगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिजेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: काबीना ने आईडीबीआई बैंक की अहम तंजीमें 9 को भी मंजूरी दी है। मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि भारत सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तंजीमें 9 शुदा इदारे में मुश्तरका तौर पर 34% हिस्सेदारी रहेगी। मरकजी काबीना ने 11,40,000 से ज्यादा अहल रेलवे मुलाजिमीन के लिए को तस्लीम करते हुए 78 दिन के कारकर्दगी से मुंसलिक बोनस को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये बोनस त्योहारों से पहले अहल रेलवे मुलाजिमीन को सालाना तौर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल भी 78 दिन की उजरत के बराबर ये रकम गैर गजट रेलवे मुलाजिमीन को दी जाएगी।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: 78 दिन के लिए हर अहल मुलाजिम को दिया जाने वाला ज्यादा से ज्यादा बोनस 17,951 रुपए है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी की जानिब से आईडीबीआई बैंक की स्ट्रेटेजिक तंजीमें 9 की मंजूरी के साथ ही आज भारत की इस्लाहाती पेशरफ्त ने नया संगे मील उबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत अब बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए बैंक की तरक्की के अगले मरहले की राह हमवार कर रही है, जबकि बैंक में अपनी अकलियती हिस्सेदारी बरकरार रखेगी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस काम से न सिर्फ बैंकारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी बल्कि बैंकारी खिदमात को आलमी मेयार से भी आगे ले जाने में मदद हासिल होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक तामीरी और कलीदी शराकतदारी की खातिर भारत के अजम का इरादा किया है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के अवाम को वाजह फवायद फराहम करना है। जनाब ने नई दिल्ली वजीर खारिजा अनिता आनंद से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के सिलसिले में जारी कोशिशों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने तजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राब्तों समेत अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने बाहमी राब्तों में मजबूती की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये ठोस नतायज में तब्दील होने चाहिए, जिनमें जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा CEPA के सिलसिले में बातचीत जल्द मुकम्मल होना शामिल है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी नजरियात का तबादला किया। इससे कबल दिन में कनाडा की वजीर खारिजा ने कौमी राजधानी में वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुनरमंदी के फरोख और कारोबार के वजीर मुमलिकत जयंत सिंह से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की मौसीकी, रक्स, सिनेमा और खान पान में मुआशरों के साथ मुल्क के मुसलसल राब्ते का अहम वसीला है और जोर देकर कहा है कि मुल्क के सकाफती विरसे को आलमी सतह पर ज्यादा से ज्यादा तस्लीम किया जा रहा है। वजीर आजम ने आज नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के सकाफती राब्तों से मुतालिक 3 रोजा बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में एक तहरीरी पैगाम में ये बात कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, तवानाई के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सकाफती विरसे को तहफ्फुज़ फराहम करना और पानी की यकीनी फराहमी में इजाफा करना है। इस मौके पर वो इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम लेह में कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा नई मुसाफिर टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के

0: 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आगे भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सम्त मुसलसल काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसी पहलों के जरिए इस नजरिए को किस तरह हकीकी शक्ल दी जा रही है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह किया था। ये म्यूजियम मुल्क की तरक्की में सभी वज़राए आजम के तआवुन को उजागर करता है। मरकूजा म्यूजियम ये दिखाता है कि कैसे भारतीय जमहूरिया ने मुआशरे के हर तबके से आने वाले रहनुमाओं को मुल्क साजी में तआवुन करने के मौके फराहम किए हैं। दो इमारतों में फैला ये जदीद डिजिटल म्यूजियम यहाँ आने वाले लोगों को भारत की सियासी तारीख, जमहूरी रवायात और तरक्की के सफर से रोशनास कराता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे तमाम हुकूमतों के मुश्तरक तआवुन और मुश्तरक विरसे की जीती जागती अलामत से ताबीर किया था।
2: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
1: आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया है और मगरबी एशियाई मुल्क में हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कल आरामको हेडक्वार्टर पर हुए हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत शहरी बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की मजम्मत करता है और उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत मुल्क के इख्तदारे के दिफा के सिलसिले में सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत उम्मीद करता है कि खित्ते में जल्द अमन और मामूल के हालात बहाल होंगे। इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से कौमी राजधानी में सूरत हाल पर हालिया रायजनी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जनाब जायसवाल ने इस तशवीश को गैर जरूरी और नाकाबिले कबूल करार दिया। आज रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने सभी भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो मुसलसल मकामी हुकाम की हिदायत की पाबंदी करें, फजाई हमले की सूरत में घरों के अंदर रहें और सऊदी अरब में मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में किसी वीडियो या खबर को शेयर करने से गुरेज करें। रियाज में शाह खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर परवाजें अब भी मुअत्तल हैं। महाराष्ट्र में रियासत के कुल 358 तालुकाओं में से 305 तालुकाओं को सूखे से मुतासिर करार दिया गया है। सूखे से मुतासिर इलाकों की फेहरिस्त में मजीद 40 तालुके के इजाफे के बाद सूखे से मुतासिर तालुके की तादाद मजमूई तौर पर 85% हो गई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि मुतासर इलाकों में किसानों को दिवाली से पहले इब्तदाई इमदाद के तौर पर 5,000 रुपये बराह रास्त उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। साल 2015 से 2024 के दरमियान भारत में तपेदिक टीबी के नए केसेस में आलमी सतह पर 12% की कमी के मुकाबले 21% की कमी दर्ज की गई है। आलमी इदारा सेहत की आलमी टीबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी के इलाज से मुतालिक कवरेज 92% तक पहुंच गई है, जबकि आलमी सतह पर ये कवरेज 78% है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
3: भारत में टीबी के केसेस में कमी से मुल्क भर में टीबी की रोकथाम और कंट्रोल से मुतालिक पहलुओं को मुस्तहकम करने के लिए अवामी सेहत से मुतालिक मुसलसल अकदामात मजबूत अवामी शिरकत और अहदबस्तगी की अक्कासी होती है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 28 करोड़ से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा अफराद टीबी की रोकथाम से मुतालिक इलाज हासिल कर चुके हैं और 5,70,000 नए निक्षय मित्राज इस पहल से जुड़े हैं। टीबी को जड़ से खत्म करने से मुतालिक कौमी प्रोग्राम के तहत सेहत के तमाम अवामी मराकज और निजी मराकज पर टीबी की मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज से मुतालिक खिदमात फराहम की जाती है। नई दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर दिया है कि भारत और आसियान के दरमियान एक पुरमन मुस्तहकम और आजाद भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक वाज़े मफादात मुश्तरक हैं। जनाब सिंह आज नई दिल्ली में आसियान इंडिया दिफाई थिंक टैंक फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के भारत बहरुल काहिल विजन में मरकजी हैसियत रखता है और भारत की मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की पॉलिसी जनूब मशरकी एशिया के साथ मिलकर काम करने से मुतालिक एक तवील मुद्दती अहद है। फोरम के लिए अमली इकदाम का जिक्र करते हुए जनाब सिंह ने बहरी सलामती, कुदरती आफात से निमटने, साइबर खतरात और फरोग पाती टेक्नोलॉजीज पर एक मुश्तरका भारत आसियान रिसर्च एजेंडा वजा करने की तजवीज पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में मुनक़िद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीत कर तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर है। भारत के अनंत कुमार वेलकुमार ने पराग्वे के आसनसियो शहर में जारी आलमी स्केटिंग मुकाबलों के मर्दों के 1000 मीटर स्प्रिंट जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। तमिलनाडु के स्केटर बहुत कम फर्क से सोने का तमगा जीतने से चूक गए और दूसरे मकाम पर रहे। 1000 मीटर स्प्रिंट मुकाबले में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मुकर्ररा दूरी 1 मिनट और 21.922 सेकंड में तय की। सोने का तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ी और आनंद कुमार के दरमियान वक्त का फर्क सिर्फ 4 मिलीसेकंड रहा। मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में खेले जा रहे चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 248 रन का निशाना रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज के कप्तान ने 102 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 4 ओवर्स में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। काबिना ने समाजी मदद से मुतालिक कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 बरस जारी रखने को मंजूरी दी है। उसने माजूरी पेंशन के मुस्तफिदीन के लिए अहलियत की शराइत और इमदाद की शरहों में भी नजरसानी की है। हुकूमत ने IDBI बैंक की अहम तंजीमें 9 और रेलवे मुलाजिमीन के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ कलीदी शराकत दारी के भारत के अजम का इयादा किया है। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई और सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत ने सऊदी अरब में सिविल बुनियादी ढांचे पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। उसने इन्हें फौरन रोके जाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र ने 305 तालुकाओं को कहत से मुतासिर करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन अल अक्वामी मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश का नंबर वन मनोरंजन रेडियो चैनल। आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद होगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्मों में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं बातें भानु अथैया की।

आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अथैया का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म ब्रह्मचारी का, आखिर ये माजरा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उस थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो जीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सकें।

भानुमती का विवाह सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक कवि और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी फिल्म CID के जरिए।

इसकी बात तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थीं। फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गईं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती अदिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

भानु अथैया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर, सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे। लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनैलिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी, घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेरबदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानु अथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए रंग के कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानु अथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था, कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक ठसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानु अथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथावस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानु अथैया का।

भानु अथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में सीआईडी, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थीं भानु अथैया ने, और लोग कह उठे।

0: भानु अथैया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि की कमाल की पोशाकें तैयार की।
1: तो

सन 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित, लेकिन

0: फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीना तमान ने जो पोशाकें पहनी थीं, वो भी भानु अथैया की ही डिजाइन की हुई थीं।
1: सर,

साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंती माला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साड़ियां वैजयंती माला के लिए चुनी गईं। जरा इस गाने को याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जयकिशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता मंगेशकर।

फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो या फिल्म मेरा नाम जोकर, इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था।

अब फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती बन गई थी। इसके बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खासतौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी।

आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। भानु अथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ से कम नहीं है।

15 अक्टूबर साल 2020 भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थीं। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई, पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा या चौधरी का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज के केंद्रित था ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं दिल तुझको दिया। इस फिल्म के गीत से लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेश रोशन के गीत और संगीत है।

आपके साथ। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं हकीकत इस फिल्म से। लता मंगेशकर की ही आवाज़ है, इंदिवर के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आ जाइए, हम सुनते हैं एक ही फनकार के कुछ गाए, मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, आज के एक ही फनकार में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी पर के गाए कुछ फिल्मी गीतों को। श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक थे। उनकी आवाज़ की विविधता और कमान ने उन्हें 4 दशकों तक संगीत जगत का बेताज बादशाह बनाए रखा।

दोस्तों 24 दिसंबर 1924 से 31 जुलाई 1980 तक वे हमारे बीच रहे। आपको हम बता दें दोस्तों कि परिवार में उन्हें प्यार से फीकू कहा जाता था। उन्होंने लाहौर में उस्ताद अब्दुल वाहिद खान पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत सीखा।

गौरतलब है दोस्तों कि उन्होंने 1941 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच से अपना पार्श्व गायन सफ़र शुरू किया। उन्होंने रोमांटिक गानों, देशभक्ति गीतों, कवालियों और गज़लों, भजनों और शास्त्रीय संगीतों समेत कई गीतों यानी कि 25,000 से भी अधिक गाने गाए।

दोस्तों, रफ़ी साहब के पास अपनी आवाज़ को पर्दे पर अभिनय कर रहे अभिनेता के हाव भाव के अनुसार पूरी तरह से ढालने की जादुई क्षमता थी। यूँ कहा जाए तो किशोर कुमार अपनी एक खास ऊर्जा और सहज ज्ञान शैली के लिए

पसंद किए जाते थे जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पर खूब पपती थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की रेंज परास यानी कि बहुत विस्तृत थी। वे ऊँचे से ऊँचे सुर को भी बिना आवाज़ ख़राब किए आसानी से गा सकते थे।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी एक संपूर्ण पैकेज थे जिनके पास सुरों की शुद्धता, तकनीकी नियंत्रण और किसी भी अभिनेता की आवाज़ बन जाने का बेजोड़ हुनर था।

दोस्तों, इसी गीत के साथ एक ही फनकार कार्यक्रम से अब दीजिए परिणीता को इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना एक ही फनकार मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी गीतों को। फिल्म का नाम था लोफर, दो रास्ते, सूरज और चंदा, दोस्ताना और महुआ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ऐं अमन यादव।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है।

सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे का जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।